प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण उसे छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। भिन्न भिन्नाते रहने वाले पुरुषों के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दुभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम कार्य करते रहें, जो कुछ हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोता, हमारी स्टूडियो के ग्रह के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ

आरंभ होती है हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आज साथी दांपा कोलंबो आकाशवाणी के अरुण एफएम से हार्दिक स्वागत करती हूँ। सन 2026 के अक्टूबर महीने के आज 6 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती थांगजांग तथा तकनीकी अभियंता डी नियो। श्रोता, रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे देर और ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। ताइए सभा की आरंभ करते हैं। श्रोता, आइए हम जानते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ पलों में यानी 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 6:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज, 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत और 6:40 पर आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का समाचार। छह बजकर 45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे और 7:10 पर आप बताने श्रोताओं का समाचार, 7:15 पर कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट और 7:35 पर आप सुन पाएंगे थागिन श्रोताओं का समाचार, 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार। श्रोता, 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात और 8:15 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित मॉर्निंग न्यूज, 8:30 पर शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर, 9 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 9:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। नौ बजकर 10 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पेशल प्रोग्राम और 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 10:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। श्रोता, 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड और 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी न्यूज, 11:05 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित इंग्लिश न्यूज। तो श्रोता, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में यानी 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पाहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में HAL कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारी रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियथ क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से घाना की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडजेटो अब्लाकवा के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टान चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल है। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान होगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। By-elections for five assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and one Lok Sabha seat in Assam will be held today. The five assembly seats going to polls are Madurakkam and Dharapuram in Tamil Nadu, Thattachavri in Puducherry and Rejinagar and Nandigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat going to polls is Nagaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the name of eight candidates for upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Ojha, Prakash Pal, Vidya Sagar,

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल के बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम भक्ति गीत, और इसके अंतर्गत आप सुनेंगे दोनी पोलो भक्ति गीत निशी भाषा में ताबाकू का और उनके साथी द्वारा।

0: श्रोता आप सुन रहे थे ताबाकुका और उनके साथी द्वारा निजी भाषा में दोनी पोलो भक्ति गीत। इसके साथ ही कार्यक्रम भक्ति गीत यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।
1: हे आकाशवाणी ईटानगर तनगा दम रोगम जब एमदगला पूरा पोलोग आलो लोक आरो गालो मेंकेन अबालोक मेलें जिदांग नांगो मारियो मत मलोग लोन आलो हुम्बार ओगो इंडिया ओक स्विट्जरलैंड देश अन्य येगो दुगो पिगो पागो अबाबा रु एमने अल्लुब गोर हिला जुका एमला उलुसु आगोम्ब याका जागो एरिहिका ओगो बारो देश गे डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन अन्य सिन अलालना टेक्नोलॉजी अबालोक अलुब मेंतम मुतम हिरुलाग जुका अमला सिन उलुसी आगोम बसिन दिन सिजाब एरिक हिताका ओके अकने अबारु गदम ने एरिक हिरो को कुबकु प्राइम मिनिस्टर मोदी ओके स्विस के प्रेसिडेंट गाय फर्मिलिन मुन्य न्यू दिल्ली बोलो दूरिक हिदाकुला अलुब तरक लेको हितुकु ओगो अम्ब तरक लेको हिरो

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्त, अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम सुबह सवेरे। दोस्तों, कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेगमेंट पर आप जुड़ेंगे मेरे साथ कुछ खास बेहतरीन हिंदी फिल्मी गानों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और पेश कर रहे हैं आपके लिए पहला गीत फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा से। और ये के बोल है आते जाते, और इस गीत को आवाज दी है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

0: हे, रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

दोस्तों बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे में और कार्यक्रम में चले अब बातें करते हैं। दोस्तों सुबह नींबू पानी पीने के फायदे, जी हाँ सुबह नींबू पानी पीना जनरली ठीक है और रिफ्रेशिंग भी होता है। दोस्तों विटामिन सी मिलता है इससे जो इम्यून फंक्शन और स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी पानी पीने की आदत बढ़ सकती है, इससे हाइड्रेशन मेंटेन करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों नींबू में विटामिन सी होता है और ये आयरन एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है, खासकर प्लांट बेस्ड आयरन वाले खाने के साथ। कुछ लोगों को सुबह एक ग्लास पानी से बॉल मूवमेंट में मदद मिल सकती है। नींबू पानी वेट लॉस का मैजिक ड्रिंक नहीं है, वेट मैनेजमेंट में ओवरऑल डाइट और फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नींबू पानी आप सुबह एक ग्लास नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी में एक से दो चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिए, इससे आपकी एसिडिटी भी कम हो सकती है। और ध्यान रखिए इसमें आप चीनी या नमक नहीं मिलाएंगे। और आपको अपनी स्किन ग्लोई बनानी है तो आपको विटामिन सी से बहुत मदद मिल सकती है। तो चलिए इसके साथ ही कार्यक्रम में और आगे चलते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म दम लगा के हर्षा। दोस्तों गीत के बोल है मोह मोह के धागे और इस गीत को आवाज दी है मोनाली ठाकुर ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म से। आपको बता दूं कि इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम आप आगे और भी सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेब चैनल 444.6 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा JRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप बने हुए हैं मेरे साथ आकाशवाणी केरल FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। दोस्तों कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, इस सेगमेंट पर आप जुड़ेंगे मेरे साथ कुछ खास समाचारों और बेहतरीन फिल्मी गानों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुना रहे हैं फिल्मी गाने फ्रॉम द फिल्म गदर, एक प्रेम कथा। और गीत के बोल है ऊर्जा खाले और इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

बस आप सुन रहे थे ये गीत गदर एक प्रेम कथा फिल्म से। आप बने हुए हैं मेरे साथ कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में। और चलिए कार्यक्रम में अब आपको अरुणाचल टाइम्स की कुछ खबरों की इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों अरुणाचल टाइम्स की हेडलाइन है सियांग वैली में SUMP को लेकर तनाव। जी हाँ, सियांग आप मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट के प्री फिजिबिलिटी स्टडी को लेकर विरोध जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सियांग वैली में कम से कम 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उगंग में सिक्योरिटी पर्सनल और स्थानीय लोगों के बीच टकराव की भी रिपोर्ट आई है। दोस्तों अब चलिए कार्यक्रम में और आगे चलते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी गाने फ्रॉम द फिल्म कुर्बान। और गीत के बोल हैं आओ मैं पढ़ा दूं और इस गीत का आवाज दी है अभिजीत भट्टाचार्य और सारिका कपूर ने।

दोस्तों कार्यक्रम सदाबहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेगमेंट पर आप जुड़ेंगे मेरे साथ कुछ खास बेहतरीन पुरानी गीतों के साथ और मौसम के अपडेट्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले मौसम के अपडेट्स देखते हैं और उसके तुरंत बाद आपको सुनाएंगे बेहतरीन फिल्मी सॉन्ग्स। दोस्तों आज राजधानी ईटानगर के लिए मौसम पार्टली क्लाउडी रहने का फोरकास्ट है। मिनिमम टेम्परेचर लगभग 24 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम लगभग 31 डिग्री सेल्सियस। आज के फोरकास्ट में कोई खास वार्निंग नहीं है। 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अरुणाचल प्रदेश के लिए कोई वार्निंग नहीं दी गई। मौसम पार्टली क्लाउडी रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही अब आपके लिए पेश कर रहे हैं फिल्मी सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। दोस्तों गीत के बोल है दिल तो है दिल और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
8: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
7: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
8: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
7: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
8: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम सदाबहार में। और कार्यक्रम में अब आपके लिए पेश कर रहे हैं गीत आराधना फिल्म से। दोस्तों, गीत के बोल हैं रूप थेरा मस्ताना और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे ये गीत आशा भोसले की आवाज में फिल्म नमक हलाल से। आपको बता दूं कि इसी के साथ ये कार्यक्रम सदाबहार यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र और शिलांग केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र

0: मित्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSSS-1 का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
3: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल पूसापति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर मुख्य अतिथि होंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की।
4: विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 8 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
1: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
5: इन माई ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर ट्रिवेंट or Kerala, but for the whole of India. If even a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam, I'm sure that we can create enormous value within India through trade, logistics and employment, even allied industries.
4: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुनुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: जालिम लोशन, दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने था अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है, स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। बकौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा, कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। पोलिंग बिगिन्स फॉर बाय इलेक्शंस टू 5 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन तमिलनाडु, पुदुचेरी इन वेस्ट बंगाल एंड लोन लोकसभा सीट इन असम। बीजेपी अनाउंसेस नेम्स ऑफ 8 कैंडिडेट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश फॉर राज्यसभा इलेक्शंस। President Draupadi Murmu to be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the five-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. Polling has begun for by-elections to five assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhuran Takam and Dharapuram assembly seats in Puducherry, for Thattan Chowri assembly seat and Rajinagar and Nundigram assembly seats in West Bengal. More from a Kolkata correspondent.
6: The by-election in Nandigram was necessitated after Chief Minister Shubhendu Adhikari, who won both Nandigram and Bhavanipur in the 2026 Assembly election, vacated the Nandigram seat and retained Bhavanipur. Similarly, the Rajinagar seat fell vacant after sitting MLA Humayun Kobir retained Nauda and resigned from Rajinagar. In Nandigram, 16 candidates are in the fray, including BJP's Hashirani Roth and Congress candidate Milan Pradhan. The Trinamool Congress has not fielded a candidate and is supporting Mr. Milan Pradhan. In Rajinagar, 14 candidates are contesting the elections. Among the prominent candidates are Shakar of Sarkar of the BJP, Gulab Nobi Azad of Am Janata Unnayan Party, Raviul Alam Chaudhary of the Mamata All India Trinamool Congress, and Mohammad Abdullah Kafi of the Congress. Shandipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
5: The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the names of 8 candidates for the upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Ojha, Prakash Pal, Vidyasagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: बस अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र और शिलोंग केंद्र से प्रसारित समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों कार्यक्रम हेलो ईटानगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेगमेंट पर आप जुड़ेंगे मेरे साथ कुछ खास इन्फॉर्मेशन आज के दिन से जुड़ी और सुनेंगे बेहतरीन फिल्मी गीत। तो चलिए कार्यक्रम में नजर रखते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की ओर। दोस्तों आज के दिन यानी 6 अक्टूबर को भारत के इतिहास में चलिए देखते हैं हम क्यों खास है आज का दिन। दोस्तों आज ही के दिन 1860 में इंडियन पैनल कोड को असेंट मिला। 6 अक्टूबर 1860 को उस वक्त के गवर्नर जनरल की असेंट के बाद इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 बना। ये बाद में 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ और भारत के क्रिमिनल लॉ का एक बहुत बड़ा आधार रहा। 2024 में आईपीसी

इतिहास में भी आज के दिन खास है। आज के दिन 1973 को इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर सरप्राइज अटैक किया, जिससे योम कीपुर वॉर शुरू हुआ। यह मिडिल ईस्ट के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बनी। दोस्तों, इसी के साथ ही अब चलिए कार्यक्रम में आगे चलते हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं बेहतरीन फिल्मी गीत फ्रॉम द फिल्म आई हैड लव स्टोरीज। तो इस गीत के बोल है सदका किया और इस गीत का आवाज दी है महालक्ष्मी अय्यर, सूरज चगन और विशाल शेखर ने।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: Work from home? High salary? बस एक क्लिक में? अरे वाह!
5: फंसी!
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। और चलिए कार्यक्रम में अब हम बातें करते हैं आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें। दोस्तों, आज यानी 6 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे मनाया जाता है। इसका मकसद सेरेब्रल पाल्सी यानी सीपी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, सीपी के साथ जी रहे लोगों की आवाज को सामने लाना और एक ज्यादा इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोसाइटी के लिए काम करना है। दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी एक लाइफ लॉन्ग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो डेवलपिंग ब्रेन को हुए डैमेज या एबनॉर्मल डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। इसका असर मूवमेंट, पोस्चर, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर हो सकता है। कुछ लोगों को कम्युनिकेशन, विजन, हियरिंग, ईटिंग या एपिलेप्सी जैसे एडिशनल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग होता है। दोस्तों, इस दिन का फोकस सिर्फ सिंपैथी पर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंक्लूशन और एम्पावरमेंट पर है। दुनिया भर में सेरेब्रल पाल्सी के साथ रहने वाले 50 मिलियन से ज्यादा लोगों के राइट्स और नीड्स को समझना इसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। खासतौर पर एक्सेसिबल बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन, हेल्थ केयर और रिहेबिलिटेशन की बेहतर एक्सेस और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। दोस्तों, हमारे भारत में भी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नेशनल इंस्टीट्यूट्स और रीजनल सेंटर्स वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे पर अवेयरनेस और इंक्लूशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। 2026 में नेशनल ट्रस्ट ने भी 6 अक्टूबर के लिए नेशनल मीट अनाउंस किया है। दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी किसी व्यक्ति की पूरी पहचान नहीं है। हर इंसान की अपनी एबिलिटी

और पर्सनालिटी होती है। वर्ल्ड सीपी डे हमें उन्हें सिंपथी से नहीं, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और इंक्लूजन के साथ देखने की याद दिलाता है। तो चलिए इसी के साथ ये कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो। और गीत के बोल है बातें कुछ अनकही से, और इस गीत को आवाज दी है प्रीतम और आनंद शामी ने।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम हेलो ईटानगर यहीं पर समाप्त होते हैं और अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उड़ीसा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। श्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, विधायकों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर

0: प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है, साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बिजली चमकने तथा तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। सिक्किम, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhur Takkam and Dharapuram assembly seats, in Puducherry for Tat Chavri assembly seat and Rajnagar and Nandigram assembly seats in West Bengal. More details from our Kolkata correspondent.
2: The by-election in Nandigram was necessitated after Chief Minister Shubhendu Adhikari, who won both Nandigram and Bhavanipur in the 2026 Assembly election, vacated the Nandigram seat and retained Bhavanipur. Similarly, the Rajnagar seat fell vacant after sitting MLA Humayun Kobir retained Nauda and resigned from Rajnagar. In Nandigram, 16 candidates are in the fray, including BJP's Hashirani Roth and Congress candidate Milon Pradhan. The Trinamool Congress has not fielded a candidate and is supporting Mr. Milon Pradhan. In Rajnagar, 14 candidates are contesting the elections. Among the prominent candidates are Shakar of Sarkar of the BJP, Gulab Nobi Azad of Am Janata Unnayan Party, Raviul Alam Chaudhary of the Mamata All India Trinamool Congress, and Mohammad Abdullah Kafi of the Congress. Shandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the name of 8 candidates for upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Oja, Prakash Pal, Vidya Sagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling for the Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh, Uttarakhand and by election to a lone seat in West Bengal will be held on 16th of this month. The elections will cover 10 seats from Uttar Pradesh and 1 from Uttarakhand. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. During the visit, President Murmu will attend the convocation ceremony at AIIMS Bilaspur as the chief guest and confer degrees to trainee doctors. After the convocation ceremony, the president will travel to Manali, where arrangements for her overnight stay have been made. The president is scheduled to return to Delhi on 8th of October. India has voiced support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirming its commitment to the welfare of the Afghan people at the 8th Moscow Format Consultations on Afghanistan hosted by Russia in Moscow. Indian delegation was led by Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Dr. M. Suresh Kumar. Representatives from Russia, Iran, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan and Uzbekistan attended the forum. Belarus and

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 19वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, डिजिटल भारत तकनीक से परिवर्तन तक। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का जनसेवा का नेतृत्व 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वर्तमान कार्यकाल तक प्रशासनिक दक्षता, जन केंद्रित सोच और तकनीकी नवाचार का एक अनूठा संगम रहा है। जब 2014 में डिजिटल इंडिया अभियान की नींव रखी गई थी तो ये केवल एक सरकारी योजना भर नहीं थी, ये भारत की शासन व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने वाला एक दूरदर्शी विजन था। और प्रधानमंत्री की ये स्पष्ट सोच रही है कि तकनीकी केवल अमीर या साधन संपन्न वर्गों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने और प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के मकसद से भी होना चाहिए। इसी सोच ने भारत में डिजिटल क्रांति का जो एक नया दौर देखा है और जो डिजिटल डिवाइड की हम पहले बात किया करते थे, उस डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम किया है। तो जहां एक तरफ पहले भारत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है रहा था, तो अब डिजिटल तौर पर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है जिसमें हर गरीब तक अर्थव्यवस्था डिजिटल माध्यमों से पहुंच रही है। बहुत सारे ऐसे समाधान, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान जटिल था, वो डिजिटल तरीकों से मिल रहा है। तो आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि डिजिटल भारत में तकनीकी से जो एक परिवर्तन यात्रा रही है वो कैसे एक सफल यात्रा रही है और कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने भारत को एक डिजिटल भारत का नया विजन दिया है और आने वाले समय में कैसे विकसित भारत बनाने में भारत का ये डिजिटल सफर बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अंग साबित साथ दो विषय शामिल है। विशेषज्ञ प्रसून शर्मा जी को आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद, नमस्कार।
1: और हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ शंकर अय्यर जी भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: तो प्रसून जी, सबसे पहले मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। जैसा कि अभी हमने बात की कि हर व्यक्ति तक डिजिटल माध्यम से सुविधाओं के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जो एक डिजिटलीकरण है वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है और इसी विजन के साथ प्रधानमंत्री ने डिजिटल भारत की नींव रखी थी। आप कैसे देखते हैं वर्तमान समय में गवर्नेंस में जिस तरह से डिजिटल दौर ने एक नई भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है भारत में हर कोने कोने तक डिजिटलाइजेशन को पहुंचाना, उससे किस हद तक हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं?
2: जी, प्रधानमंत्री जी ने जो 25 साल में किया, जैसे फाइलों से फोन तक, कतारों से क्लिक तक, तो ये जो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चेंज भारतीय सरकार और गवर्नेंस में हुआ, ये जब प्रधानमंत्री जी पहली एक स्वागत करके ऐप उन्होंने गुजरात में चलाई थी जिससे वो पब्लिक ग्रेवांसेस को डिजिटली एक्सेप्ट करते, वहां से स्वागत से लेके अब जैम तक जो प्रधानमंत्री जी ने तकनीक को जो टूल बनाया है कॉमन सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, चाहे अगर आप देख लीजिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तकरीबन 3 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जो कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे ही पहुंचता है, अब वो सीधा हमारे किसानों पे, हमारे जो गांव के हथकरघा में काम कर रहे हैं वो, या मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनके खाते में जा रहा है। तो ये तकनीक को एक सुशासन का टूल बना के और अंतिम पंक्ति में जो जरूरतमंद सिटीजन खड़ा है उनको एम्पावर किया है भारतीय प्रधानमंत्री ने इन 25 सालों में।
1: बिल्कुल शंकर अय्यर जी, जैसा कि प्रसून जी ने बताया कि किस तरह से चाहे वो स्वागत पहल हो या जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने जो जैम ट्रिनिटी का एक नया इकोसिस्टम बनाया, तो जिस तरह से ये परिवर्तन रहे हैं, उन्होंने कैसे भारत में जो सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है उसको पूरी तरह से बदला है और आज हम देश में देखते हैं कि करोड़ों अब डिजिटल पहचान है लोगों के पास, उनके खाते हैं, बैंक में खुले हैं, एक मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से लोग जुड़े हैं, खातों में लगातार योजनाओं का सीधा लाभ नागरिकों तक पहुंच रहा है, तो एक पूरा जो तंत्र बना है वो कैसे डिजिटल दौर से संभव हो पाया है?
3: देखिए, एक नेता की जो अपनी एक पहचान होती है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। वो मुख्यमंत्री होने से पहले भुज में जब भूकंप हुआ था तो एक प्रॉब्लम था तब कि कैसे जो जेसीबी है वो कैसे दूर दराज के गांवों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि रोड सारे बिगड़ गए थे
1: जी।
3: तो जब ये सोचा जा रहा था तब नरेंद्र मोदी ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना जेसीबी को ट्रेन पर ले जाया जाए। तो इट वॉज उनको कितने सारे जेसीबी को अहमदाबाद और उनके डिस्ट्रिक्ट में बाई ट्रेन, बाई रोड के बजाय बाई ट्रेन ले जाके पहुंचा के रिलीफ पहुंचाया गया। तो एक सोच है उनकी कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, वो सैटेलाइट सेंटर जो है अहमदाबाद में, वहां से उन्होंने एक SMS की सुविधा स्टार्ट की थी
1: जी।
3: जो मछुआरे हैं उनको सैटेलाइट इमेज देखने के बाद, मतलब मछुआरों को सिर्फ SMS आता था कि आप तट से इतनी दूर जाएंगे तो मच्छी की स्कूल, जो स्कूल ऑफ फिशेस बोलते हैं ना, मच्छी अपने साथ में एक एक झुंड में जाते हैं, तो उनको लोकेशन दिया जाता था ताकि वो ज्यादा डीजल खर्च ना हो, ज्यादा घर से ज्यादा देर दूर ना रहे और हर दिन एक अच्छा कैच उनको मिले। ये एक सुविधा थी। अभी हम लोग सब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, उन दिनों में वो मतलब दो प्रॉब्लम थे कि गुजरात में पानी का अभाव, जो पावर का अभाव, तो उन्होंने कनाल के ऊपर सोलार लगवाया, तो सोलार टॉप कनाल, ऐसे ये जो सुविधाएं थी। और जब अब हम लोग जब डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है आधार। और जब आधार इम्प्लीमेंट हो रहा था, भले ही उनकी पार्टी की जो भी भूमिका रही होगी उस वक्त, लेकिन गुजरात में 100% इम्प्लीमेंट हुआ था जब वो मुख्यमंत्री, और जैसे वो सेंटर में आए तब तेल का भाव $120 था कच्चे तेल का, तो इन्होंने उसको एक्सपैंड किया। तो ये जो हम लोग आज जो डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें दो बातें हैं। एक है आपके पास एक नॉलेज है, एक सुविधा है तकनीकी, लेकिन उसको सोशलाइज कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही उनकी
1: जी।
3: अगर आपने वो जो अकाउंट्स खोलने की जो बात हुई थी, जो हर नागरिक के पास अकाउंट होना चाहिए, तो उन्होंने देश भर में जितने मैनेजर्स हैं बैंक्स के, उनको सबको चिट्ठी लिखी है। मतलब ये आधार की जो जर्नी है, इसको मैंने अपनी किताब में लिखा है, और मैंने इसको उस वक्त जब मैंने कहा था कि ये 12-digit रेवोल्यूशन है,
1: बिल्कुल,
3: और लोग कह रहे थे कि अरे बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, लेकिन आज आप देखें डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ये सचमुच में 12-digit रेवोल्यूशन है।
1: बिल्कुल। और प्रसून जी, अभी जिस बात की हम, जिस विषय पर हमें भी चर्चा कर रहे थे कि जैसे तकनीक ने एक पूरे तंत्र को बदल दिया है, पहले जब ये बात कही जाती थी कि केंद्र से भेजा जाने वाला एक रुपया जमीन पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के विजन को अगर हम देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस माध्यम से सरकार ने अब तक ये आंकड़ा है कि लाखों करोड़ रुपए तक बचाए हैं, सीधे लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचा है, सीधे बैंक खातों में अब किसी भी योजना का लाभ पहुंच जाता है, बिचौलियों के बीच कोई

0: पैसा हस्तांतरित नहीं होता है, जिससे जो योजनाओं का लाभ है और जो हेरा फेरी है उसको रोका गया है बड़ी संख्या में। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो डीबीटी मॉडल है उसने भारत के नागरिक और सरकार के बीच एक विश्वास का नया संबंध स्थापित किया, और कैसे तकनीक ने इसमें खासतौर पर बड़ा रोल निभाया है?
1: जी बिल्कुल, अगर आप उसके तथ्य देखिए, तकरीबन डीबीटी के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई है लाभार्थियों में, और जो अनुमानित बचत है जो पहले बिचौलियों के पास जाता था वो 3.5 लाख करोड़ के आसपास एक अनुमानित आंकड़ा है। तो इतनी बड़ी बचत और सीधा लाभार्थियों तक इसका पहुंचना, ये बहुत बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। दूसरा, इससे जो हमारे आधार से जो प्रमाणीकरण या केवाईसी होता है उससे जो राशन कार्ड या खास सब्सिडी है वो तकरीबन 1.8 लाख करोड़ की बचत हुई है। मनरेगा में 98% जो मजदूरी समय पर पहुंची है। पहले ये भी होता था कि वो कई महीनों वेट करना पड़ता था उनको अपना जो भी मजदूरी लेने के लिए, अब तकरीबन मतलब उनको टाइम पे पैसा भी मिल रहा है, सही पैसा मिल रहा है, और जितना उनका भुगतान होना है वो सीधा उनके पास आ रहा है, तो वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक विश्वास की नई नींव रखी है जो कि टेक्नोलॉजी आधारित है, और वो टेक्नोलॉजी आधारित नींव ना सिर्फ भारत में, अब जो इंडिया स्टैक करके जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 24 देशों ने अडेप्ट करने के लिए भारत से सहयोग मांगा है।
0: भारत के विश्व भर को मिल रहे सहयोग की आपने बात की, तो एक और भारत बड़ा योगदान पूरी दुनिया में दे रहा है, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का योगदान। तो विश्व बैंक का ही अगर हम एक ताजा आंकड़ा अपने श्रोताओं को बताएं तो दुनिया भर में होने वाले कुल जो डिजिटल तरीके से लेन देन है उसका लगभग 46% से ज्यादा अकेले भारत में ही होता है। तो यूपीआई ने एक बड़ी क्रांति पैदा की है शंकर जी, और हम देखें तो अब इस बात को तो खैर हम सभी मानते हैं, हमारे लिए तो एक सामान्य सी बात हो गई है कि हम कहीं भी पहुंचे, गांव में, रेड़ी पर, चाय की दुकानों में, तो हर जगह यूपीआई के जरिए अब लेन देन होता है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था का ये नया दौर है भारत का, जिसमें कि जमीनी स्तर पर हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की एक अभूतपूर्व क्रांति को देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस विजन को रखा पूरे देश के सामने कि भारत में एक पारदर्शिता के साथ डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शंस हो सके, तो कैसे ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए?
2: ये जो नींव रखी गई थी आधार की, उसके ऊपर कैसे बिल्डअप हुआ, कैसे हर कुछ महीनों में, सालों में हम लोग ने एक मंजिल और तैयार की। जैसे पहले था आधार, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जो जनधन योजना के जिसमें 50 करोड़ के लोगों के अपने अपने खाते खुलवाएंगे, उसमें मैक्सिमम जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। फिर उसके बाद में जब एनपीसीआई ने यूपीआई स्टार्ट किया, और जब लेकिन सबसे ज्यादा तो जो एवोल्यूशन हुआ, जो हमने इनोवेशन किया है वो कोविड के वक्त में। आप देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप क्या वैक्सीनेशन दे पाते विदाउट कोविड के, और कम से कम 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसी तरह हम लोग, जो हमको भी अंदाज नहीं होता है कि कुछ सालों पहले हम लोग जब हाईवे से जाते थे तो टोल के लिए कितनी बड़ी क्यू लगती थी, लेकिन अभी फास्टैग है और गाड़ियां ऐसे एकदम स्मूथली निकलती है। इसी तरह आप देखिए कि जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन की बात आप कर रहे थे, तो एकदम करोड़ों में हो रहा है, दिन एक दिन में करोड़ों में हो रहा है ट्रांजैक्शन। उसमें एक, मैं हमेशा जो मैं एमबीए की बिटसॉम में एमबीए की क्लास को पढ़ाता हूँ, और हर साल उस क्लास को या कहीं भी पर भी मैं जब बोलने जाता हूँ तो मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप पिछली बार अपने बैंक कब गए थे, तो लोग कई महीने अपने बैंक के ब्रांच में गए नहीं है। मैंने पिछली बार आप कब चेक लिखा आपने, तो वो भी नहीं होता है। फिर मैं पूछता हूँ पिछली बार आप एटीएम कब गए थे, तो कुछ लोग गए होते हैं 1 महीने में या 15 दिन पहले। वैसे मैंने कहा पिछले 10 मिनट में या 1 घंटे में आपने कितनी यूपीआई ट्रांजेक्शन की, तो सारे हाथ ऊपर होते हैं जितने क्लास में होते हैं कहीं पर। तो हम लोग अभी मतलब इसको जैसे एकदम बहुत नेचुरल हो गया है कि हाँ भाई गए आप सब्जी लेने गए तो यूपीआई कर दिया, ऑटो रिक्शा वाला आपको पूछता है आप पैसे देने निकले या उसके पास खुले नहीं होते तो वो बोलता है कि अरे जीपे कर दीजिए। तो इस तरह की जो सुविधा को हमने अपने लाइफ में ले लिया, और ये जो आमतौर पर कहा जाता है कि गरीब लोग तकनीकी अडॉप्शन में पीछे होते, लेकिन इतना फास्ट अडॉप्शन जो हुआ है ये दर्शाता है कि हमने किस तरह से उसको सोशली और पॉलिटिकली इसको स्थापित किया है, और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं सराहना करूंगा
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि उन्होंने उसको उस मैसेजिंग को कॉन्स्टेंट रखा है कि हम ये करेंगे, ऐसे करना चाहिए। इसी तरह से आप देखिए टेलीमेडिसिन, जो मतलब डॉक्टर के पास आप ना पहुंच पाए, गाँव में डॉक्टर ना हो तो भी आप वीडियो के तौर पे मेडिकेशन या अपनी जांच करा सकते हैं वीडियो के कॉल के थ्रू। और जो एजुकेशन में हो रहा है, हम लोग इसको भांप नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना लोग YouTube वगैरह से कोर्स, ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे हैं, उतना शायद वो अपने स्कूल में या कॉलेज में ना सीख पा रहे हो।
0: बिल्कुल, यानी अवसरों की
2: बहुत बड़ी डिजिटल स्टैक,
0: अवसरों की अपार संभावनाओं को खोल दिया है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने। प्रसून जी का भी मैं इसमें विचार लेना चाहूंगा, जैसा कि अभी शंकर जी बता रहे थे कि इन बीते कुछ वर्षों में ऐसा डिजिटल परिवर्तन हमने देखा है। कोविड के दौर का उन्होंने जिक्र किया, उस वक्त आरोग्य सेतु, कोविन पोर्टल जैसे तुरंत समाधान हमारे पास आ जाते हैं। डिजिटल लेन देन की हम UPI की तो बात कर ही रहे हैं। तो अब जो एक डिजिटल परिदृश्य है हर इंसान में, भारत में हर नागरिक के जीवन में रच बस गया है, वो कितना बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि आमतौर पर हम जब एक किसी भी चीज को अपना लेते हैं तो हमारे लिए वो सामान्य सी बात लगती है, लेकिन दुनिया भर में देशों को दशकों लग गए इस तरह के परिवर्तन को पाने में, लेकिन भारत ने चंद वर्षों में इस चीज को हासिल कर लिया। कितना बड़ा ये एक परिवर्तन है
1: जी, एक तरह से ये क्रांति है जिसको डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है। और हर क्षेत्र में अगर आप देखिए, एक और बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेम करके, जो जब स्टार्ट हुआ, जिसमें जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट किया गया और 400 करोड़ से शुरू हुआ और आज 5 लाख करोड़ का सालाना जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो जेम के थ्रू होता है। और उसमें से जो अपने छोटे MSMEs या उद्यमी है उनको 9 लाख करोड़ के ऑर्डर्स मिले डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से। तो MSME भारत की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, और उनको अगर ऐसे प्रोक्योरमेंट्स में जो बिचौलिए या जो पेमेंट में दिक्कत या डिले होता था, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जेम के माध्यम से बहुत ही सजग रूप से एड्रेस किया गया। ना सिर्फ एड्रेस किया गया, उसके रिजल्ट्स दिए गए और MSMEs को मजबूत किया गया। इस यही वजह है कि हमारे MSMEs अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के top 3 नेशंस में हैं, क्योंकि ये ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ना सिर्फ भारत के लिए, सारे डेवलपिंग नेशंस के लिए। क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी फॉर गुड, फॉर एम्पावरिंग कॉमन सिटीजन्स इंक्लूडिंग MSMEs, हमारे फार्मर्स और स्टार्टअप्स, ये अद्भुत है। और इसका रोजमर्रा में भी काफी इफेक्ट है, चाहे आप मतलब कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और जो बाकी इकोसिस्टम है जैसे मेड इन इंडिया या हमारे स्टार्टअप की इनोवेशंस हो रही है, उनको भी मौका मिल रहा है सरकारी प्रोक्योरमेंट्स में अपने सॉल्यूशंस लगाने के लिए, चाहे वो हमारे फार्म्स में स्मार्ट फार्म्स हो, सेंसर लग रहे हो, या हमारे स्टार्टअप अंतरिक्ष में अपना स्पेस शटल भेज रहे हो। तो ये एक उपलब्धि है और ये एक इम्पैक्ट है प्रधानमंत्री जी के विजन का।
0: श्रोताओं, जन सेवा से देश सेवा, इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत से तकनीक से परिवर्तन की यात्रा। और इन दिनों इस विशेष श्रृंखला में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों का जो एक परिवर्तनकारी नेतृत्व रहा है भारत को, जिसने नई दिशा दिखाई है, उस पर अलग अलग संस्करणों में हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। एक और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं प्रसून जी, वो है डिजी लॉकर, जो पेपरलेस गवर्नेंस है उसकी दिशा में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्योंकि अब करोड़ों ऐसे अकाउंट्स हैं डिजी लॉकर पर, हम पहले दफ्तरों में कार्यालयों में जो कई जटिलताएं थी, अपने पेपर्स ले जाने पड़ते थे, तो एक पेपरलेस व्यवस्था इस समाधान ने दी। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो इससे कैसे एक तो पारदर्शिता के तौर पर डिजिटल लॉकर ने काम किया है कि जो एक सत्यापित डॉक्यूमेंट्स है, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है, वो हमारे डिजिटल लॉकर में रहते हैं, और साथ ही नागरिकों की सुविधा को इसने और कैसे बढ़ाया है।
1: जैसे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और ये डिजी लॉकर और आधार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तकरीबन 70 करोड़ के आसपास डिजी लॉकर है, चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है या एक मोबाइल का सिम लेना है, आप डिजिटली, पहले कई हफ्ते या महीने लगते थे, आप कुछ सेकेंड आप ये कर सकते हो। और आपको कोई फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी ले जानी नहीं है। इवन अगर आप देखिए जो हमारे एयरपोर्ट्स में जब हम ट्रांजिट करते हैं तो वहां पे आपका फेशियल रिकॉग्निशन से आप पूरा जो भी सिक्योरिटी गेट्स है उसको पास कर सकते हैं कुछ मिनटों में, जो पहले घंटों में होता था वो मिनटों में हो रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री का विजन था भारतीयों के लिए ईज ऑफ लिविंग प्रदान करना गवर्नमेंट की तरफ से, उसका एक जीता जाता सक्सेसफुल उदाहरण है डिजी लॉकर, आधार और इससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं। ना सिर्फ भारत सरकार उस पर सेवाएं दे रही है, जो हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड है या इनोवेशन वर्ल्ड है वो भी इस पे अपने अपने सॉल्यूशंस बना के दे रहे हैं। चाहे वो मान लीजिए जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सत्यापन करना हो, उनको अब बैंक नहीं जाना है तो उससे काफी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो विड्रॉल की हो, चाहे उनकी सब्सिडीज या उनको जो महीने का जो भी पैसा मिलता है वो मिलना हो। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने बनाया है जिसपे वो खुद भी सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉमन गुड जो भारतीय सरकार ने बनाया है वो एक सराहनीय कदम है। किसी एक कंपनी या किसी कुछ मुट्ठीभर लोगों की प्रॉफिट के लिए ये नहीं बनाया गया है।
0: बिल्कुल। अभी शंकर जी, प्रसून जी बात कर रहे थे जेम पोर्टल की, सरकारी खरीद में जो दशकों से एक अधिकार एक चला आ रहा था, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी समस्या थी, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने जो जेम पोर्टल लॉन्च किया, अब उसमें हम देखते हैं कि न केवल छोटे उद्योगों को नया एक रास्ता मिल रहा है सरकारी खरीद में, अब उन उद्योगों के उत्पादों को खरीदा जा रहा है, बल्कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बनाए हुए सामान भी अब सरकारी दफ्तरों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो व्यापार की जो सुगमता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, उसको कैसे इस तरह के इनिशिएटिव्स ने बढ़ाया है, और क्योंकि ये एक डिजिटल पहल है इससे जो हम ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता की जो बात करते हैं उससे कैसे इससे मदद मिली है?
2: बहुत बड़ा चेंज जो हुआ, एक बदलाव जो हमारे सिस्टम में हुआ है, वो हमने भागीदारी स्थापित की। हम लोग जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं एमएसएमई के, जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, तो उसमें क्या किया है हमने, हमने भागीदारी स्थापित की है। हमने जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पारदर्शिता के लिए डिजिटल लाया, लेकिन उससे ये हुआ कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की जितनी जितने अवसर है वो सारे देश में है। अब कोई भी किसी भी दूर दराज एरिया से, इवन प्रधानमंत्री के दफ्तर में जो थर्मस फ्लास्क है वो पांडिचेरी से लिया है, कोई महिला बनाती है और वो सप्लाई। तो भागीदारी हमने लाई है कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम में, कोई भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में, जैसे कोविड के टाइम पे हमने कोई प्रॉब्लम जो लॉकडाउन और डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उसको ओपन किया था। अब आप कोई भी बात हो आप देख सकते हैं, कोई भी कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। ये जो भागीदारी लाई है जो बिजनेस में, जैसे आपको किसी के साथ, आप घर पर नहीं है लेकिन आपके घर में कोई सामान खरीदने गया हो तो आप व्हाट्सएप, जो टेलीकॉम की फैसिलिटी है, जो आधार की फैसिलिटी है, जो यूपीआई की फैसिलिटी है, उससे आप कंटिन्यूस। और जितने लोग आजकल डिजिटली अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं आमतौर पे हमारे जीवन में ऐसे वो शामिल हो गया है कि हम लोग इसको कोई ऐसा, हम लोग इससे अचरज नहीं होता हमको, लेकिन हम लोग कितनी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर, कितनी चीजें, हमारा प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, ड्राइवर होता है, जो भी होता है उसके साथ हमारा जो संपर्क है, जो सामाजिक संपर्क एक तरफ है, लेकिन जो व्यवहारिक संपर्क, जो बिजनेस रिलेशन है, वो टेक्निकल, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पावर होता है। जिस तरह से एकदम लास्ट माइल जो, या गांधी जी कहते थे कि द लास्ट पर्सन इन द क्यू, जो एकदम छोटे से छोटा आदमी उतना ही सशक्त है जितना अमीर से अमीर है तकनीकी के कारण।
0: प्रसून जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही जिक्र किया था स्वागत पहल का, 2003 में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त एक बड़ी क्रांतिकारी पहल की थी, जैसा कि आपने भी बताया संयुक्त राष्ट्र में बाद में उसे सम्मानित भी किया गया था उस पहल को। इसी मॉडल को अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक इसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है सीपी ग्राम्स नाम से, जिस इस तंत्र से जो तकनीकी के माध्यम से देखा जा रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उसके त्वरित समाधान करने की एक सरकार की सोच है और राज्यों के स्तर पर भी अपनी अपनी पहल की जा रही है। तो कैसे ये एक जो तंत्र बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा जनता से सीधे जुड़ने का, उनके ग्रीवांस को के समाधान का, कितना बड़ा ये एक डिजिटल माध्यम से सफल हो पाया है, कितना असरदार है ये?
1: बहुत ज्यादा असरदार है और इसका जो सामान्य हम माई गॉव के रूप में जानते हैं उसमें तकरीबन 6 करोड़ के आसपास सुझाव आते हैं और अब वो शिकायतों से सुझाव में परिवर्तित हो गए हैं और तकरीबन 8 लाख शिकायतें और उनमें से 99% का शिकायतों का समाधान हुआ। दूसरा डिजिटल माध्यम अगर आप देखिए, आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मन की बात करके, जहां पे प्रधानमंत्री डायरेक्ट देशवासियों से मिलते हैं, देश में विदेश में भारत ने क्या किया उसका लेखा जोखा और इवन छोटी से छोटी बात कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, कुछ नई पहल उसके बारे में बातचीत करते हैं और उसका फिर डिजिटल माध्यम से लोग उसमें सुझाव या अपना जो रिएक्शन है वो प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं। तो ये एक डायरेक्ट वार्तालाप का जो इकोसिस्टम तकनीक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने डेवलप किया है वो बहुत सराहनीय है और इससे अगर आप देखिए, आपने खुद महसूस किया होगा आकाशवाणी की जो श्रोताएं हैं और या एंगेजमेंट है कितना ज्यादा बढ़ा है और इसको एक तरह से एम्पावरमेंट के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसको इवॉल्व किया है सारे इकोसिस्टम को। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रभावी पहल है प्रधानमंत्री जी की तरफ से और अब एक ये मैच्योर गवर्निंग मॉडल्स में मतलब पार्टिसिपेट करने लायक हो गई है।
0: बिल्कुल, और क्योंकि एक सफल लोकतंत्र वही होता है जिसमें सहभागिता होती है, समावेशी वो लोकतंत्र होता है और समावेशिता के लिए, सहभागिता के लिए जब डिजिटल तरीकों का उपयोग होता है तो वो एक समस्या का समाधान लेकर आता है। जैसा कि आपने माई गॉव का जिक्र किया तो हम देखते हैं कि 2014 में शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म के बाद अब 3 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत नागरिकों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जन भागीदारी का मंच बन चुका है। तो शंकर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जब एक समावेशी लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे प्रयास कैसे एक सफल लोकतंत्र की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि हम देखें चाहे बजट को लेकर सुझाव हो, जो शिक्षा नीति पर हमने देखा कि बहुत सारे परामर्श और सुझाव इस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार तक पहुंचे और खासतौर पर आप क्योंकि आर्थिक विश्लेषक हैं तो जो आर्थिक नीतियां होती हैं उसमें भी जब जनता की आवाज डिजिटल माध्यम से सरकार तक पहुंचती है तो कैसे एक समावेशी लोकतंत्र बनता है और सरकार के इस प्रयास को आप कैसे देखते हैं?
2: बहुत सराहनीय है, जैसे बजट के पहले आप सबसे सुझाव मांगते हैं, पहले यह होता था कि सिर्फ इकोनॉमिस्ट से या जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए उनसे मांगा जाता था, लेकिन अब ये हुआ है कि आप डायरेक्टली अपने सुझाव एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जब सरकार मांगते हैं, इसको तो क्राउड सोर्सिंग की जो बेनिफिट्स है उसको मतलब पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया है और हम लोग उसको और आगे कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसको और प्रधानमंत्री की जो दिशा है उसको अगर बाकी सांसद और MLA ले तो अपने अपने क्षेत्र में इसको बहुत डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जो सुविधा है, जो दिक्कतें हैं उसको आप एक्सेप्ट करें एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जिस लेवल पर इसकी हम लोग जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशन की, हमको एक तो हम देश के नेतृत्व की सराहना करते हैं लेकिन लोगों की क्षमता, लोगों में जो उत्साह है, जो लोगों में जो एक्सेप्टेंस है उसकी भी सराहना करनी चाहिए कि भारत के 100 करोड़ से ऊपर की जनता में एक रेडीनेस है, एक कोई मतलब इससे कोई झिझक नहीं है कि टेक्नोलॉजी से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से सामाजिक तौर पे हो, लोकतांत्रिक तौर पे हो, व्यावहारिक तौर पे हो, हम कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको ले जाते हैं आगे। ये अपने आप में इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है कि आपके लोग अपना उनकी पार्टिसिपेशन, इतनी उनकी पार्टिसिपेशन है।
0: एक और बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक पहल पर शंकर जी आपसे ही मैं विचार चाहूंगा। भारत के गांवों में सदियों से एक बड़ी समस्या थी कि जमीन के जो मालिकाना हक है उसको लेकर विवाद रहते थे। स्वामित्व योजना सरकार ने शुरू की, इस योजना के तहत जो ड्रोन की तकनीक है उसके जरिए मैपिंग के माध्यम से गांवों में जो संपत्तियां हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया, लोगों को डिजिटल कार्ड बांटे गए और करोड़ों संपत्तियों के अब कार्ड लोगों को बांटे भी जा चुके हैं। इस योजना ने हम देखें तो गांवों में जो अर्थव्यवस्था है उसका एक पूरा इकोसिस्टम ही बदल दिया है जहां जहां ये योजना पहुंच चुकी है। संपत्तियों का वहां पर अब मोनेटाइजेशन हो चुका है और इस वजह से जो बैंकों से लोन लेने में दिक्कत आती थी संपत्तियों के एवज में, वो भी अब उस समस्या को भी सॉल्व किया जा चुका है। तो स्वामित्व योजना पर आपके क्या विचार है? प्रधानमंत्री का जो विजन रहा है कि डिजिटल तरीके से उसकी मैपिंग कर जो गांव के रिहायशी इलाके हैं उनके सही रिकॉर्ड को किया जाए और लोगों को उनका सही मैपिंग के जरिए कार्ड दिया जाए।
2: बहुत बढ़िया पहल है ये, और इससे जो समाज में पहले होता था कि लड़ाई झगड़े होते थे कि किसकी स्वामित्व है, किसकी जमीन कितनी है, वो सारे सॉल्व होते हैं। और इसको इस तरह से आप देखें, जैसे कि हम लोग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बिचौलियों को बाहर निकाला, उसी तरह से यहाँ पर जो फांदेबाजी होती थी जमीन को

0: उसको एकदम से कम किया है। इसमें एक और पहल जुड़ गया है जो सैटेलाइट प्रोग्राम है हमारे देश के, उस सैटेलाइट इमेजरी को इस जियो लोकेशन से इससे जोड़ा जा रहा है। जैसे कि आप मनरेगा की प्रोग्राम, तो मनरेगा में क्या काम हो रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें क्या काम हो रहा है, ये सारे इंटीग्रेट हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है, उसकी अपनी जमीन है, उसके पास एक डिजिटल मैप है, डिजिटल कार्ड है, उसपे कोऑर्डिनेट्स होगा, उस कोऑर्डिनेट्स को हम सैटेलाइट मैपिंग से जोड़ेंगे तो उसकी सॉइल की, उस वेदर की, उस कंडीशन उसको पता चलेगा, उसने कब बोना है, किस फसल को बोना है, कब उसको काटना है, ये सारे सुविधाएं अभी इसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो स्वामित्व योजना को हम सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पर ना देखें, इसके आगे उसका क्या होना है वो बहुत देश के किसान के लिए है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी पहल।
1: बिल्कुल प्रसून जी, क्योंकि भारत अब उस राह पर चल पड़ा है जिसमें डिजिटल समाधान से भारत ने अपनी कई समस्याओं को सुलझाया है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का दौर है और प्रधानमंत्री जिस विजन के साथ आगे चल रहे हैं, चाहे वो हार्डकोर जो डिजिटल तकनीक है सेमीकंडक्टर या चिप उसके निर्माण से लेकर डेटा सेंटर्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, आगे आने वाले समय में जो जिस विजन के साथ भारत काम कर रहा है वो कैसे आने वाले समय में भविष्य में भारत को डिजिटल क्षेत्र में एक लीडरशिप की तरह खड़ा कर सकता है जिस तरह से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: जी, भारत ऑलरेडी एक डिजिटल सुपर पावर है। अगर आप देखिए पूरे विश्व में तीन ही तरह की डिजिटल इकोनॉमीज हैं। पहला जिसको हम यूएस फोकस मानते हैं, जिस गूगल, एप्पल, फेसबुक ऐसी कंपनियां यूएस बेस्ड चला रही है। दूसरा है चाइना बेस्ड बैटेक्स जैसे बाइडू, अलीबाबा और ये कंपनी चला रही है। भारत ने एक तीसरा ऑप्शन दिया है पूरे विश्व को जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है, एम्पावरमेंट के लिए बना है। तो ये भारत ने पूरे विश्व को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है, उसकी अडेप्टेशन अगर आप देखिए 150 करोड़ भारतीयों ने उसको जिस तरीके से अपनाया और बहुत छोटे समय में इतना ज्यादा उसको यूसेज या प्रोत्साहन मिला है, वो अपने आप में एक सराहनीय इकोसिस्टम प्रधानमंत्री ने बनाया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार जो कर रही है एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जिसमें डेटा सेंटर से लेके, क्योंकि पूरे विश्व में दो ही कंट्रीज हैं जिसमें 1 अरब से ज्यादा की आबादी, वो है भारत और चाइना। तो ये एक तरह से डेटा प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं पूरे विश्व में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह से ऑयल होता है। डेटा के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम यूजलेस हैं, जैसे कि हमारी कारें बिना पेट्रोल के या ईंधन के। तो उसका जो एक तरह से कैपेबिलिटीज हमारी सरकार जानती है, तो इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि हमारे डेटा सेंटर हो, हमारे खुद की चिप कैपेबिलिटी हो, जिसमें ना सिर्फ हम चिप डिजाइन करें, हम उसको फैब्रिकेट करके, मैन्युफैक्चर करके, उसको सॉल्यूशन में एम्बेड करके ग्लोबली सेल भी करें। चिप एक तरह से किसी भी मशीन का एक प्रोसेसिंग यूनिट या दिमाग होता है, चाहे वो हमारा मोबाइल कैमरा हो या हमारी कार हो या हमारी वॉशिंग मशीन हो, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसमें स्टोर होते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम भारतीय सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति के तहत टेक्नोलॉजी ला रही है, टेक्नोलॉजी बनाने वालों को ज्वाइंट वेंचर्स में ला रही है, हमारे डोमेस्टिक इकोसिस्टम में मार्केट तैयार कर रही है, स्किल्ड लेबर्स तैयार कर रही है, और उसके रिलेटेड जो हमारे एमएसएमईज या हमारे फार्मर्स हैं उनको भी तैयार कर रही है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। जैसे हमारे फार्मर्स अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अब हमारी भारतीय सरकार ने बहुत सारे एफटीएस भी साइन किए हैं जो कि एक ग्रोथ का इंजन बनेंगे टेक्नोलॉजी के साथ मिलके पूरे भारतीय इकोसिस्टम के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए और नॉर्मल भारतीयों के लिए भी।
1: 25 सालों के प्रधानमंत्री के एक नए दृष्टिकोण और भारत को विकसित बनाने की सोच और इस अविरल सफर ने इस साबित किया है कि जब एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक अत्याधुनिक तकनीक आपस में मिलते हैं तो न केवल प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर निर्णायक चोट होती है, प्रशासन में पारदर्शिता आती है, बल्कि एक समावेशी और सशक्त समाज तैयार होता है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जोड़ा जाता है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, भारत को विकसित बनाने में भारत की ये परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बड़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसी विचार के साथ हम आज के कार्यक्रम के संस्करण को यहीं समाप्त करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रसून शर्मा जी और शंकर अय्यर जी, आप दोनों का, कि आप कार्यक्रम में जुड़े और

नमस्कार, सुप्रभात और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर। समय हो चुका है श्रोताओं 9:45 और 40 सेकंड और आज की तारीख 6 अक्टूबर है। इसमें इतिहास, विज्ञान, शिक्षा, प्रकृति और सिनेमा हर दिशा में खुलती हुई एक नई कहानी है। आज की सुबह भी ऐसी ही कई छोटी बड़ी स्मृतियों अपने साथ लाई है और इन्हीं को गीतों की मिठास में पिरोते हुए मैं प्रियांशी भटनागर आपके साथ हूँ कार्यक्रम म्यूजिकल दिल्लगी में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

शुदा भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला। अब आप बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जा होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपके लिए फिल्मी गानों का कार्यक्रम और पेश कर रहे हैं आपके लिए गीत गोरी तेरे प्यार में फिल्म से। दोस्तों गीत के बोल है दिल दफर और इस गीत को आवाज दी है नितिश कदम, श्रुति पाठक और विशाल शेखरनी।

0: It's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
1: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: दोस्तों आपको बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में यानी 10 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुडुचेरी की तट्टान सावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे। फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लीप वे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 148 अंक बढ़कर 72,531 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 54 अंक की वृद्धि के साथ 22,610 पर पहुंचा। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता भी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और प्रस्तुत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

दोस्तों कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देर ना करते हुए नजर रखते लेते हैं सबसे पहले फरमाइश, और इस वक्त कार्यक्रम में सबसे पहले फरमाइश आई है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से गौफ फैमिली जी से, जो कि हमारे रेगुलर लिसनर है। उनके नाम है शिवा गौप, प्रेम गौप, कपिल गौप, शिवांश गौप, संगीता गौप, लिपि गौप और दीपाली गौप जी, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत अनारी नंबर वन फिल्म से। गीत के बोल है धीरे धीरे, और इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य ने। गौप फैमिली जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में पहला गीत आप सभी के नाम।

0: आगे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपको आपकी घटिया शायरी की कसम। आप ईमान से बोलिए, ये शारदा देवी का असली बेटा है?
1: अरे नहीं यार, ये उसका असली बेटा नहीं है।
0: वही मैं जब से बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग चाट गए सब लोग।

दोस्तों, इस गीत के बाद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में रिक्वेस्ट आया है देवाशीष हजारिका जी से माजुली असम से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है मैं हूं ना फिल्म से गीत। गीत के बोल हैं तुम्हें जो मैंने देखा, और इस गीत को आवाज दी है अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया कौशल ने। देवाशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
3: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, सिरिंज और

0: और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
0: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
0: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और कार्यक्रम में चलिए नजर रखते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट की ओर। इस वक्त हमें रिक्वेस्ट आई है रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लकी जी से गोलाघाट असम से, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है गीत तीसरी मंजिल फिल्म से। गीत के बोल है ओ हसीना जुल्फो वाली, और इस गीत का आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। और ये गीत डेडिकेट करते हैं अपने सारे दोस्त बाइकन, अमल, विमल, देवशीष, हितेंद्र, जोगेंद्र, सोनाली, अंजलि, सुनीता जी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आप सभी के दोस्ती के नाम यह गीत।

मेहमान में हमें रिक्वेस्ट आई है असम से दिव्या बोरो जी से, और दिव्या जी ने रिक्वेस्ट किया है गीत फिल्म साजन चले ससुराल से। गीत के बोल है तुम तो दो के बाज हो, और इस गीत को आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने, और ये गीत डेडिकेट करते हैं अपने दोस्त अमल, विमल, रमेश, लाखी और देवशीष जी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हमारे साथ बने रहने के लिए, और दिव्या जी की रिक्वेस्ट पर प्ले कर रहे हैं ये गीत।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
8: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
7: लेकिन याद रखे, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
8: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
7: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
8: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और चलिए, कार्यक्रम में फिर से हम सॉन्ग रिक्वेस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है कार्बी आंगलोंग से, गीतन तेरुन जी से। और गिरन जी ने रिक्वेस्ट किया है फिल्म सट्टे पे सट्टा का गीत। गीत के बोल है जिंदगी मिलके बिठाएंगे, और इस गीत का आवाज दी है किशोर कुमार, आर डी बर्मन, सरन चक्रवर्ती और भूपिंदर सिंह ने। गिरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपके फरमाइश।

दोस्तों, इस गीत के बाद अब कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में रिक्वेस्ट आई है नाहरलगन अरुणाचल प्रदेश से लीखा मेमा जी से, और मेमा जी ने रिक्वेस्ट किया है गीत खलनायक फिल्म से, गीत के बोल है पाल की पे होके सवार, और इस गीत को आवाज दी है अलका यातिक ने। मेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेश कर रहे हैं आपके फरमाइश पर यह गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर और इसी के साथ ही समय हो चला है मेरे जाने का। लेकिन जाने से पहले आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और आगे के सफर में आपसे जुड़ेंगे आरजे मंच। दोस्तों, हमारे इस पहली प्रसारण सभा में साथ दे रहे थे प्रसारण निष्पादक तीथांगवांग तथा तकनीकी अभियंता दी नियो। तब मुझे यानी अपना आरजे साथी दांपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव।
1: राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
2: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: रक्षा मंत्री ने 19 स्लीपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डिआइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इसके लिए विपक्षी पार्टियां देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से अपमानजनक बातें कह रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। श्री पात्रा ने आगे कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहा सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 25 यात्री और चालक दल के 7 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रपति बोला टिनुबु ने हादसे की पुष्टि करते हुए नाइजीरियाई वायुसेना को दुर्घटना के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। और अब कुछ खेल खबरें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच में आज भारत और उरुग्वे आमने सामने होंगे। मैच सॉल्ट लेक के युवा भारतीय क्रीड़ांगण में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्री कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के दोपहर के प्रसारण सभा में। इससे पहले यानी सुबह के प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे लोम्बे के साथ, और अब आपको एक सुरीले सफर पर ले जाने के लिए मैं आपके साथ पहुंच चुकी हूं, आपकी अपनी आरजे बिंदुम दिंदो माज। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। और चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अब से लेके शाम के 4:25 तक के प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अभी आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम फिल्मी लहर, जिसके बाद 11:30 पर प्रसारित होगा वेस्टर्न मेलोडीज का कार्यक्रम तेचीको कोलोलो के साथ। ठीक 12 प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, जिसके बाद 12:10 पर हम आपके लिए लाएंगे गजल का एक खास कार्यक्रम। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज का मेहमान, हम सुनेंगे एन इंटरव्यू विद श्री चिसांग द्योरी। ठीक 1 आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। इसके बाद 1:10 पर हम लाएंगे हिंदी क्लासिक म्यूजिक का सुनहरा सा सफर, सुनेंगे 60s से लेके 80s के दशक के कुछ बेहतरीन हिट सॉन्ग्स। 1:40 पर हम सुनेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का कार्यक्रम, जिसके बाद 2 प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। 2:30 पर हम लाएंगे आपके लिए हिट्स ऑफ 90s, जिसके बाद 2:58 पर आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। फिर प्रसारित होगा विश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और तयहमती श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:30 पर हम लाएंगे बॉलीवुड अपडेट, बताएंगे आपको कुछ स्पाइसी बॉलीवुड गॉसिप्स। 3:40 पर प्रसारित होगा वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम वांचो भाषा में समाचार। 3:45 पर हम लाएंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एक छोटा सा कारवा, जिसके बाद ठीक 4 आप सुनेंगे ईदुमिशमी श्रोताओं का कार्यक्रम ईदुमिशमी भाषा में समाचार। शाम के 4:05 पर हम सुनेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एक कार्यक्रम, जिसके बाद 4:20 से लेकर 4:25 तक प्रसारित होगा तंगसा श्रोताओं का कार्यक्रम तंगसा भाषा में समाचार। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज की दोपहर प्रसारण सभा की रूपरेखा, और अब चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर। फिल्मी लहर में आज आपके साथ पहला गीत जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है राहत फतेह अली खान की आवाज में कोक स्टूडियो से आफरी आफरी। आशा करते हैं कि आप इस गीत का आनंद उठाएंगे।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz दिल से दिल की बात।
1: श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक, और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम फिल्मी लहर। चलिए अब इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत। हम सुनेंगे फिल्म ट्रैफिक का नेकी की राह, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। चलिए सुनते हैं ये बहुत ही इंस्पायरिंग सा गीत।

0: Thank you for joining me for this reflective collection of music. Stay tuned with us again tomorrow, same time, same station. This is Coco signing off and keep listening to Akashvani Tanagar. Bye-bye.
1: श्रोताओं, वेस्टर्न मेलोडीज के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और अब से कुछ देर बाद, यानी कि ठीक 12 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। हम फिर मुलाकात करेंगे श्रोताओं हमारे कार्यक्रम गजल के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और प्रशिक्षु चिकित्सकों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत

0: विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 के निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: रक्षा मंत्री ने उन्नत स्लेपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियन क्रेन का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश के एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
2: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ डाला है। श्री नायडू ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला लेगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1, तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। नाइजीरिया में बेनिन सिटी से लागोस जा रहे सैन्य विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। हादसे में विमान में सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति बोला टिनोबो ने हादसे के कारणों की तत्काल और विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंध्री, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defence Minister Rajnath Singh today launched Fleet Support Ship 1, laid the keel for Fleet Support Ship 5 and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. The upgraded Slipway 4 along with the new crane will enable the shipyard to build and launch vessels of up to 45,000 DWT.

0: दीवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। और अब दोस्तों, आप सभी को आदाब, सलाम और नमस्कार। कार्यक्रम गजल का वक्त हो चुका है और मैं हूँ आपकी आरजे मंच। आज की महफिल समर्पित है एक ऐसी आवाज को जिसे गजल की दुनिया में किसी तारुफ की जरूरत नहीं। हम बात कर रहे हैं जगजीत सिंह। जगजीत सिंह ने गजल को सिर्फ गाया नहीं, उसे आम सुनने वाले के दिल तक पहुंचाया। उनकी आवाज में सादगी थी, उनकी गायकी में गहराई और उनकी धुनों में एक ऐसा सुकून जो सीधा दिल को छू जाता है। उन्होंने गजल का को परंपरा से जोड़ कर रखते हुए उसे एक नया आसान और कंटेम्पररी अंदाज दिया। इसी वजह से उनकी गजलें आज भी उतनी ही अपनी लगती है। तो आइए आज के छोटे से महफिल के आगाज करते हैं जगजीत सिंह की एक खूबसूरत गजल के साथ। हम सुनेंगे फिल्म सरफरोश से होश वालों को खबर क्या।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: जगजीत सिंह की आवाज की खूबसूरती शायद इसी में है कि वो हर शेर को सिर्फ गाते नहीं महसूस करवाते हैं। उनकी गजलों में मोहब्बत है, जुदाई है, तन्हाई है और जिंदगी की वो एहसास है जिनसे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। चलिए इसी एहसास को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं जगजीत सिंह की एक और यादगार गजल। हम सुनेंगे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ये गीत है फिल्म अंत का। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गजल।

श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम गजल। दोस्तों, कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और गहरी होती जाती है। जगजीत सिंह भी एक ऐसी ही आवाज है। उनकी गजलें एक दौर की नहीं, कई नस्लों की यादों का हिस्सा है। तो आज के इस महफिल की आखिरी पेशकश भी जगजीत सिंह के नाम, एक ऐसी गजल जिसके साथ शायद आपको भी, आपकी भी कोई यादें जुड़ी हो। हम सुनेंगे होठों से छू लूं तू फिल्म प्रेम गीत से।

0: और इसी के साथ आज की ये छोटी सी जगजीत सिंह गजल महफिल यही खत्म होती है। मैं हूँ आपकी आरजे मांझ। याद रखिए, कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल में बस जाती है। जगजीत सिंह की आवाज भी उन्हीं में से एक है। आदाब। और दोस्तों, अब प्रसारित होगा हमारा कार्यक्रम आज का मेहमान। हम सुनेंगे एन इंटरव्यू विद श्री छिसांग दियोरी, जो कि है एक इमेज कंसल्टेंट, और हमारे इंटरव्यूअर रहेंगे गोपाल राय। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और हम फिर जुड़ेंगे हमारे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक के लिए।
1: ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है।

0: प्रस्तुत है वीकली इन्फोटेनिंग प्रोग्राम आज के मेहमान। आज की दुनिया में सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, ये भी जरूरी है कि हम खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं, लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे सामने लाते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और प्रेजेंस आपके बोलने से पहले ही आपके बारे में बहुत कुछ कह देती है। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बातों पर आज हम बातें करेंगे हमारे आज के मेहमान इमेज कंसल्टेंट, कॉन्फिडेंस कोच, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट श्री चिसांग देवरी के साथ। तो चलिए जानते हैं चिसांग देवरी की जर्नी, उनकी सोच और वो बातें जो युवाओं को अपनी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। चिसांग जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आके अपने प्रोफेशन के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज आई थिंक इमेज कंसल्टेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जो अरुणाचल में अभी तक इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो इसलिए लोगों को इस बारे में इतना नहीं पता। तो आई थिंक इस प्रोग्राम के जरिए बहुत लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि इमेज मैनेजमेंट क्या होता है एंड आप इमेज कंसल्टेंट का इस्तेमाल, उनका सर्विस आप कैसे ले सकते।
0: तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आप इमेज कंसल्टेंट को किस तरह से बताएंगे?
1: देखिए, अगर इमेज कंसल्टेंट को अगर मुझे बहुत आसान भाषा में बताना है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि जैसे कि जो वर्ड इटसेल्फ आपको कहता है इमेज, तो इमेज कंसल्टेंट इमेज के साथ काम करता है। अगर आप पूछोगे कि अच्छा इमेज क्या है, तो इस चीज को मैं नॉर्मल टर्म्स पे कहूं तो मैं बोलूंगा कि इमेज का मतलब आप जब किसी को देखते हो तो आपका क्या इंप्रेशन बनता है। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या इमेज कंसल्टिंग स्टाइलिंग है? नहीं, इमेज कंसल्टिंग स्टाइलिंग नहीं है। तो इमेज कंसल्टिंग बेसिकली आपका तीन पिलर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उस पिलर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अल्फाबेट ए बी सी। ए स्टैंड्स फॉर अपीयरेंस, बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। तो देखिए, ये जो तीन पिलर्स है अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, ये तीनों को एक इमेज कंसल्टेंट टेक केयर करता है। लेकिन ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा वास्ट है, तो नॉट नेसेसरीली आपको हर इमेज कंसल्टेंट हर एक पिलर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। कई होता है कि you know, उनका स्पेशलिटी होता है कॉन्फिडेंस, कई होता है उनका स्पेशलिटी कम्युनिकेशन, किसी का अपीयरेंस होता है। सो इट डिपेंड्स कि कौन सा इमेज कंसल्टेंट कौन से फील्ड पे वो स्पेशलाइज्ड है और वो उसी फील्ड पे काम करते हैं।
0: तो बेसिकली नॉर्मल वे में जब सोचते हैं तो इमेज की बात करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जब हम कपड़े किस तरह से पहनते हैं, किस तरह से फैशन को फॉलो करते हैं, तो इसमें क्या अंतर?
1: तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि अच्छा इमेज कंसल्टेंट का मतलब फैशन होता होगा, तो लोगों को लगता है कि अच्छा मुझे तो फैशन का जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक स्टाइलिस्ट और एक इमेज कंसल्टेंट में बहुत फर्क है। स्टाइलिस्ट जो होता है उनको आप बोल सकते हो कि हाँ उनको फैशन के साथ वो काम करते हैं, वो लोगों के फैशन स्टेटमेंट को बढ़ाने में काम करता है। इमेज कंसल्टेंट डजंट नेसेसरीली डू दैट। आपका जो इमेज कंसल्टेंट रहता है वो इमेज के साथ काम करता है। जब मैं बोलता हूँ इमेज, तो इमेज क्या है, तो अब मुझे थोड़ा एक साइकोलॉजी के टर्म्स पे थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने एक मौका दीजिए ताकि हमारे जो लिसनर्स है उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि होता क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इम्प्रेशन जो होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन हम कहते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कितना टाइम लगता है लोगों को फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना?
0: कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही इम्प्रेशन बैठ जाते हैं।
1: एग्जैक्टली, तो अकॉर्डिंग टू द डेटा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने में लोगों को विद इन 7 सेकंड्स आप जब किसी को देखते हो तो एक इम्प्रेशन पड़ जाता है। अभी आप कह सकते हो कि आई डोंट केयर, you know, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं लोगों के बारे में क्या सोच रहा हूं। या तो आप ये कह सकते हो या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैं तो बिल्कुल जजमेंटल नहीं हूं, मैं किसी को जज नहीं करता हूं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, इसमें हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन है, राइट, हमारा जो माइंड है वो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल पे काम करता है
0: जी।
1: अगर हम कॉन्शियस लेवल पे बात करें तो यस, आप कह सकते हो कि नहीं कॉन्शियसली मैं किसी को जज नहीं करता, कॉन्शियसली you know, आप कह सकते हो कि नहीं आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू जज एनीवन। लेकिन आप सबकॉन्शियस लेवल पे आप कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का इंप्रेशन आप बना ही लेते हो, और ये इसीलिए होता है बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर डिजाइंड टू मेक जजमेंट्स। क्यों? बिकॉज आप अगर प्री हिस्टोरिक एरा में जाते हो, जब आप हंटर गैदरर्स थे, तो ह्यूमन बीइंग के लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जंगलों में हमें सर्वाइव करने के लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम जब भी किसी भी चीज को देखते हैं हमें ये परखना पड़ता था विद इन फ्यू माइक्रो सेकंड कि इज इट सेफ और इज इट डेंजरस, कैन आई अप्रोच और शुड आई रन अवे। तो ये हमारा एक बेसिक इंस्टिंक्ट है जो आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हो, आप चाहे ना भी पढ़े लिखे हो, और कुछ भी हो, ये हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि वी मेक इंप्रेशंस ऑफ पीपल। अब मैंने आपको बोला कि जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए तो आपको 7 सेकंड्स भी नहीं लगता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वो इंप्रेशन को चेंज करने में आपको कितना टाइम लगेगा। वेल, इट टेक्स

0: लॉट ऑफ टाइम आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर नॉट दैट पर्सन, और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं इंप्रेशन चेंज होता है. एंड दैट ऑल्सो इफ ओनली यू गेट द अपॉर्चुनिटी. कई बार ऐसा होता है कि आप दूर में किसी को देखे, दिमाग में एक छवि बैठ जाता है. आपने जब मुझे फर्स्ट टाइम देखा होगा, आपको भी लगा होगा कि ओ शशांक ऐसा होता होगा, शशांक वैसा होता होगा. आप पर्सनली तो मुझे जानते नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक इंप्रेशन बैठा है. फिर चाहे आप जितना भी कोशिश करो कि नहीं मैं किसी का इंप्रेशन नहीं बैठाना चाहता हूं, वो हो ही जाता है. सो हम क्या करते हैं एज एन इमेज कंसल्टेंट, हमारा पूरा पढ़ाई ही इसी बेसिस पे होता है कि हाउ डू वी इंश्योर कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके पीछे जो साइंस है, उसका इस्तेमाल करके हाउ डू वी टेक द मैटर इन आर हैंड. इंस्टेड ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे ही रैंडमली बन जाए, हम फर्स्ट इंप्रेशन को क्यूरेट करने की कोशिश करें ताकि आपका राइट फर्स्ट इंप्रेशन पड़े, ताकि जो आपका प्रोफेशन है उस पर आप इस साइंस को, फर्स्ट इंप्रेशन वाला साइंस जो है, जो इमेज मैनेजमेंट का साइंस है, उसको इस्तेमाल करके आप इंश्योर करो कि यू आर बींग इंट्रोड्यूस्ड एंड यू आर बींग सीन द वे यू वॉन्ट टू बी सीन. सो दैट इज वेयर इमेज कंसल्टेंट really becomes helpful.
1: जब इमेज कंसल्टेंट की बात करते हैं तो आपने इस करियर को क्यों चुना?
0: So, देखिए मेरे लिए इमेज कंसल्टेंट जो है वो इट्स कम वेरी लेट इन द सेंस, पहले मैं कॉर्पोरेट के लिए काम करता था. सो मैंने कॉर्पोरेट के लिए करीबन 7 से 8 साल तक मैंने काम किया. बड़े बड़े कंपनीज के साथ मैंने काम किया, लिंक्डइन हो गया, अमेजोन हो गया, HSBC बैंक हो गया. तो वहां पे काम करते मुझे ये रियलाइज हुआ कि अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या चीज है, वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट. मुझे इस बात का भी रियलाइज हुआ कि मतलब जब किसी को सक्सेसफुल बनना होता है अपने करियर में तो ये सब चीज कितना मैटर करता है. इंसान का एक होता है हार्ड स्किल्स, जो आपका कोर स्किल सेट है, चाहे मे बी यू आर एन इंजीनियर, मे बी आप डॉक्टर हो, मे बी आप जर्नलिस्ट हो. सो दीज आर दी हार्ड कोर स्किल्स जो आपका है. एंड देन दूसरा एस्पेक्ट होता है सॉफ्ट स्किल्स, जो बहुत से लोगों को नहीं पता, स्पेशली हमारे स्टेट में. तो सॉफ्ट स्किल्स होता है एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम योर हार्ड स्किल, जो सॉफ्ट स्किल होता है. अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपको एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनना है तो क्या जर्नलिज्म जानना ही इनफ है, या फिर आपको लोगों के साथ डील भी करना हो? आपको ऑफिस में भी लोगों के साथ डील करने होंगे, आपको बाहर भी लोगों के साथ डील करने होंगे, जहां पे सॉफ्ट स्किल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने इसीलिए जब मैंने कॉर्पोरेट अपना क्विट किया, मैंने सोचा कि कुछ ऐसा सीखूं जो मैं अरुणाचल प्रदेश में आके मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं एंड मैं यहाँ के लोगों को मदद कर पाऊं कि सो दैट हम अभी नेक्स्ट स्टेप पे जा सके. मैं अरुणाचल प्रदेश का भी बात करता हूँ. अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग हम इस एक फेज पे हैं. अरुणाचल अभी बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, इट्स एट अ डेवलपिंग स्टेज. हमारा अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेलवेज आ गया, फ्लाइट्स आ गए, टूरिज्म बढ़ रहा है. लोग पहले जमाने में हमें अरुणाचल आने के लिए पहले गुवाहाटी आना पड़ता था, डिब्रूगढ़ आना पड़ता था, हमें असम से फिर गाड़ी लेके 4-5 आवर्स ट्रेवल करने के बाद आना पड़ता था. टुडे दिस हैज चेंज्ड. आज लोग बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाहर के दुनिया के साथ एक्सपोज हो रहे हैं. तो इसीलिए आई फेल्ट दैट इट्स हाई टाइम. हमारे यहाँ डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो बनते हैं, सो आई वॉज लाइक वाई नॉट इंट्रोड्यूस देम टू सॉफ्ट स्किल्स हमारे यहाँ के पब्लिक को, सो दैट दे आर रेडी कि जब अपॉर्चुनिटीज आए वी आर रेडी फॉर इट. और हम इक्वली इंडिया के हर एक स्टेट के साथ इक्वल लेवल पे हम कॉम्पिटिशन कर पाए, हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाए. दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां मुझे लगा कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस जस्टिफाई नहीं करता बिकॉज दे फोकस सोली ऑन हार्ड स्किल्स एंड वेरी लेस ऑन सॉफ्ट.
1: तो आपके हिसाब से अभी तक आपने जितने भी काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जो इमेज बिल्डिंग हुआ या तो इमेज मैनेजमेंट हुआ, कितने करीब हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग?
0: देखिए अगर मुझे टू बी ऑनेस्ट अगर मुझे बोलना होगा देन आई वुड स्टिल से दैट अभी तक हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं है. एंड मुझे यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू टेक इनिशिएटिव हियर. जैसे कि फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश हमारा जो गवर्नमेंट है, दे टॉक अ लॉट अबाउट टूरिज्म डेवलप करना है. तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा टूरिज्म क्या है, टूरिज्म डेवलप कैसे होता है. क्या अगर हम बस अच्छे होटल्स या सड़कें अच्छे बना लें से क्या टूरिज्म डेवलप हो जाएगा? वॉट अबाउट पीपल स्किल्स? टूरिस्ट तो आ जाएंगे अरुणाचल क्योंकि अभी फ्लाइट जो आ गया है, लेकिन ईटानगर आने के बाद वो किसी होटल में गए और वहां का अगर सर्विस स्टाफ का बात करना उनको पसंद नहीं आया, द वे दे डेल्ट विद द प्रॉब्लम उनको पसंद नहीं आया, उनका ग्रूमिंग पसंद नहीं आया, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनका कि अच्छा अरुणाचल में लोगों को नहीं पता कि कैसे डील करना चाहिए टूरिज्म के साथ? तो सी दीज आर द थिंग्स. तो कई बार आई फील कि कॉलेजेस हो गए या हॉस्पिटैलिटी फील्ड हो गया या आपके इवन इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, दे आर सो फोकस्ड on numbers in the subject matter, मतलब कि वो भूल जाते हैं कि by the end of the day we are human beings and हमें एक दूसरे को you know like if we can just make each other happy, that's the best recipe for a good business rather than मुझे Excel में काम करना आ गया, presentation देना आ गया. That is why I say you know apart from hard skills, soft skills are very important. So as an image consultant हम soft skills पे भी काम करते हैं.
1: Career को boost करने के लिए first impression हुआ या तो personal branding हुआ, ये कितना important है?
0: It's very

0: इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज में अगर क्लास का स्ट्रेंथ हो गया 70 स्टूडेंट्स और जब वो पास आउट करके निकलते हैं तो हर किसी के पास डिग्री होगा, हर किसी के पास सर्टिफिकेट होगा, लेकिन हर कोई तो इक्वली केपेबल नहीं होता है, हर कोई तो सक्सेसफुल नहीं होता है. सो वॉट इज दैट फैक्टर दैट डिसाइड्स कि ये बंदा सक्सेसफुल हो गया, ये बंदा रह गया? इट इज द सॉफ्ट स्किल. क्योंकि नॉलेज हर किसी को है, हर किसी के पास सर्टिफिकेट है. नॉट एवरी पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम प्रोफेशन दे आर इक्वली सक्सेसफुल. व्हाई? बिकॉज उनके पर्सनैलिटीज अलग अलग होती. सम पीपल आर वेरी गुड विद पीपल, दे जस्ट नो हाउ टू हैंडल पीपल, दे नो हाउ टू हैंडल सिचुएशन, दे नो हाउ टू नेगोशिएट, दे नो हाउ टू पुट देयर पॉइंट फॉरवर्ड. उनको पीपल स्किल आता है. सो दैट इज सॉफ्ट स्किल्स जो प्रोबेबली कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में इतना एम्फेसाइज नहीं किया जाता. तो यहाँ पे आई फील कि यू नो एज अ पर्सन आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए सॉफ्ट स्किल्स पे.
1: आज के दिन में जो सॉफ्ट स्किल अरुणाचलियों को सीखना चाहिए, आपको क्या लगता है कौन कौन से फील्ड हो अभी सीखना चाहिए?
0: सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपके बेसिक स्कूलिंग से. देखिये, बाहर अगर आप बात करते हैं राइट, अगर हम सिटीज के बात करें, दिल्ली मुंबई वगैरह हो गए, तो वहां के जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर आप देखोगे कि वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, बिकॉज उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ से राइट. तो इसलिए हमारे यहाँ तो आई मीन इफ यू वॉन्ट अरुणाचलीज टू कम्पीट एट दैट लेवल, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सॉफ्ट स्किल इज गिवन, इट्स मस्ट. यहाँ मतलब स्टूडेंट्स को नहीं, यहाँ तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए. यहाँ तो मतलब कॉलेजेस जो इंस्टीट्यूशंस है उनको खुद इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि दिस इज कंपलसरी और इसे हल्के में मत लीजिएगा. और अगर आप पूछोगे कि कौन सा, तो लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशन. मुझे लगता है कि आज भी अरुणाचल में व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन हम इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन धीरे धीरे करके हम बाकी सब भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं.
1: लोग सोचते हैं कि हमें अपना इमेज बदलने के लिए या तो अपना पर्सनैलिटी ब्रांडिंग करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते होंगे, तो बजट की बात करते हैं तो आप क्या कहोगे?
0: देखिए, बजट अगर आप बोलो तो यू नो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपको करना क्या है, और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किसके पास जाते हो. जैसे हर किसी का रेट सेम नहीं होता, वैसे ही डिपेंड करता है कि कौन सा इमेज कंसल्टेंट या कौन सा सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर कितना चार्ज करता है. इसमें बहुत वेरिएबल है. इट डिपेंड्स कि आप किसके पास जाते हो, उनके चार्जेस क्या है, और आप कौन से क्लास लेते हो. सो इट वुड डिपेंड ऑन दैट. अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो जहां पे दिस इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द करिकुलम, इवन बेटर. अगर आप कॉलेजेस में जा is already part of the curriculum, even better. Rather than aap alag se ja rahe ho, lekin agar aap alag se ja bhi rahe ho, to it would depend ki kaun kitna charge karta hai. Aapka basic let's say 10,000 se leke lakhon tak ja sakta hai.
1: Okay.
0: It would depend ki aap kya kya lete ho, aap kisse le rahe ho.
1: तो बात करते हैं अब कॉन्फिडेंस और ड्रेसिंग की. तो आपको क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस और ड्रेसिंग में क्या कनेक्शन है, और क्या हमारे कपड़े सच में कॉन्फिडेंस को प्रभावित या इम्प्रेस कर सकते हैं?
0: This is very interesting. तो मुझे इसमें थोड़ा सा साइंस आप इंक्लूड करने के लिए दीजिएगा. सो देयर इज दिस एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट लोगों ने किया हुआ था. इस एक्सपेरिमेंट को ये लोग बाद में इसका जो रिजल्ट है, साइकोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, इसका रिजल्ट को इन्होंने एनक्लोथ कॉग्निशन कहा है. इसका जो रिजल्ट है एनक्लोथ कॉग्निशन, इस दौरान इन्होंने क्या किया, बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाते हुए आपको ऊपर ऊपर बताता हूं कि उन्होंने एक प्रोफेशनल लोगों को लिया, उन्होंने कुछ नर्सेस को लिया, एंड उसमें से हाफ नर्सेस को इन्होंने यूनिफॉर्म में ड्यूटी करने दिया, हाफ को कैजुअल में ड्यूटी करने दिया. एंड देन लेटर जब उनसे पूछा गया, उनको इफेक्टिवनेस के बारे पता चला कि जो लोग यूनिफॉर्म में ड्यूटी कर रहे थे दे फेल्ट वेरी चार्ज्ड, दे फेल्ट प्रोफेशनल, उन्होंने बहुत 100% देके अपना काम किया. और जो लोग कैजुअल वेयर में अपना ड्यूटी कर रहे थे तो वो कैजुअल जो फीलिंग है वो उनके काम में दिखा गया. सो इससे उनको पता चला कि अच्छा, कपड़ों से साइकोलॉजी का साथ रिलेशन है. तो इस चीज को अगर हम और सेल्फ टर्म पे समझे, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें दो चीज होता है. एक होता है कि आप जो पहनते हो इससे लोगों का आपके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ता है, दैट इज वन. दूसरा, आप जो पहनते हो इससे आपका आपके ऊपर क्या इंप्रेशन होता है. कई लोग कहते हैं कि आई डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स, व्हिच इज फाइन. अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है कि अच्छा दुनिया आपको देख के उनको क्या एनर्जी मिल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, दैट इज फाइन. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप खुद को देखते हो एंड देन यू सी योरसेल्फ इन अ सर्टेन वे, बात है कि उसमें आपका भी एनर्जी डिप हो जाता है. सो सी, दिस इज हाउ साइकोलॉजी प्लेज अ रोल. तो इसीलिए इफ यू वॉन्ट टू फील एनर्जेटिक, इट्स अ वेरी गुड ट्रिक. अपने आप को थोड़ा सा अगर आप ग्रूमिंग करके रखो तो हमेशा अच्छा रहता है. वही उनको एक पॉजिटिविटी वाला फीलिंग देता था.
1: कुछ लोग ऐसे भी जो सोचते कि हाँ मुझे पता नहीं कि मेरा स्टाइल क्या है, तो उसके लिए आप क्या कहोगे?
0: देखिए, स्टाइल जो है, आई मीन फॉर एग्जांपल, स्टाइल डिपेंड करता है राइट. अभी मैंने जैसे कहा था कि इमेज कंसल्टेंट एंड स्टाइलिस्ट दो अलग चीज है. किसी इमेज कंसल्टेंट को कहोगे कि मुझे स्टाइलिस्ट बना दो, यू नो मैं ऐसे स्टाइलिश लगूं, कैन एन इमेज कंसल्टेंट हेल्प यू देयर? यस, इमेज कंसल्टेंट कैन, लेकिन एक स्टाइलिस्ट भी आपको वो कर सकता. लेकिन इमेज कंसल्टेंट जो है आपको बहुत ब्रॉडर

0: और आपको क्या चाहिए इस जर्नी से. फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए क्यों हो, आपको क्यों लगता है कि आपको स्टाइल अपग्रेड का जरूरत है. वंस वी अंडरस्टैंड दैट, वी आर एबल टू हेल्प यू. बस ऐसे ही मैं सबसे फैशनेबल क्लोथ्स आके आपको दे दिया, यू नो दैट्स वेरी बेसिक दैट एनीवन कैन डू. इमेज कंसल्टेंट विल डू मच मोर देन दैट.
1: तो क्लोथिंग की बात हुआ, स्टाइलिंग की बात हुआ, तो कलर हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो कलर साइकोलॉजी या तो कलर एनालिसिस, उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे.
0: थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन को, मतलब इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आजकल तो कलर एनालिसिस बोल के भी चीज एक सर्विस होता है एंड बहुत से लोगों को नहीं पता. सो लॉट ऑफ इमेज कंसल्टेंट हम लोग कलर एनालिसिस भी करते हैं. तो कलर एनालिसिस क्या होता है, सो सी वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज हर कोई कलर हर किसी के साथ नहीं जाता. दैट इज वन थिंग. हर इंसान का जो स्किन में पिगमेंट्स होता है वो अलग होता है. कईयों के अंडरटोन वार्म होता है, कईयों के अंडरटोन कूल होता है, कई लोग न्यूट्रल अंडरटोन के होते हैं. सो जब आप कलर एनालिसिस करते हो तो हमें पता लगता है कि अच्छा ये सारा टोन जो है, ये सारा जो कलर्स है आपके स्किन टोन पे बेस्ट जाता है. सो देन एज अ एक्स्ट्रा सर्विस, देखो दिस इज अ पार्ट ऑफ इमेज कंसल्टिंग, दिस इज नॉट समथिंग डिफरेंट. ये इमेज कंसल्टिंग का एक पार्ट है जहां पे वी ट्राई टू रेकमेंड यू द बेस्ट कलर्स दैट यू कैन वेयर. एंड द मोमेंट यू वेयर दोस कलर्स आपके चेहरे पे एक ग्लो आ जाता है. व्हाई? बिकॉज दोस कलर्स आर योर कलर्स. जान के रखने में देयर इज नो हार्म. आप उसे एक टूल के इस्तेमाल कर सकते हो फॉर योर इंपॉर्टेंट ओकेजंस, फॉर इंपॉर्टेंट डेट्स. जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या जब आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, यू नो वेयरिंग योर राइट कलर विल ऑलवेज ब्रिंग दैट नेचुरल ग्लो टू योर फेस. सो दैट इज वन. कलर साइकोलॉजी थोड़ा अलग है. इफ यू टॉक अबाउट कलर साइकोलॉजी, यू नो कलर हैज लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट. देर इज ए रीजन वाई आपका जो सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल, फॉर एग्जाम्पल इट इज ग्रीन. ग्रीन सिंबलाइजेज समथिंग, राइट? येलो सिंबलाइजेज समथिंग, रेड सिंबलाइजेज समथिंग. बहुत सारा ट्रैफिक सिग्नल्स होता है या जो वार्निंग साइंस होता है, इट इज इन रेड. देर इज ए रीजन फॉर दैट, बिकॉज रेड इज अलर्ट, स्टॉप. सो दिस इज कलर साइकोलॉजी. तो क्या होता है, हम कलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके एज एन इमेज कंसल्टेंट आपके वार्डरोब में समटाइम्स वी सजेस्ट यू कि आर यू गोइंग फॉर अ मीटिंग, तो आप किस तरह का भावना पेश करना चाहेंगे. डू यू वांट टू कम अक्रॉस एज कंपेटिटिव, डू यू वांट टू कम अक्रॉस एज अथॉरिटेटिव, और डू यू वांट टू कम अक्रॉस एज सॉफ्ट जेंटल. उसके बेसिस पे हम आपको कलर्स रेकमेंड करते हैं. सो सी दिस इटसेल्फ इज सच अ वास्ट टॉपिक. अगर आपको साइंस ऑफ कलर समझ आ गया ना, यू कैन यूज दैट ऑल्सो एज अ टूल आपके करियर एडवांसमेंट के लिए.
1: तो आपको क्या लगता है कि जब सोशल मीडिया में हम अपना फोटोज डालते हैं, वीडियोस डालते हैं या कुछ रील्स या शॉर्ट्स डालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो इसका जो आउटकम है ज्यादातर पॉजिटिव है या नेगेटिव?
0: देखिए सोशल मीडिया ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आजकल का जमाना, मतलब जस्ट बिकॉज मी सेइंग कि नहीं सोशल मीडिया नेगेटिव है डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज दुनिया उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है. सोशल मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हैविंग सेड दैट, आप जो बोल रहे हो कि हम फोटोज डालते हैं, वीडियोज डालते हैं, आई थिंक वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज वी बी वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट. आप जो डाल रहे हो, हाउ रिस्पॉन्सिबल आर यू? दिस इज अगेन माई पर्सनल ओपिनियन कि इट शुड नॉट बी जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन, एंगर, खुशी या वॉट एवर. यू कैन put forward your जो आपका perspective होता है, but basically bottom line what I want to emphasize is you use it responsibly. As long as आप social media को responsible तरीके से आप इस्तेमाल करोगे, I think it's a good thing. Because आज because of social media we are seeing so many changes around the world. So you cannot deny the fact that social media has brought about a lot of positive changes in people's life. But having said that, बहुत ज्यादा करना can also lead to depression, can also lead to too much of comparison, which might not be good.
1: जी, जब imagine की बात करते हैं, ग्रूमिंग की बात करते हैं, स्टाइल की बात करते हैं, तो ज्यादातर ये समझते हैं कि ये जो है ओनली फीमेल्स करते हैं. तो आज देखते हैं कि जब इंडिया की बात करते हैं, इंडियन मेन आल्सो फॉलोइंग दिस ट्रेंड.
0: देखिए, विमेन हैज ग्रेट इंट्यूशन. जो महिलाएं हैं उनका इंट्यूशन कैपेसिटी, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग समथिंग राइट. उनको भले ही साइंस ऑफ इमेज ना पता हो, बट दे हैव ऑलवेज अंडरस्टूड. And they have always put an effort in presenting themselves in the best way possible. Men ka, unfortunately, we are having to work a lot. Women ka hamesha se theek hi raha hai. Now, when we talk about, is it important for men? जैसे कि मैंने इतना explain किया कि, you know, how it's a science. It's not vanity. It's science. It's not pastime. It is something science. It is something very important. And once you understand कि ये science काम कैसे करता है, you know, image को हम कैसे make it work in our favor, then it becomes a tool. और उस tool का इस्तेमाल करके आप life में कुछ भी achieve कर सकते हो. जैसे कि for example, अगर हम हथियार के बात करें, right? Let's talk about a knife. नाइफ से आप किसी को मार भी सकते हो, नाइफ से आप वेजिटेबल काट के आप सब्जी भी बना सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट. सो द सेम गोज हियर. अगर आपको पता है कि इमेज

0: जो साइंस है, इमेज मैनेजमेंट का जो साइंस है, जो टूल है, उसको इस्तेमाल करके आप करियर में एडवांसमेंट आप ला सकते हो. आप एज अ पर्सन, आप एज अ पर्सनैलिटी आप ग्रो कर सकते हो. व्हाई नॉट? आई थिंक एज एन इंसान हम सारा नेचर का जितना भी दिया हुआ जो चीज है हम उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं. सो माइट एज वेल यूज दिस.
1: तो एक लीडर जब अपना इमेज बनाता है तो आपको क्या लगता है कि उसके लीडरशिप में भी कितना इन्फ्लुएंस आएगा, वो किस तरह से अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं?
0: इफ यू टॉक अबाउट लीडर्स एंड लीडर्स, मैं बस पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज लीडर हर कोई फील्ड में होता है. एवरीवन इज अ लीडर, क्योंकि आप किसी ना किसी को तो लीड कर रहे हो. अगर किसी को नहीं लीड कर रहे हो तो आप अपने आप को लीड कर रहे हो. राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग आप अपने आप को लीड करते हो. सो अगर आप मुझसे पूछते हो कि अच्छा व्हाई इमेज मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर लीडरशिप, सो इमेज मैनेजमेंट के साइंस से, यू नो, लाइक इफ यू नो हाउ टू वर्क योर इमेज, यू वुड नो हाउ टू यूज इट टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट. राइट नाउ इमेजिन कीजिए कोई मैनेजर है एंड मैनेजर शोज अप एट वर्क एवे ही, ना ग्रूमिंग किया, ना कुछ किया, कपड़े भी वैसे ही पहन के आ गए, तो कहीं ना कहीं उनका टीम को लगता है कि यार सर कैसे आ गया या मैम कैसे आ गई है, यू नो, तो वो सीरियसनेस नहीं लेते हैं. फिर भले ही मैनेजर बहुत टैलेंट हो, भले ही मैनेजर बहुत अच्छी चीजें बोल रहे हो, लेकिन टीम उसे सीरियसली नहीं लेता. नाउ इमेजिन वही मैनेजर कल को अगर बिल्कुल ग्रूम्ड होके आते हैं. अगेन यहां पे मैं बोलता हूँ, यू डोंट हैव टू बी स्टाइलिश, ऑल यू नीड टू बी इज वेल ग्रूम्ड. एंड देन अगर आप ग्रूमिंग के साथ ऑफिस आते हो और आप सेम चीज बोलते हो, देन यू सी हाउ द इम्पैक्ट इज, डिफरेंस कितना होता है. आपका टीम जो है आपको बहुत, यू नो, कई ज्यादा सीरियसली लेंगे रादर देन योर बिफोर वर्जन. इसीलिए बहुत जरूरी है कि एज अ लीडर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा तो ले ही लेना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट डालना ही चाहिए, और आप जो करोगे आपके फॉलोअर्स भी वही करेंगे. एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, अगर आप ग्रूमिंग पे ध्यान देते हो, डिसिप्लिन पे ध्यान देते हो, तो आपके टीममेट्स भी वही करेंगे, आपको फॉलो करेंगे. सो दैट इज व्हाई ये लीडर्स का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है.
1: जी, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि ग्रूमिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है. आपने ये भी कहा कि स्टाइल से ज्यादा आपको ग्रूमिंग में ध्यान देना है, तो इसका क्या मतलब हुआ?
0: देखिए, स्टाइल इज अ पर्सनल चॉइस. यू नो, हम लोग इमेज मैनेजमेंट या फिर इवन स्टाइलिंग फील्ड पे हम बात करते हैं कि पर्सनल स्टाइल, बिकॉज स्टाइल इज नॉट यूनिवर्सल. मेरे लिए जो स्टाइलिश है वही शायद से आपके लिए स्टाइलिश ना हो. तो इसीलिए अगर कोई कहता है कि मुझे स्टाइलिश दिखना है, सबसे पहले तो मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा व्हाट इज स्टाइलिश अकॉर्डिंग टू यू. आपको कौन सा तरह का स्टाइल आपको पसंद आता है? क्योंकि देखिए, स्टाइल तो फैशन वर्ल्ड, यू नो हाउ इट चेंजेस. हर 3 महीने में एक नया फैशन आ जाता है और हर एक फैशन आपके साथ जाएगा भी नहीं. क्योंकि जब हम इमेज की बात करते हैं, यू नो, इट्स एक्चुअली वेरी डीप. यहाँ पे अगर मुझे किसी क्लाइंट के साथ उनका पर्सनैलिटी या इमेज चेंज करना है, तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ उनका लाइफस्टाइल, उनका पर्सनैलिटी को समझ के. उसके बाद हम उनका बॉडी शेप को भी देखते हैं कि आपका बॉडी शेप क्या है, क्या आपके बॉडी शेप में इस तरह के कपड़े फिट आएंगे, नहीं आएंगे, विल इट गो वेल, विल इट नॉट गो वेल. सो देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग. तो इसीलिए मतलब इमेज इज डिफरेंट, ग्रूमिंग इज डिफरेंट एंड स्टाइलिंग इज डिफरेंट. अगर आपको करना है कि नहीं मुझे स्टाइलिश बनना है, तो ठीक है, यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन, बट फर्स्ट लेट्स फोकस ऑन बीइंग ग्रूम्ड. दैट इज लाइक द बेबी स्टेप. आप पहले ग्रूम तो हो जाइए, उसके बाद लेट्स वर्क ऑन योर स्टाइल पर्सनैलिटी. लेट्स सी कि आपको हम स्टाइलिश कैसे दिखा सकते हैं, बट फर्स्ट लेट्स एड्रेस द बेसिक्स.
1: स्टाइल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिफर करते हैं. तो बात करते हैं उसके बाद, जैसे कि आपने कहा कि कभी कभी जो लोग है कुछ मिस्टेक कर देते हैं या ग्रूमिंग हुआ, क्या मिस्टेक करते हैं लोग?
0: वेल, देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारा सवाल हो सकता है, बट अगर एक चीज मुझे बोलना हो कि बेसिक मिस्टेक इज ट्राइंग टू बी समबडी एल्स. आई ऑलवेज से दिस टू पीपल, नेवर बी एनीबॉडी एल्स. जस्ट बिकॉज किसी और ने ऐसा पहना हुआ है, मैं भी उसकी तरह दिखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दैट वुडन वर्क. क्योंकि अगर वो कपड़े पहन के या उस तरह से ग्रूम करके अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट. आप कॉन्फिडेंटली ना आप चलोगे, ना कॉन्फिडेंटली बैठोगे, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी. सो व्हाई वुड यू डू दैट टू योरसेल्फ? उससे बहुत ज्यादा बढ़िया है कि फर्स्ट ट्राई एंड डिस्कवर योर ओन स्टाइल, कि आपको क्या पसंद है एंड आपके बॉडी पे क्या जचता है, आपके प्रोफेशन के मुताबिक व्हाट इज ओके, व्हाट इज नॉट ओके, एंड देन यू नो कम अप विद योर ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल एंड कैरी दैट थ्रू आउट योर लाइफ.
1: तो एज एन इमेज कंसल्टेंट, आपके जो क्लाइंट्स आए हैं अभी तक कौन कौन से चीज को लेकर आए, क्या क्या चाहते हैं आपसे?
0: देखिए, ज्यादातर लोग आते हैं आइदर कलर एनालिसिस के लिए आ गए या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस के लिए आते हैं, विच इज नॉट बैड, क्योंकि एटलीस्ट आ तो रहे हैं, यू नो. बट जब भी मेरे साथ, मतलब मेरे पास अगर कोई भी आता है, आई टेक इट वेरी सीरियसली टू एजुकेट देम ऑन द ऑप्शंस देयर इज. कि इस चीज का पोटेंशियल कितना है वो बोलने के लिए. देखिए उस वो चीज को बोलने, जैसे कि आज मैं आपके सामने बैठ के इस फील्ड के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ और आपको इस चीज का एहसास दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज में पोटेंशियल कितना है. आप अपना इमेज के साथ वर्क करके गॉड नोज व्हाट काइंड ऑफ हाइट्स यू कैन अचीव इन लाइफ. आपके आसपास आपके पर्सनल लाइफ पे आप इम्पैक्ट ला सकते हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट ला सकते हो. सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लोर द पोटेंशियल दैट देयर इज, जो ज्यादातर लोग 80% लोग सोचते ही नहीं उस लाइन पे. तो उनको कई बार लगता है कि अच्छा इट्स ऑल अबाउट कलर एनालिसिस. तो मैं वही बोलता हूँ कि कलर एनालिसिस तो बहुत छोटा सा हिस्सा है इस चीज का. यू नो देयर इज सो मच मोर बट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए.
1: जी जी, जो युवाओं को पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, तो एज एन इमेज कंसल्टेंट आप अरुणाचल प्रदेश की युवाओं को क्या कहेंगे?
0: वेल आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड जब भी यूथ का बात किया जाता है बिकॉज आई थिंक दे आर द फ्यूचर फॉर आर स्टेट. यहाँ अभी मुझे यहाँ पे 5 साल हो गया है वैसे ईटानगर में. एंड अगर मुझे बोलना हो कि बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज वेरी फैशन फॉरवर्ड, जो हमारा यहाँ का यूथ है दे आर ऑलरेडी वेरी गुड इन फैशन अगर आप देखोगे. बट लाइक आई सेड कि फैशन इज नॉट इमेज, दे आर टू डिस्टिंक्ट थिंग. क्योंकि आप फैशन पिक कर रहे हो मूवीज से, आप फैशन पिक कर रहे हो बॉलीवुड से, आप फैशन पिक कर रहे हो कोरियन फिल्म इंडस्ट्री से. दैट इज फैशन, दैट इज डिफरेंट. वंस यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ इमेज, आप उसको अपने जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हो टू क्राफ्ट द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, टू क्राफ्ट द काइंड ऑफ इम्प्रेशन यू वॉन्ट टू मेक इन द सोसाइटी. को अगर इन्हीं यूथ में से कल को कोई जाके अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनेगा, कल को कोई जाके अरुणाचल प्रदेश में आईएएस ऑफिसर बनेगा, डीसी बनेगा, सीईओ बनेगा, लॉट ऑफ अदर फील्ड, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे. बट इमेजिन इफ यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड सॉफ्ट स्किल्स आप में है, आपको इमेज का ज्ञान है, तो जस्ट एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी you will be so well groomed personality कि आपका impact ही कुछ और ही होगा. And when ये पूरा population ऐसा हो जाता है, then as a state we become much more capable and much more stronger.
1: तो अंत में आप हमारे सुनने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिससे कि उनका confidence और personality दोनों ही बेहतर बने?
0: वेल सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए एंड अपने आप पे काम कीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप फिर चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, यू कैन ऑलवेज बिकम बेटर. एजुकेशन कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज एंड आपका यूनिवर्सिटीज में खत्म नहीं हो जाता. एजुकेशन इज लाइफ टाइम, लर्निंग इज लाइफ टाइम. मेक इमेज, मेक सॉफ्ट स्किल पार्ट ऑफ दैट लर्निंग. जैसा मैंने कहा है कि इमेज एंड सॉफ्ट स्किल कैन कम सो हैंडी, कैन बी सो यूजफुल. अगर आप उसके बारे में जानोगे, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करोगे, आपको भी अंदाजा हो जाएगा. एंड यूज दैट टू ग्रो एंड बिकम बेटर, अचीव सक्सेस इन लाइफ.
1: जी, तो चिसांग जी आप हमारे स्टूडियो आए और पर्टिकुलरली इमेज मैनेजमेंट के बारे में इतनी सारी जानकारी दी. इसके साथ ही साथ आपने कलर एनालिसिस हुआ या कलर साइकोलॉजी हुआ, और पर्टिकुलरली आपने ये भी कहा कि आज के दिन में हर किसी को सॉफ्ट स्किल सीखना जरूरी है, और पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन की बात करें तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स बीन ग्रेट प्लेजर.
1: याद रखिए, कॉन्फिडेंस जन्म से नहीं मिलता, इसे हर दिन प्रैक्टिस करके निखारा जा सकता है. इसी पॉजिटिव थॉट के साथ कार्यक्रम से लेता हूँ विदा. नमस्कार.
2: अटेंशन, पारी हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया. उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियात क्रेन का भी उद्घाटन किया. इस अवसर पर श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की.
4: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है. पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से HSL ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है.
3: उन्नत स्लिपवे 4 नई क्रेन के साथ शिपयार्ड को 45,000 डेडवेट टन तक के जहाजों के निर्माण और जलावतरण में सक्षम बनाएगा. इससे बड़े जहाजों के निर्माण की उसकी क्षमता में वृद्धि होगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयर इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से घाना, कोटे डी आइवर और इथोपिया की 5 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री जयशंकर तीनों देशों के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे अदीस अबाबा में विदेश मंत्री क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट चिंता का विषय है, क्योंकि इससे विमानन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का भारी बोझ पड़ा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार स्थिति का आकलन करने के लिए विमानन और तेल विपणन कंपनियों के साथ कीमतों पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगा और फिर कोई फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों तथा महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
5: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
3: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और दारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज बढ़त देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 476 अंक बढ़कर 72,859, जबकि निफ्टी 132 अंक की वृद्धि के साथ 22,688 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। जापान एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों का आज सुबह अमृतसर हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Defense Minister Rajnath Singh has said India needs a strong and integrated maritime ecosystem to further enhance its maritime power and strengthen the country's defense capabilities. The Defense Minister today launched Fleet Support Trip 1, laid the keel for Fleet Support Trip 5, and inaugurated the upgraded Slipway 4 and a 300-ton Goliath crane at Hindustan Shipyard Limited in Vishakhapatnam. Addressing the gathering, Mr. Singh said Fleet Support Ship 1, named Surya, will strengthen the Indian Navy's reach, endurance and operational effectiveness. He said the new Slipway and Goliath crane at HSL will further enhance the shipyard's capacity to undertake large shipbuilding projects. The Defence Minister said the Indian Navy has repeatedly demonstrated its capabilities in the Indian Ocean region as a first responder and preferred security partner. Polling is underway for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place for Madhurantakam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nondigram.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। और चलिए दोस्तों, वक्त है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का, और मैं हूँ आपकी आरजे मांझ। कुछ गाने दोस्तों सिर्फ गाने नहीं, वो अपने साथ एक पूरा दौर लेकर आते हैं। वो दौर जब मोहब्बत का इजहार खत के जरिए होता था, मुलाकात का इंतजार होता था, और एक खूबसूरत गीत पूरी शाम को यादगार बना देता था। आज के इस महफिल में हम सुनेंगे हिंदी सिनेमा का कुछ ऐसे ही एवरग्रीन गीत, जिनमें है मोहब्बत, रोमांस, यादें और वो पुराना सुकून। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत के साथ, फिल्म बीवी हो तो ऐसी का, फूल गुलाब का, जिन्हें गाए हैं अनुराधा पुडवाल और मोहम्मद अजीज की जोड़ी ने। इस गीत के निर्देशक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। तो चलिए सुनते हैं ये गीत फूल गुलाब का।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
1: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: दोस्तों, गुलाब की खुशबू से अब बात करते हैं एक और खूबसूरत चेहरे की। पुराने हिंदी गानों में हुस्न की तारीफ भी कितनी दिलकश और दिलकश अंदाज में की जाती थी, फूल, चांद, सितारे और मोहब्बत से भरे अल्फाज। तो इसी खूबसूरत एहसास को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं एक और गीत, फिल्म अनारी से फूल फूलों सा चेहरा तेरा, जिसे गाया है उदित नारायण ने, संगीत के निर्देशक है आनंद मिलन और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। चलिए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का, जहां हम आपको सुना रहे हैं 60s से लेके 80s के दशक के कुछ सुनहरे प्यारे गीत। और अब मोहब्बत के इस खूबसूरत सफर से थोड़ा सा रुख करते हुए तन्हाई और इंतजार की तरफ बढ़ते हैं। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो गुजरती ही नहीं, आंखों में नींद नहीं, दिल में किसी का इंतजार होता है। फिल्म अमर प्रेम का ये गीत भी ऐसी ही रात है, एक ऐसी ही बेचैनी को आजाद आवाज देती है। तो सुनिए लता मंगेशकर की दिल को छू जाने वाली आवाज में, रहना बीती जाए फिल्म अमर प्रेम से।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी गाओ।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक का सफर सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और चलिए अब इस कार्यक्रम में एक और आखिरी गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज में ही फिल्म आंसू और मुस्कान का गीत तारे टूटा करते हैं।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक के सफर के अंत में और अब वक्त है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का, जहां हम आपको सुनाएंगे कुछ मॉडर्न हिंदी फिल्मी गीत। आशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। दोस्तों, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में आज सबसे पहला गीत जो मैं आपको सुना रही हूं वो है फिल्म लव आजकल का दूरिया। दोस्तों, नए गाने, नए सुर, नए जज्बात और बॉलीवुड की वो कहानियां जो आज के दिल की बात करती है, और इसी म्यूजिकल सफर में हम सुनेंगे कुछ नए हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, रोमांस से लेकर हार्ट ब्रेक तक, मस्ती से लेकर इमोशन तक। तो चलिए सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में दूरिया।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों, कभी कभी खुशियाँ, कभी कभी दूरियाँ और खुशियाँ सिर्फ फासलों की नहीं। दिल किसी के इंतजार में होता है और वो शख्स पास नहीं होता। इसी एहसास को लेकर अब अगला गाना है फिल्म आशिकी टू से पिया आयना, एक खूबसूरत मेलोडी, इंतजार और अधूरी मोहब्बत के नाम। सुनिए पिया आयना।

श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का हमारा ये छोटा सा कारवा। दोस्तों, कभी फासले सिर्फ दूरी नहीं, वो मोहब्बत को और गहरा बना देते। जब किसी अपने से मिलने की चाहत हो लेकिन रास्ते और हालात बीच में आ जाए, तो दिल बस उसी मुलाकात का इंतजार करता है। इसी खूबसूरत एहसास को लेकर आप चलिए सुनते हैं फिल्म इश्केरिया का गीत मीलों के फासले। साथ ही दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि ये गीत हमारे इस हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के सेगमेंट का आखिरी गीत रहेगा। इस गीत के तुरंत बाद आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से जुड़ेंगे मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार के लिए। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वह भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक

0: से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
1: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप वन भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी वन का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों नारापुरम और मधुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मधुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और नारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु पे पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित इस विशाल प्रतिमा का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों का प्रतिनिधित्व करती यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुनी ऊंची है। जनभागीदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए देश भर के लाखों किसानों ने अपने पुराने कृषि औजारों का लोहा इस प्रतिमा के निर्माण के लिए दान दिया था। राष्ट्रीय गौरव के इस प्रतीक के निर्माण और इससे आए क्रांतिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: दुनिया की ये सबसे ऊंची प्रतिमा पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने माँ भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
2: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविका बेन तड़वी बताती है,
4: स्टैच्यू यूनिटी आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
2: अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायत

0: शांति, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
2: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदलिए और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
3: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
3: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था। और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट CJI द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। CJI ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष

0: गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली चार पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हुतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदैदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हुतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। चलिए अब 90s की बात करते हैं। 90s एक ऐसा दौर जहां बॉलीवुड के गानों में रोमांस भी था, मस्ती भी थी और दोस्ती भी थी और दिल को छू जाने वाले जज्बात भी। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं हुए, बल्कि उन्हें सुनते ही 90s की वो यादें फिर से ताजा हो जाती है। तो आज चलिए रिवाइंड करते हैं उसी खूबसूरत दौर को और सुनते हैं 90s के

कुछ यादगार हिट्स। और शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जिसमें है थोड़ी सी शरारत, थोड़ा सा रोमांस और बहुत सारी मस्ती। हम सुनेंगे फिल्म अंजाम से अभिजीत की आवाज में, बड़ी मुश्किल है।

0: मैडम, मिस्टर भाटिया दिल्ली वाली फैक्ट्री बेच रहे हैं। अगर वो फैक्ट्री हम खरीद लें तो बहुत फायदा होगा।
1: वो तो ठीक है, मगर मुझे विजय से बात करनी होगी, और वो लंदन से एक हफ्ते बाद आ रहे हैं। तू लंदन नहीं गया?
2: नहीं।
1: क्यों?
2: ऐसे आओ।
1: ये क्या हो गया?
2: किसी से टकरा गया था मां, चोट लग गई। बहुत ही मजा आया।
1: विजय, ये क्या दीवानापन है?

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
4: 90s के गानों की बात ही कुछ और थी। मोहब्बत का इजहार भी सीधा दिल से होता था और एक खूबसूरत मेलोडी पूरी कहानी कह जाती थी। अब चलते हैं एक ऐसे ही रोमांटिक गीत की तरफ जिसमें है प्यार की मिठास और साथ रहने की एक खूबसूरत तमन्ना। हम सुनेंगे फिल्म क्रिमिनल का ये यादगार गाना, तुम मिले दिल खिले।

0: Hydro power station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक, और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। जब दिल में किसी खास शख्स की जगह बन जाए तो मुलाकात की चाहत भी और बढ़ जाती है। 90s के एक और खूबसूरत रोमांटिक गीत के साथ इस एहसास को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं फिल्म दिल का क्या कसूर का मिलने की तुम कोशिश करना, कुमार सानू की आवाज में।

और अब दोस्तों वक्त है 90s के इस खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी को अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा गीत जो मोहब्बत के उस वादे की बात करता है जहाँ प्यार की कोई याद नहीं, की कोई हद नहीं होती। फिल्म 20 साल से सुनिए हम।

तुम्हें इतना प्यार करेंगे। अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में। तो बढ़ाइए आवाज और महसूस कीजिए 90s के इस खूबसूरत एहसास को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस गीत के बाद आज के हिट्स ऑफ 90s का सफर यही समाप्त हो जाएगा। मैं हूँ आपकी आरजे मांझ और हिट्स ऑफ 90s के कार्यक्रम के बाद आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस और फिर तय खामती श्रोताओं का कार्यक्रम और तय खाम क्षमा कीजिए हिट्स ऑफ 90s के बाद आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस और फिर आप सुनेंगे तय मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और फिर तय खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। तो दोस्तों बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और चलिए सुनते हैं हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और वक्त है बॉलीवुड अपडेट का, सिनेमा और स्टार्स की दुनिया से कुछ खास खबरें आपके लिए। सबसे पहले सबसे खास सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सबसे पहले बात दृश्यम 3 की। अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है। मंडे को कलेक्शन में गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इंडिया में फिल्म का नेट कलेक्शन मंडे तक लगभग 197.5 करोड़ रुपए, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 303 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फिल्म ने फ्राइडे को 62 करोड़ कमाए और इसी के साथ उन्होंने शुरुआत की। अब एक और फिल्म से जुड़ी खबर, महाकाव्य श्री रामायण कथा के प्रोड्यूसर प्रकाश महोबिया ने आरोप लगाया है कि फिल्म के खिलाफ नेगेटिव मार्केटिंग की गई, जिसकी वजह से फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने में दिक्कत हुई। उनका कहना है कि कुछ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए फिल्म के खिलाफ गलत जानकारी फैलाई गई, हालांकि उन्होंने किसी स्पेसिफिक

पर सीधा आरोप लगाने की पुष्टि नहीं की है। फिल्म की टक्कर आने वाली बड़ी बजट रामायणा से भी देखी जा रही है, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश नजर आएंगे। दोस्तों आपके साथ एक

जाएंगे। दोस्तों आपके साथ एक की परफॉर्मेंस को खास तौर पर सराहा गया है। और दोस्तों चलिए अब लेते हैं बॉलीवुड अपडेट में एक बॉलीवुड ब्रेक, सुनेंगे फिल्म जग्गा जासूस से गलती से मिस्टेक अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

0: श्रोताओं, हिंदी फिल्म म्यूजिक के इस सेगमेंट में चलिए लेते हैं एक न्यूज ब्रेक। अब आप सुनेंगे इरुमिश्मी भाषा में समाचार, तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां बात होती है दिल से दिल तक।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे। पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं।
2: लीजिए अब अगला कार्यक्रम है इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: ऐच आकाशवाणी ईटानगर माचला पुची एहो आंडोली नी एतनेची इदमिस्मी आहुलाटीजी दरगलंबो इंडिया में माचिमा ने आतिबुए आचू आमोनीबा एवे अरुंदगादा ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह में ओना विशाखापट्टनम हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड मने माओकासो टोन गोलियत ग्रैंडो ने फ्लीट सपोर्ट शिप वन आय बमहो लगाने सूर्य अमुलाया आय फ्लीट में इंडियन ने भी है तांडो अमाबा डोला औषधा लाई बता आहोगा मैं सिप पे ने गुलियत क्रेन में आंजी सिप मा ऐते तो ने हिलाओ मा तांडो आवे औषधा ने डिफेंस मिनिस्टर में लाओ बता आहोगा अरुणाचल प्रदेश में पीएम आवास योजना अर्बन कोकोमा ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड का नी चिगा बता आहोगा बुनी मैं दिल्ली में चीफ विज्ञान भवन मन एम वर्ल्ड हैबिटेट डे इनी एनागा महो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में आवास योजना चे प्राण जो नेगा बदला ने अली अवार्ड हंगा बमहो हा अवार्ड है अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में चे डायरेक्टर हानु ताका में छिनेरा डिपार्टमेंट में चे अजानबुर में गाय बदा ला होगा अरुणाचल प्रदेश राज्यसभा एम पी ताय तागक में पुण्य म्यांमार गो प्रोगा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट वाका अतिको की बने एम पी लोकल एरिया डेवलपमेंट फोन कोकोमा ने वाका आंगनवाड़ी सेंटर है मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर बा अजय तेजी नालाने होलमक लाख पाऊ हाग बदा आहोगा एम पी में आंगनवाड़ी माचे आलम्रो आशा आलम्रो आंगनवाड़ी वर्कर आलम्रो ने हेल्पर आलम्रो को चिचा बने आलम्रो में प्राजू ना आहितो जी ना आदो ने स्टाफ आलम्रो में प्राजो जी ना लाइ बदा आहोगा अब एचाला सिदु तवांग आतिको ने बुहुलुपी नाबा इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट आई एम टी अखगाव महोम अरुणाचल प्रदेश माचे आतियामु कल्चर ये चु दो ने एक अथुई पुए खागानदो औता चेमु एकेगाव दाने अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म मिनिस्टर पी डी सोनम में पुनी ला होगा ने आ मार्ट अखाव के बने अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट में एम ए मादतें दवाला दा लगादा आहोगा आई एम टी है यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री दोने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट माचे टूरिज्म डिपार्टमेंट में आवाग ने ऐसा पूछे जानू ही माचे ने इगावे तांगला पूछे ऐलम माचे ने लिबा अखगा उदा ला होगा ट्राइबल मु में बहा नतनबा आयुटचे को ने इ नगा जा आटोचे दो जाम दोने थोबा आजो ऐ दोने एक कल्चर ये चुप्रांतो अब मिसी इगाई बो आयु आनम रोगे बने बुवे अरुंधगादा ने नामसाई एम एल ए चो जिंगनो नामसुम में बुनी तिराप डिस्ट्रिक्ट खुनसाती कोचे नेहरू स्टेडियम मने सेंट्रल रंग हुआंग कु हुआंग फेस्टिवल एनागा माचे चाय बमहो लाइव बदा आहोगा विकिसा ट्राइब एबा नंबर में एगा हुजे तिराप डिस्ट्रिक्ट माचे नोकते ने तुसा ट्राइब एबा में बु एने चे बहाने एनागा जा आतोचे दो दो ने किसा हाजियां दो मीमे उने सीता लगाम नाव के बने जी आई तेक एजी ना ने एम एल एम ए लगाने तिराप डिस्ट्रिक्ट माचे नोकते दो ने तुत्सा एमु में नामसाई माचे ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो मा इगा ने एन एच बहाने इनगा जा आशे इगु दो ने एक अरुंदा थोपन दो इचाते हुए गबाने आमा रिकॉर्ड एजी ना लाइ बदा आहोगा रोमन अजब्रमा ने एन एच एको बथो ताजू दो ने एक अरुंदा को बंदो जुते गए अखाजी ना ने एम एल एम ए ला बदा आहोगा मैच कासो बाजी कानी आने तेजिगा इंडिया में एतानी टी ट्वेंटी क्रिकेट मा लखनऊ माचे ए बी वाजपेयी एक्ना स्टेडियम मा ने वेस्ट इंडीज को एमगा बौदा ला होगा आ महवा चला पुची हिखिनी जिहोलो के जिहोलो पीदो ने जिहोलो माचिनी रांची इंदौर हैदराबाद दो ने बेंगलुरु मा ने वेस्ट इंडीज को टी ट्वेंटी क्रिकेट एमगाओ के बने एशियन गेम्स तमगा मा एमगा गे इमु हूँ केतगा बदा आहोगा अरुणाचल प्रदेश मा अबुनिया नया वेस्ट कामिंग पपू परे तिराप दोने लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट मा आयो सदा ने ईटानगर मिटरोलॉजिकल सेंटर मच में ला होगा ने आ डिस्ट्रिक्ट मचि अतिका बाग मा अरुणा माया अबुलिच ओ सदा ला होगा एतनसे इदमिस्मी आहो अलिमाओ दबाए
1: एच ए बी एम बे चिपो आसावे आउदा खागा HIV hambe he HIV gila mingi ji iyu gha doga ga kandune ji doga ga HIV hambe gila injection tapo BGG tha doga ga mane HIV khi ali oda HIV hambe gila nani me a aga mane kha doga I
2: HIV hambe he japa ji ge akon ga ge jepa hatu ga ge ai oda ne arondo me thoba mane HIV hambe khi gumi
1: Aline HIV hembe gi jingaji tamako atusuwe arunda kaga hembe gi obojama asaga geigo aboengo yabu ijiga atuchi toga hiwe HIV hembe yiji mi kaba asaga alaziji tamako agutene atusuji icha HIV hembe chipuma ichibu asawoda woga ibuya he National AIDS helpline G number kage jiro kini uma call eji icha koba he Arunachal Pradesh State AIDS Control Society, Department of Health Services, Nahalagan Machi Me Lahega.
0: Ejanta Lahoge Anji, India Machi Ogoke Elamama Maukasi Unit Electric Power Anduma Chiganoge Bane, PM Suryagor Mukt Bijli Yojana, PMS GMBY Laiga Iskim Mage Ayogajida Lahoga. Seva Sankalp Abhiyan Kokomane Arunachal Pradesh Gopen Machi Power Department Me. I skim Johnny Ochipo, Arnachal Pradesh Antikachi, Imu Lakeocham, Echalapuchi, Jihulu Machine, Igawe, Machalapuchi, Jihumu Machine Liba, Arnachal Pradesh Antikarbama, Sewase to Kem Akagawada, Lahoga, Kem Akagamama, Amu Zutega, Table Gay, Skim Chipo, Lakega, Table Gay, Skim Grageba, Table Gay, I don't name, Ame Tangaya, Bank G, Table Gay, Akagawada, Lahoga name, I skim. Grauda uya he bank me ame tanga jiga arugauda lahuga kaje kaje inima kaje antimane kem akagawe anji ehando echalapuchi janyo hiu inamali nimachini siang district poleng atikone a kem akagai baumaho echalapuchi janyo hikini andole nimachini Arunachal Pradesh district headquarter emma igawe machalapuchi elame bruli nimachini Machalapuchi himanga asuli ni machini. Machalapuchi himu liuli ni machini. Aidone, Machalapuchi jihu ni asuli ni machini. Arunachal Pradesh Antikai Mamachi Electrical Division Mamane kem akagawda lahoga. Atipo solar adagene elamama maokasu unit electric anduma ajiuda uyame ahujigawe. Solar mane yoge luto electric he power grid ga banabane. Electric bill ma apra alimya hi lagai bawe subsidy ko koman em khege kilowatt re solar adawma ejerin ba asuru ka so kani kilowatt adawma ejerin ba taru taho edonem ka so kilowatt adawma ejerin ba yo manga paho government me scheme graje account ma solar tate paho ne hati gai boda laga amha ho Solar loe ame nga imume bank mane manga point imu manga percent interest mane kanyi lak liba edone imu point kini percent interest mane tahu lak liba

0: हूँ ताजिगाव में हूँ। प्रोजेक्ट आजिगु है हूँ पर्सन वेदा ला होगा आज पो सोलर आताजिगाव ओ आखा जी आई दो ने आहा ने स्मार्ट मीटर बम्ब इलेक्ट्रिक ताते जी का इमु मैम आ स्कीम गाजिगाव में हूँ। स्मार्ट मीटर आविंदा पूछा तो गए स्मार्ट मीटर गा मैम आ स्कीम गाओदा उगा जी बया पावर डिपार्टमेंट मा जगह जी ना लगा आजिपो सोलर आधा हिदा उया में नेशनल पोर्टल मा बाला ने www.pmsuryagarh.gov.in मा अलिम्याम पीएम सूर्यगढ़ मोबाइल एप मा बाला ने पावर डिपार्टमेंट मा मोबाइल नंबर रजिस्टर एही हियो रूफटॉप सोलर जुतेला मा लुतेम बने रजिस्टर एला वेंडर इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट चे मीटर ऐने बैंक मा सब्सिडी पाऊ क्यूए मा बाजीना लगा डॉक्यूमेंट आज प्रमा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर रजिस्टर एला मोबाइल नंबर मैं इलेक्ट्रिक बिल आजप्रा आधार आजप्रा ऐने बैंक पासबुक एने आखाची ना लगा ताते हाई वे रजिस्टर एला वेंडर है नेशनल पोर्टल मा चिवदा लगा आ स्कीम है हानु मूला पुची जासू खे माचिन दबाव ने आ स्कीम को कमा ने सोलर ग्राउदा हुआ मैम शो ने अमु हाथी ना लगा एच स्कीम ची पो पे आसाउदा हुआ मैम फोन नंबर खिनी कासो यू यू खे खिनी कासो यू यू जीरो मा अली मैं पावर डिपार्टमेंट माचे अन्यांदो इलेक्ट्रिकल डिविजन ने सब डिविजन ऑफिस मा बाला ने अहुजी ना लगा लाहो दबाए एचा आकाशवाणी ईटानगर नाली ईद मिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया महो एतनी हेंदो योना मेले ची चाशे ची अहजी
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे ईदू मिश्मी भाषा में समाचार ईदू मिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम। और चलिए अब वापस से वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने लिया था ब्रेक। हम सुनेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के सेगमेंट में तू चोर में सिपाही का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले।

और दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के दोपहर के प्रसारण सभा के अंत में। आशा करते हैं

कि आपको ये प्रसारण सभा पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर अते एवं तकनीकी अभियंता एम विश्वजीत। श्रोताओं, अब मुझे यानी आपकी आरजे मंच को दीजिए इजाजत। आशा करती हूँ कि आपके आगे का दिन, आपका आगे का दिन सुहाना रहेगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय करते रहिए कुछ बेहतरीन म्यूजिक। दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहाँ बात होती है दिल से दिल तक। नमस्कार।

0: एर आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचौसा डुबा सनई सोम अक्टूबर जिलिंग रंगकड़क तारीख पांग हजनेरा खोकड़ोक पांग आरो मचौरंगजा जुंग कनकामा माइर नांगमुंग मेनी टाइम पावर पर तचेन हाइम नई परम नांगमुंग डिफेंस पावर पर सेंगलिन हाइम मोरऊ नांगमुंग मेनी टाइम इको सिस्टम पर अहें रोरऊ नांगमुंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मचौसा विशाखापटनम हा नंग हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड नंग फ्लीट सपोर्ट शिप वन नई लेंग ऑफ फ्लीट सपोर्ट शिप फाइव पर तफांग प्रजु अपग्रेडेड शिप वे फोर नई 300 टन गोलियात क्रेन पर खुली नंग मैंग मसौ फानबाइ प्रजु फान प्रजु डिफेंस मिनिस्टर रंगो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड नंग फ्लीट सपोर्ट शिप अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर ताम खुली इर ताम नांगमुंग मेरी टाइम केपेबिलिटीज पावर पर सहंग लिन हाई सिंह फान आरो सूर्य मंगनंग नुंग फ्लीट सपोर्ट शिप वन इंडियन नेवी वन ऑपरेशनल कामवांग पर अहम दयांग म कुछी पर म अन्या शिप वे नई गोलियाड क्रेन र अजुंग अजुंग शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट ताम जांगनांग लाममंग रो शिप यार्ड्स वन केपेबिलिटी पर तचेन लिन हाई सिंह रो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फान अरुणाचल प्रदेश र प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जाखुंग प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 जाखुंग अह काम सोम खाम स्टेट र मनीषा न्यू दिल्ली नंग बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एवार्ड नई अनई लाप्त आचुंग सुरक्री वंग हाउसिंग नई अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री र मनीषा वर्ल्ड हेबिटेट डे 2026 सकान नंग फंक्शन तथुंग प्रजु एवार्ड पर कुत आरो स्टेट र इर काम पर समुद खाम डिपुटी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन र सोशल मीडिया पोस्ट नंग अरुणाचल प्रदेश वंग मईम रंधु प्रजु स्टेट सुरक्री वंग अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट र नई अर्बन लोकल बुडीज र रा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नई स्टेक होल्डर्स हेंडअप सचा रौरे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जाखुंग नंग मचेन मैंग हम होमायन तचई खाकु खाम नई परम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 जाखुंग नंग सेकेंड हाइएस्ट परफॉर्मेंस काम सोम रो एवार्ड लाब्र आरियंग जंग रंग फान लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट नंग इंडिया नई म्यांमार मूंग हास्रई कोवांग वाका केंग लाकतकाउ लाकसो राष्ट्रीय पोषण मा प्रोग्राम तथुंग तनंग राज्यसभा एमपी ताई तागाक थोक तुंग ओफान त आरो वाका केंगवांग आंगनबाड़ी कामसुम मनरनै एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ASHA आशा कामसुम मनर रिमेकेंग ताम काम सोम खाम एमपी ताई तागाक र आंगनबाड़ी नै आशा कामसुम मन प्राइस कुत पोषण मा प्रोग्राम प प्रोग्राम नंग पांगछाउ वाका एमएलए होनचुन गांदाम नई लोंगडिंग डिप्यूटी कमिश्नर कुनाल यादवरा लोंगडिंग जिला परिषद चेयरपर्सन जेडपीसी लोपोंग वांगहम सिंह आतोंग जांगत परम सिंगमुंग वांग बलिबाय मैहेंग दब आतोंग जांगत नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मोर थोनी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2026 पर तवांग हानंग तथुंगची पर खाम कामवांग कछुपाई र कमुंग नंग लाम रऊ अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म मिनिस्टर पी डी सोना र मनैसा आचुंग सुरकरी वंग टूरिज्म मिनिस्ट्री वंग मैहेंग जामनई स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट वंग ऑफिसर्स मैहेंग जामरा परम तावांग डिस्ट्रिक्ट वंग नई वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट वंग ऑफिसर्स मैहेंग जाम रफान्त मीटिंग नंग रोम प सहंग म रफान्त नंग म आरो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट प्रोग्राम प अह म तयंग रंग म फनप चुपाय रंग रा र ताम कमुंग नंग अरेंग सताई रो रफान्त नामसाई एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए चाउ जिंगनु नामचोम प मनैसा खुनसा नंग नेहरू स्टेडियम नंग नोक्ते नोंग सेंट्रल रोंगहवान कुहुवा मो नंग कचुत प्रजु सिंगमुंग वांग मैम मसौ फानबाइ नंग ताइवा आकिंग थुंग लाइप वोंकांग लो सरिंग रंग रा रंग मोरो त aro macho macho hai wang sanya naunya meire pen achong bang po lakur kham chau jingnu namchom ro rebu thalok tenang sanya naunya meheng ro meilang heng phangwang aking sewu sai nei runa sai ra tung lai tam po tegrang ra ro muro jarau jechang heng maro pe perma tirap district wang tribes tam ro mama textile GI taking po balang singmung mai phangwang khingrang ra ra ngomun emle chau jingnu namchom ra rok ta parasa namchom ra ngo namsai hanang anem chyo audio recording studio ham man ta parju nokte nokwang nei tusa nokwang jarau jacha heng ra aking sau sai tam nei man phan tam por record kuri ra nung ma studio po among mo se rakchi ngomun Rota Perju Aking Rory Nay Tungalai Kalcharpa Wong Monay Sali Mangura Education Sector Nang Local Dialects Rory Tam Roman Script Livaipa Saherang Murudov Namchomra Nokte Nay Tusa Nokwang Singamung Wang Jarao Jachang Murota Men's Cricket Khel Nang India Nay West Indies Tung Nang T20 International match per Bangakhak Tuchi Prabang First T20 match per Machaurangja Uttar Pradesh Capital Lucknow Hanang Bharat Ratna Sri Atal Vyari Vajpai Ekana Cricket Stadium Nang Tuchi India Asian Games 2026 Nang Gold Medal Lapta Hai West Indies Jam One Day International match Arum Atavang Match Anaipa Cheirau T20 Khel Nang Manpa Chaima Sacharungo Fanta Asian Games 2026 Timbang Vasai Kha Khilari Heng Lamta Nangma Aro One Day International ODI Timbang Phanglang Warum Khilari Lamta Ngorota Thawane Chi T20 Mesh Balai Haipa Iram Rangtaka Utariksa Ranchi Hana Tuchi Rangsa Si Tariksa Indoor Nang Tuchi Rangsa Balai Tariksa Hyderabad Nang Tuchi Parma Rangsas net tariksa athon match po Bengaluru hanang tochi rungrang itana thumra
1: machunam ra HIV rak kamung nang areng rungrang ta chen HIV rak asa kamung nang ahma taglo dua dai mai po akawong jangro Mayung Hanwang HIV drug Manai Mayjam Tongwo Lo Kaumara Prama HIV drug Wan May Bochum Aking Sirings Kaumu Rakpa Riling Renang Arau Mayung Hanwang Rakpa Nausa Hanata Riling Rakchi Prama Taipa Jachip Pur Mayjam Tongwang Rounai Jak Ralu Roura Rakui Pam Rounai Adam Faksa Rau HIV Rakpa Riling Mukperma Surong le kagroman po HIV rak po relingu HIV rak po homoinang karai roure kuthang ma acha tombai rakchi arau HIV rak ma hadrang jamu arau doctor ma karai rang rar rasan pan rang jamu parma ere rak kam nang nari ma taghai ma national helpline number 1097 nang phone rang rar Iraman po singmung wang may ma ahu rangtan mong marau Arunachal Pradesh State AIDS Control Society ra kuta.
2: Namaskar Itanagar. Seva ke 25 varshon ke is vishesh utsav ka hissa banne ke liye tayyar ho jaiye. 7 October 2026 ko maninye Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji samarpit janseva ke 25 varsh pure karenge. Yah yatra 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई थी और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आज भी निरंतर जारी है विकसित भारत संकल्प सेवा इस कार्यक्रम में शामिल हो और श्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव टेलीकास्ट का आनंद ले स्थान क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर समय कल सुबह 9 बजे से इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन जी मंत्रीगण एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे तो ईटानगर आइए और इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनिए। 7 अक्टूबर सुबह 9 बजे क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर। जय हिंद।
3: नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। अभी आप सुन रहे थे तांगसा डायलेक्ट न्यूज और हाँ श्रोता, इस वक्त स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 4:30 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। थैंक यू सो मच मंच जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए और उम्मीद करती हूँ कि आपका ये शाम बहुत ही सुहाना बीते। श्रोता, ये भी बताना चाहेंगे आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद हैं प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी आरजे आज के इस सफर में मंजू पामो। एवरी डे इज अ चांस टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक नया अवसर होता है। दोस्तों, मनोरंजन का सिलसिला रुकेगा नहीं क्योंकि यह है अरुण एफएम 103.1 MHz। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर।

स्वागत करती हूँ श्रोता आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ साथ कुछ बहुत अच्छी बातें भी करेंगे आपके साथ। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं कुछ ऐसे कहावतों के बारे में जिन्हें न जाने क्यों हम भी सच मानते हैं और फॉलो करते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं बिजली कड़कने के दौरान अक्सर बड़े बुजुर्ग या हमारे एल्डर्स हमें कहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल बंद करो और उसे दूर में रखो, यानी कि साइड में रख दो, पास नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें बिजली कड़कने के दौरान चलती ही है और आपने भी अनुभव तो जरूर किया होगा, पर कितना सच है इस बात के पीछे चले जानते हैं। दोस्तों बिजली कड़कने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करना सही है या गलत है इस बात पर निर्भर करता है कि फोन चार्जर से जुड़ा हुआ है या नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर मोबाइल चार्जिंग पर है तो

ये गलत है, ये खतरनाक है। इस समय फोन इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत और खतरनाक होता है। मतलब कि जब आपका मोबाइल चार्जिंग पर होता है और ठीक उसी समय अगर बिजली कड़कती है तो ऐसे में मोबाइल को चार्जिंग पर बिल्कुल भी ना रखें। अगर बाहर बिजली किसी तार या खंभे पर गिरती है तो हाई वोल्टेज करंट चार्जर के जरिए आपके फोन और हाथों तक पहुंच सकता है। इससे बड़ा झटका लग सकता है या फोन में ब्लास्ट भी हो सकता है अगर आपका फोन चार्जिंग पे है तो। लेकिन अगर हाँ, आपका फोन बिना चार्जिंग किए ही आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दौरान जब बिजली चमक रही है या गरज रही है, तो आप सुरक्षित हैं। ये सही है। अगर फोन चार्जर से जुड़ा नहीं है तो आप उसे हाथ में लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही और सुरक्षित है। ये एक आम अफवाह है कि मोबाइल की रेडियो वेव्स बिजली को अपनी तरफ खींचती है। बिना तार वाले मोबाइल में इतना मेटल नहीं होता कि वो बिजली को आकर्षित कर सके। कहने का मतलब एज अ होल देखा जाए तो दोस्तों, बिजली कड़कते समय मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसे चार्जिंग पर ना लगाएं। इस बात का शायद आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे हमने लिया है सुपरहिट मूवी RRR से राग पटेल की आवाज में। और बहुत सारी इसी तरह की बात करेंगे आज हम इस कार्यक्रम के दौरान।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: तो दोस्तों अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का सुपरहिट मूवी आरआर से राग आरआरआर से राग पटेल की आवाज में. और बता दो आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर. तो दोस्तों कहा यह भी जाता है कि गर्मी के मौसम में अंडा ज्यादा नहीं खाना चाहिए या अंडा खाना ही नहीं चाहिए. जब बहुत गर्मी होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है तो अंडा नहीं खाएंगे. तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि गर्मी के मौसम में अंडा नहीं खाना चाहिए. कहा तो ये जाता है, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे. दोस्तों अंडे की तासीर गर्म मानी जाती है क्योंकि इसमें प्रोटीन, फैट और कई तरह के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. इसे पचाने में शरीर को अधिक ऊर्जा लगती है, यानी कि लगानी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, जिससे शरीर में थोड़ी उष्म यानी कि हीट उत्पन्न होती है. अगर सीमित मात्रा में अंडा खाया जाए तो इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता और ना ही इससे अत्यधिक गर्मी पैदा होती है. दोस्तों कुछ भी चीज अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जरूरत से ज्यादा करते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता ही है. उसी तरह से अंडे भी आप गर्मी के मौसम में अगर सीमित मात्रा में खाते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है. गर्मी के मौसम में रोजाना 1 से 2 अंडे खाना सुरक्षित है. अंडे की जर्दी यानी कि पीला वाला जो भाग होता है, जो योग होता है, उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है, जिससे शरीर में गर्मी का अनुभव हो सकता है. चाहे तो आप इस पीले वाले भाग को यानी कि योग को निकालकर सफेद वाला हिस्सा खा सकते हैं, जो हल्का और प्रोटीन से भरपूर होता है. तो कहा तो यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि गर्मी के मौसम में अंडा नहीं खाना चाहिए, ऐसा ऐसी बात नहीं है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये सही है. गर्मी में उबला हुआ अंडा यानी कि बॉयल्ड एग खाना सबसे अच्छा है. ज्यादा तेल मसाले और वाले ऑमलेट या फिर करी पचने में थोड़ी मुश्किल होती है, जिससे पेट में समस्या भी हो सकती है. तो इसीलिए कहा जाता था कि गर्मियों में अंडा ज्यादा नहीं खाना चाहिए. और दोस्तों ये भी कहते हैं कि बहुत पुरानी परंपरा है कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए. दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि पुराने जमाने में करंट तो था नहीं, लाइट्स तो थी नहीं, तो बिजली की कमी के कारण शाम के समय जब झाड़ू लगाते हैं तो जरूरी सामान घर से बाहर निकल जाएंगे. इस डर से लोग शाम के समय झाड़ू नहीं लगाया करते थे और यही परंपरा बन गई थी. और ज्यादा कुछ नहीं है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का.

0: दोस्तों ओ माय गॉड टू फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे नोक्टे डायलेक्ट न्यूज। और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नोक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मीनाक्षी मजुमदार से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विलासपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों के सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टरों को एक ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़े और आने वाली पीढ़ियां उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना एक बहुआयामी चुनौती है। हालांकि उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के प्रयासों और दृढ़ संकल्प से इस चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना मरीजों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने संस्थान के मेधावी छात्रों को पदक और उपाधियां प्रदान की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और उन्नत स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियात क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और HSL में उन्नत बुनियादी ढांचों के उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि HSL में नया स्लिप वेक और गोलियात क्रेन शिपयार्ड की बड़े जहाज निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने की क्षमता को और बढ़ाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आज एस घाना कोटे की आई

अध्यक्षता भी करेंगे। तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुडुचेरी की थतांचावरी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। वोटों की गिनती शुक्रवार को की जाएगी। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। यह देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार ये उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं में टेलीमेडिसिन की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। इससे खास तौर पर ग्रामीण, दूरदराज और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों के लोगों तक इलाज की सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिल रही है। ई संजीवनी देश के डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इससे प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन व्यवस्था माना जाता है। इसके जरिए लोगों को अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे बिना अपने आसपास से ही डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा मिल जा रही है। भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों तक अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और विकासशील देशों को किफायती और पुनर्निर्मित वित्त पोषण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की अपनी मांग दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में भाजपा सांसद सीपी जोशी ने कहा कि 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक वित्तीय संस्थानों का पुनर्गठन आवश्यक है। श्री जोशी ने भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष IBSA कोष, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए भारत के समर्थन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, वित्तीय समावेशन और घरेलू संसाधन जुटाने में अपनी विशेषज्ञता की साझा कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्य की अनुसूची अधिसूचित की है, जिसमें नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत 375 अनुमत कार्य का प्रावधान है। यह नई अधिसूची पिछले ढांचे के अंतर्गत 266 कार्यों की तुलना में 41% अधिक है। कार्यों को 4 मुख्य स्तंभों, जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना और मौसम की जटिल घटनाओं एवं आपदा तैयारियों के लिए विशेष कार्य के आधार पर पुनर्गठित किया गया है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत एक जमीनी स्तर की विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया के माध्यम से होगी और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के माध्यम से इसकी निगरानी की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरफोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंधन किया। स्वदेशी निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत यह अनुबंधन नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्तांतरित किया गया। मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6
6.6% का

0: put a significant burden leading to rise in aviation turbine fuel ATF prices. Talking to media in New Delhi, Mr. Naidu said that the government is in discussions with airlines and oil marketing companies regarding ATF prices to assess the situation. That's all in the news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम, नोक्टे श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: अब आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ नोक्टे

launch one ka aradam ko fleet support ship 5 kill lying one ka diko upgrade slipway 4 niya rook romton goliath crane inaugurate one ka fleet support ship 1 min pa surya minister mangi ka araste pa india maritime capabilities pa bora rangya rang zaruri 4 namse st assembly constituency mla chao jingnu namchoma indigenous traditions tiko traditional knowledge system pa preserve hon important kho ko chan kapka maja khonsa nehru stadium nang third editions of central ronghon traditional knowledge system pa preserve hon important kho ko chan kapka maja khonsa nehru stadium nang third editions of central ronghon kuwa ko address hon numangai ka हे थुवा यंग जनरेशन हे मामा रुटनिया ट्रेडिशनल कल्चर हे जा कंटिन्यू होन मा अर्था युथे नंग एनकरेज होन का हने फान नंगवा ट्रेडिशनल सॉन्ग डांस दिको कस्ट्यूम हे एक्टिवली हे रंग दिको मामा कल्चर पा मानंग बोरा रंगे का तेमा तिरप मी यान हे नंग हने ट्रेडिशनल पा मोटिव निया टेक्सटाइल रंग जी आई टेगिंग परस्यू होन रंगे का एमएलए नाम चो मंगे का नाम से नंग रिसेंटली वांते ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप होन का तेमा नोक तेनिया तुत्सा कम्युनिटी यू थे नंग एनकरेज होन का हने अरे फैसिलिटीज पा फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज होन रंग दिको ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग दिको ओरल हिस्टोरीज पा रिकॉर्ड होन लमा फ्यूचर जनरेशन रंग प्रिजर्व होन रंगे का तेमा एजुकेशन सेक्टर नंग लोकल डायलेक्ट रंग रोमन स्क्रिप्ट एडप होन रंग सजेशन मिन होन का अरपमा इंडिजिनस लैंग्वेज निया कल्चर पा प्रिजर्व ला प्रमोट होन रंग मोड चोमिन अरुणाचल प्रदेश में पीएमएवाईयू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन दिको पीएमएवाईयू 2.0 खन्नंग अचीवमेंट रंग वन्नी बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अवार्ड चेका अर अवार्ड पमजा न्यू दिल्ली नंकुवा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एमओएचयूए मा वर्ल्ड हैबिटेट्स डे 2026 ओकेशन को अर अवार्ड पा प्रेजेंट होन का डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मिन मा सोशल मीडिया पोस्ट थ्रू अरुणाचल प्रदेश में यान हे नंग अर अचीवमेंट था कॉन्ग्रेचुलेट होन का तेमंगे का पी एम ए वाई यू खन नंग 100% हाउसेस पा टाइम को कम्प्लीट होन दिको पी एम ए वाई यू 2.0 दिको सेकेंड हाई परफॉर्मेंस स्टेट गवर्नमेंट अर्बन अफेयर डिपार्टमेंट अर्बन लोकल बॉडीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिको अपंग स्टेक होल्डर हे डेडिकेशन दिको कोऑर्डिनेशन एफर्ट था देगा राज्यसभा एमपी ताई तागक मा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट वका विलेज ना 9 राष्ट्रीय पोषण मा प्रोग्राम को पार्टिसिपेट होनवा वका विलेज पा इंडिया म्यांमार बॉर्डर तावा इंडिया फर्स्ट विलेज प्रोग्राम पुट को ताई तागक मा वका वा आंगनवाड़ी वर्कर्स निया आशा दीदी नंग कम्युनिटी वेलफेयर निया ग्रास रूट हेल्थ केयर को हने कंट्रीब्यूशन था हने नंग फेलिसिटेट होनका प्रोग्राम को पंगचो वका एमएलए होनचुंग नंगडम लोंगडिंग डिप्टी कमिश्नर कोनल यादव जेट पी सी लोपोंग वंगहाम दिको अहान मिज्ञान हे मिन प्रेजेंट दंगवा टूरिज्म मिनिस्टर पी डी सोना मामजा तावंग नंग 14 इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रिपरेशन को नंग वांते रिव्यू मीटिंग थियनवा आरो मीटिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफिशियल दिको तावंग निया वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट वा ऑफिशियल हेमिन प्रेजेंट दंगवा मीटिंग मेन फोकस पा अरे इवेंट रंग कोऑर्डिनेशन पा स्ट्रॉन्ग होन दिको इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट रिव्यू होन रंग होन का अरे को लॉजिस्टिक एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल हॉस्पिटलिटी दिको इवेंट पा सक्सेसफुली कंडक्ट होन रंग अरे इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन को नंग डिस्कस होन का इंडिया वुमेन क्रिकेट कैप्टन हरमनप्रीत कौर मा तेईस ओडीआई दिको टी ट्वेंटी कैप्टन सीवा स्टेप डाउन होन का रुक रोमवानगे रंगपा हरमनप्रीत मा गुवाहाटी नंग बीसीसीआई रिव्यू मीटिंग दिको आरो डिसीजन पा अनाउंस होन का हरमनप्रीत कैप्टनसी को इंडिया में लास्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप को टाइटल जीनवा दिको एशियन गेम को टीम मा गोल्ड मेडल मिन जीनवा मेन्स क्रिकेट इंडिया में थजा वेस्ट इंडीज अगेंस्ट वानबंगा मैच टी ट्वेंटी इंटरनेशनल सीरीज फर्स्ट मैच रोमिन अरमेज पा लखनऊ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी केना क्रिकेट स्टेडियम नंगलोमिन रंगजा था 7 बजे को शुरू दंगमिन मीटरोलॉजिकल सेंटर ईटानगर एमसीआई मा अरुणाचल प्रदेश वा वेस्ट कमिंग पपुम पारे तिरप दिको लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट रंग येलो अलर्ट इश्यू होन का अरे डिस्ट्रिक्ट वा वांते वांता आइसोलेटेड चाकन रंगलिन खेप बालिप दिको रंगपात तापात अंगा मा प्रिडिक्ट होन का थजानंग नोक देखो बोट पा अकोजुरा थोन मंगता।

0: श्रोता, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित नौकते डायरेक्ट न्यूज। दोस्तों, शाम का समय ही कुछ ऐसा होता है कि इस खामोशी में जब आप अपने पसंदीदा गीतों को सुन लेते हैं या सुनने को आपको मिल जाता है तो दिल की अनकही बातें भी सुर बनकर सामने आने लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।
1: नमस्कार ईटानगर, सेवा के 25 वर्षों के इस विशेष उत्सव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। 7 अक्टूबर 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समर्पित जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। यह यात्रा 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई थी और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आज भी निरंतर जारी है। विकसित भारत संकल्प सेवा, इस कार्यक्रम में शामिल हो और श्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव टेलीकास्ट का आनंद ले। स्थान क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर। समय कल सुबह 9 बजे से। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन जी, मंत्रीगण एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। तो ईटानगर आइए और इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनिए। 7 अक्टूबर सुबह 9 बजे क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर। जय हिंद।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा। लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

दोस्तों, कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का पहला गीत आपने सुना मोनाली ठाकुर की आवाज में महाराज फिल्म से। और इसी के साथ ही श्रोता, चले आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का अरिजीत सिंह की आवाज में, लापता लेडीज फिल्म से।

0: नमस्कार ईटानगर, सेवा के 25 वर्षों के इस विशेष उत्सव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। 7 अक्टूबर 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समर्पित जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। यह यात्रा 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई थी और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आज भी निरंतर जारी है। विकसित भारत संकल्प सेवा, इस कार्यक्रम में शामिल हो और श्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव टेलीकास्ट का आनंद ले। स्थान क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर, समय कल सुबह 9 बजे से। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन जी, मंत्रीगण एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। तो ईटानगर आइए और इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनिए। 7 अक्टूबर सुबह 9 बजे क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर। जय हिंद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पावर डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश पूरे राज्य में आयोजित कर रहा है सेवा सेतु कैंप्स। हर कैंप्स में रजिस्ट्रेशन डेस्क होंगे, स्कीम काउंसलिंग डेस्क, वेंडर डेस्क और बैंकिंग डेस्क भी होंगे, ताकि कंज्यूमर्स कैंप पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सके, सवाल या समस्याओं का हल पा सके, रजिस्टर्ड वेंडर्स से कोटेशन प्राप्त कर कैंप पर ही बैंक लोन भी अप्लाई कर सके। कैंप शेड्यूल इस प्रकार है, 27 सितंबर 2026 को बोलंग इलेक्ट्रिकल डिवीजन सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, 29 सितंबर 2026 को राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, 1 अक्टूबर 5 अक्टूबर

अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को राज्य के सभी इलेक्ट्रिकल डिवीजन में ये कैंप लगाए जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम से आप हर महीना 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर 1 किलोवाट पर 33,000 का सब्सिडी, 2 किलोवाट पर 66,000 का सब्सिडी और 3 किलोवाट पर 85,800 रुपए का सब्सिडी ले सकते हैं। बैंक से 2 लाख तक के कोलेट्रल फ्री लोन पर लगभग 5.75 इंटरेस्ट रेट होंगे और 2 लाख से 6 लाख तक के लोन पर 7.9% इंटरेस्ट रेट होंगे, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट के 10% मिनिमम मार्जिन के साथ। इस योजना के लिए पावर डिपार्टमेंट से वैलिड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वाले कोई भी घर अप्लाई कर सकते हैं सही दस्तावेज के साथ। इस योजना में जिनका स्मार्ट मीटर नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नहीं लगवाए हैं वे डिवीजन ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए www.pmsuryaghar.gov.in या द पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप पर पावर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स। और ध्यान रहे, इंस्टॉलेशन के लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर्स का ही चयन करें। इस स्कीम को आप 31 मार्च 2027 तक ही प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए सभी कंज्यूमर्स जल्दी से अप्लाई करें। किसी भी तरह की सहायता के लिए स्टेट हेल्पलाइन 9378193870 पर आप संपर्क कर सकते हैं या अपनी नजदीकी इलेक्ट्रिकल डिवीजन सब डिवीजन ऑफिस पर संपर्क कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर पावर वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल जोन ईटानगर की ओर से जनहित में जारी है।

मेरे प्यारे दोस्तों, बता दूं आपको कि गुमराह फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि मनोरंजन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch smart bay pro plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी आप सभी को कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ देर पहले आप आनंद ले रहे थे लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म के गीत का, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को मनमर्जिया फिल्म से साहिद माल्या और एमी विर्क की आवाजों में।

0: नमस्कार ईटानगर, सेवा के 25 वर्षों के इस विशेष उत्सव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। 7 अक्टूबर 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समर्पित जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। यह यात्रा 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई थी और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आज भी निरंतर जारी है। विकसित भारत संकल्प सेवा इस कार्यक्रम में शामिल हो और श्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव टेलीकास्ट का आनंद ले। स्थान क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर, समय कल सुबह 9 बजे से। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन जी, मंत्रीगण एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। तो ईटानगर आइए और इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनिए। 7 अक्टूबर सुबह 9 बजे क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर। जय हिंद।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोता कोड नेम तिरंगा फिल्म के इसी गीत के साथ ही बता दूं आपको कि कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन निराश होइएगा नहीं क्योंकि आगे हम लेकर आए हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीत।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोता आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके शाम को और भी ज्यादा सुहाना बनाएं हमारे गीतों के माध्यम से। बता दूं आपको कि इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को जतिन की आवाज में, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से।

0: नमस्कार ईटानगर, सेवा के 25 वर्षों के इस विशेष उत्सव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। 7 अक्टूबर 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समर्पित जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। यह यात्रा 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई थी और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आज भी निरंतर जारी है। विकसित भारत संकल्प सेवा इस कार्यक्रम में शामिल हो और श्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव टेलीकास्ट का आनंद ले। स्थान क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर, समय कल सुबह 9 बजे से। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन जी, मंत्रीगण एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। तो ईटानगर आइए और इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनिए। 7 अक्टूबर सुबह 9 बजे क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर। जय हिंद।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और

0: पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोता, इसी गीत के साथ ही आपको बता दूं कि अब से बस कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: आकाशवाणी ईटानगर तनक दिंगम आशय रूप कुम्रिक्सी दौला सियुम का आदि फम इरोप दुम कलाप आदि लुतादम तात्पाय लुबिन सीताबुक थली बारो सब डिपेंस आयोन एडिंग लरिंग नाम लगांग पे हागोर आसिलो इकोसिस्टम आयोन एम कॉम एडिंग लरिंग दो पे इलन गबोतुम एम ला डिपेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लुकान बिदो विशाखापट्टनम लोक हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड लॉसिलो डिफेंस मिनिस्टर भी फ्लीट सपोर्ट शिप वन फ्लीट सपोर्ट शिप फाइव देलो अपग्रेडेड शिप वे फोर कोलंग 300 टन्स गोलियात क्रेन को ताबत के बोतो फ्लीट सपोर्ट शिप वन एम लंग फ्लीट सपोर्ट शिप फाइव सिम हागोर आसिलो पटू बलंग इतुंग इतोक लगांग पर ताबत के बोतोला फ्लीट सपोर्ट वन सीप वन सोक अमिन एम कॉम सूर्या एम ला लेबोम दोला इंडियन नेवी लोग अगेरा नाम इतुंग इतोक तकाम एम कंपोरू पर इगर पोये एम लंग कॉम लुटन बिदो तेलोग आरे लो हागोर आसी लोग डिपेंस लेगिंग लेगां पर आकोता गवर्नमेंट ए आर्दाना प्रोजेक्ट अगेर एम रूलें इलें के पोये एम लंग कॉम लुकान बिदो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बान देलो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बान 2.0 आरंग सो कम्पो पे अगेरा नाम एम गेर जिंगे बोकोलोक और नासोल पोडे सी स्टेट एवार्ड अमान बोत्ते ना अन्य को मेलो न्यू दिल्ली लो पातो अमान बीबो नाम पे बोसिम ओल हैबिटेट डे 2026 अमन लोक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रूल एंड इलेन के बोतो स्टेट सपोर्ट ना अमन अन्य पानाम सिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर सोना मेन भी स्टेट सो अमिता का मैम असेंगा नाम अगम एम बी कान गदोला सेकना अमन सिम पानाम लगांग पर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन अफेयर्स अर्बन लोकल बॉडीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेलो स्टेक होल्डर्स तकाम कर लेको पर आप गंगे बोसिकोलोक पांगे तुम एम लंकों लुकान बिदो तत्सिन्नलो आकाशवाणी ईटानगर लोक तत्पादुंग इंडो म्यांमार बॉर्डर रिसु लोक दोलुंग दूना लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अरांग लोक वक्का दोलुंग लो राज्यसभा एमपी ताई तागक भी राष्ट्रीय फोसान मापे वो एम लोदुम मिनगे तो पे वो सो तागक भी लोदुम मिनगे तो ला आंगनबाड़ी ओ कर्स दे लो आशा कृतिंग लोक कम्युनिटी वेलफेयर दे लो ग्रास रूट हेल्थ केयर लेगा लो कम्पो रूप आगेर गेर के बो नाम लगांग पे अमन एम कॉम बिलन के बोतो पे वसो वक्का एमएलए होनसुन गामदाम लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट लोक डीसी कुनाली यादव चेत पीसी लोफांग वांग हाम देलो अबित अबित मिलुम मित कृतिंग कुम लो दुम मुन गे तो एम ना दुकान दो दोनी संगोदन मोले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सो 14 इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट एम तावांग लोग रूल के बोनाम लेगांग पे टूरिज्म मिनिस्टर पीडी सोना भी मेलो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोग आमी आना स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट वेस्ट कमिंग देलो तावांग लोग आदम सिन्हा कृतिंग एम लेसिले मोनाम के बांग को बांग के बोतो के बांग सो आदम सिन्हा आमी कृतिंग लोग दुपे दाग पे को दो नाम ते नाम कारिक येरिक नाम देलो पे वो एम का पे वो इगे बो नाम एम का पे किस्ता पे दी कोई तो पे इगे लुगन पोकान दो ने एम ला इबम तो इरुम लो नपेना सेंट्रल रंग हुआन खुआ गुदी पे वो एम मेलो के कुंसा लोग नेहरू स्टेडियम लो लोदुम बोसिदोलो नामसाई लोक एमएलए सो चिंगू नामसुम कोम लोदुम मुनगे दोला सेकना गिल्दी पे बो याइमा मो दोइंग दोर मो बोमगा बोसिदो पे इगे लुगे बो नाम एम बोजेरु पे कोई बोम दोला इस्तर सो गिल्दी पे बो लोदुम बोम नाम से अलियांगो जेमोरे मो लेगां पे इबोम दुंग देलो याइमा मो दोइंग दोर मो एम योंग मो मा नाम लेगां पे इबोम दुंग एम लंकोम लुकान दाओ भारत एलंग वेस्ट इंडीज लोकलेम ओको पे T20 इंटरनेशनल सीरीज इकसीनाम लगांग पे कराया लुम पे सीयुम के युमाबाजी कनिटलो लोकनो लोक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियम लो इरोप्लेनिये एशियन गेम लो गोल्ड मेडल अमान पाना भारत सो क्रिकेट टीम ए आगे के क्रिकेट लगांग के नाम पानाम देलो इजिंग एम अति रूप बोम गप तोला इगुम रूप बुला इरोप्लेनिये एम लंकम लुकान दो मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर ए स्टेट्स ऑफ वेस्ट कमिंग पापुम फारे तिराप तेलो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट किटिंग एम अंसिका सिला येदो फयेलो अलर्ट एम पी कांतुंग Lukanam distiks ok mole mole kolo toiling boje pe emlan kom lutem bido sok le kole ko pe sim ke lutadem solo indum.
1: HIV kinam abalok menggam gapanam arorupa moye hanam lagangko takamam lukan lembitu.
2: HIV kina amilok iya lamulo kinam de ayon hierung Atirung kenno himapa mimamilo ketbohila amur abo himilo SIV kinam de ayon hidu.
1: HIV kinam abalok menggam gapanam arorupa moye hanam lagangko takamam lukan lembitu.
2: SIV kina amilok iya lamulo kinam de ayon hierung Atirung kenno himapa mimamilo ketbohila amur abo himilo SIV kinam de ayon hidu. SIV kinam de beju atel keng midumanyam nengmilo ayon hiladung. Delok anade SIV gadung imbilo kolokom ayon hiladung.
1: Idokom menggap galangka dubo dagbo hikolok ala khoruk hikolok gomruk hikolok dobote bo hikolok delo tarhungu bungkolok HIV kinam hu biaggong madung.
2: SIV kinam itum hidopa potarlo menapa kade hilangka Dem imulo, dengan apa ia langolo, kampo apa ia nama ia lado. SIV kina mem, pesapa aiman. Kina mhok lagangan, kenpu apa aidung dalo. Kina mem aroro apa kangut apa aidung dalo. SIV kina amiam, luke loreng kapa aiman. SIV kina mhok lagangan aipa kenpu mena kedinga. National AIDS Helpline 1097 lo, irikhila lagangan tanom hilangka. Arunachal Pradesh State AIDS Control Society Director Health Service Naharlagun Bana Lagagam Mingabodola Agamun Bikanden Botu.

0: नमस्कार दोस्तों, आदि दैनिक न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।
1: नमस्कार ईटानगर, सेवा के 25 वर्षों के इस विशेष उत्सव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। 7 अक्टूबर 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समर्पित जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। यह यात्रा 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई थी और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आज भी निरंतर जारी है। विकसित भारत संकल्प सेवा, इस कार्यक्रम में शामिल हो और श्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव टेलीकास्ट का आनंद ले। स्थान क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर, समय कल सुबह 9 बजे से। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन जी, मंत्रीगण एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। तो ईटानगर आइए और इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनिए। 7 अक्टूबर सुबह 9 बजे क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर। जय हिंद।
0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। जी हाँ, मजेदार गीतों के साथ साथ दोस्तों आज इस कार्यक्रम के दौरान हम ऐसे कलाकार के बारे में बताएंगे, आपको ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम सभी किंग खान के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाहरुख खान के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि सिंपल शाहरुख खान से लेकर किंग खान बनने तक की जर्नी शाहरुख खान की कैसी रही। शाहरुख खान की जिंदगी इस बात का सबूत है कि मेहनत और विश्वास के दम पर कोई भी इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। एक आम परिवार से निकलकर उन्होंने बॉलीवुड के शिखर तक का सफर तय किया और आज उन्हें किंग खान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शाहरुख खान का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन में शाहरुख का सपना खिलाड़ी बनने का था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उनका खेल करियर अधूरा रह गया। शाहरुख खान ने सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद वे हंसराज कॉलेज पहुंचे। यहीं पर थिएटर ने उनकी जिंदगी की दिशा बदली। मशहूर थिएटर आर्टिस्ट बैरी जॉन के साथ काम करते हुए उन्होंने अभिनय को गहराई से सीखा। कम उम्र में ही शाहरुख के पिता और मां दोनों गुजर गए थे। इन दुखद घटनाओं ने उन्हें भीतर से तोड़ा, लेकिन यही संघर्ष उन्हें और यही जो संघर्ष है इसी के कारण वे और भी ज्यादा

मजबूत बन गए। उन्होंने स्वीकार किया कि गरीबी और अकेलेपन में ही इसी ने उन्हें और मेहनती और संघर्षी बनाया। दोस्तों 1991 में वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंचे। शुरुआत में उन्हें जिंदगी बहुत ही कठिन लग रहा था, रहने की जगह नहीं थी, खाने की कमी थी, लेकिन उनके आत्मविश्वास और जज्बे ने उन्हें हारने बिल्कुल भी नहीं दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत किया और अपने आप को साबित करने की हर कोशिश की। मुंबई में शाहरुख ने कई ऑडिशंस दिए, ज्यादातर रिजेक्शन झेले। लोग कहते थे कि हीरो का चेहरा नहीं है, उनका कद छोटा है, रंग सांवला है, लेकिन उन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। आखिरकार फौजी और सर्कस जैसी टीवी धारावाहिकों, टीवी सीरियल्स से उन्हें पहचान मिली और फिर उसके बाद दोस्तों उनका जर्नी ऐसे ही शुरू हुआ और 1992 में फिल्म दीवाना से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली, धमाकेदार शुरुआत की। इसके बाद बाजीगर, दर और अंजाम जैसी फिल्मों में नेगेटिव रोल निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि अलग तरह के किरदारों से भी सुपरस्टार बना जा सकता है। तो आइए इसी सुपरस्टार के पहली फिल्म की यानी कि दीवानगी फिल्म के इस गीत का चलिए आनंद लेते हैं इस बार।

शुदा आप आनंद ले रहे हैं इस वक्त इस गीत का बाजीगर फिल्म से। दोस्तों बाजीगर फिल्म भी एक ऐसी फिल्म है जिन्हें हम सभी यानी कि उनके शाहरुख खान के चाहने वाले अभी भी याद करते हैं। और ये भी बता दो आपको कि इस वक्त आज हम बातें कर रहे हैं यानी कि कार्यक्रम आज के कलाकार के दौरान बातें कर रहे हैं किंग खान शाहरुख खान के बारे में। दोस्तों 1995 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने शाहरुख को रोमांस का सम्राट बना दिया। इसके बाद दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों ने उन्हें सबसे बड़े सुपरस्टार की कतार पर खड़ा कर दिया। शाहरुख का मानना है कि सफलता आपको उड़ान देती है लेकिन असफलता आपको जमीन से जोड़ती है। वे हमेशा कहते हैं कि हार ही इंसान को असली सीख देती है। सिनेमा से परे शाहरुख ने बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स टीम खरीदी और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए 7,300 करोड़ से अधिक का बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। आज वे 40 से भी ज्यादा ब्रांड से जुड़े हुए हैं।

दोस्तों शाहरुख खान की कहानी सिर्फ स्टार बनने की नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत और विश्वास की है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत रखे तो सपने जरूर पूरे होते हैं। और इसी के साथ ही श्रोता, बता दो आपको कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक, कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बताना चाहूंगी आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद।

upgrade mo do ko mo ko jip ko ma hamla men pa tha do o ka sikne alolo do ko na ni ge tene na ba sing ya ago ma jap kan la red kula so hindustan cpr de limited lo fleet support ship pipe ne alba tulik to aga meng mo do kuba fleet support ship one ne lanche molen jigrik la yugu yara keb ham kai yadaba moju do ko ba moko ga jik loka so bharat ka meritiam capability se ham alaya mor kuna ham jab kuna ba ham to aka fleet support ship one ga emin ham surya go ba menan se barud ge navy ge de ne rigo meng go ham alba rina pana mod bala ni ni प्रधानमंत्री आवास योजना अरबन पी एम ए वाई यू हमला पी एम ए वाई यू 2.0 बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट एवार्ड एनिगो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है मोर्ग से आलो नितने दिल्ली लो पाप कुमार में पातो ओक सिग्न मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ओक अर्बन एपीआर से रिकुनाम है सोक एवार्ड हम वर्ल्ड हेबिटेट डे 2026 हम मना ग क्लो जिलन जिप कुमा ओक सोक एवार्ड हम पानम लेगा अरुणाचल प्रदेश स्टेट लो कनिग दिन अरब में सागर कुना हमला जब jangam agom kha deputy chief minister and the shonamen ye jagrik la so pm a y u ara lokanu so nam kham chimri aken percent ko ba mopak ripak jinam lega bela pm a y u 2.0 lo second highest ba kudu kamri go mengo kham iste sarkar ga department of urban affairs la urban local bodies district administration ok stakeholder mulu ga ribak member ko jinam lega ba sok ebart ham pap ku ma kham la narma media social media no post mulu ga gri kala japat pap ku ma kham la mem pa tha to लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट भारत ला म्यांमार वेनिग गदा अर दुइर मेसे कोको लो दोचो चिक चिक ब नामपुम दोन वका गदा लो लक खोना नन राष्ट्रीय पोषण मा प्रोग्राम हम रिकोक लो राज्यसभा ग एमपी निगम नन थाई तागा ये रेपा दाकपा जिप कुम खब मेन पा दो ओक न्या आ गद ग सिगो गो लगा बला उग एच आप के चिन ग देने लेतेलो कलाला हिकला मुरिलो गो ब रिपग मेन पे क गन वका ग अंगनवाडी वर्कर ओक आशा दीदी ग देने आमेन गो नन तागा ये जिच पुक न खब मेन पा था दो ओक सिकन आलो लो पंचो वका ग एमएलए नरम वंचिंग वंदा ला लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट गदेसे कुनल यादव जेटपीसी लफोंग वंगम ओक केविनी गदख दोपा दाकपा मेन्याता पुकुन मखम मेपा था तो नोलसिनसी पुइशिमा खासबानी इतानो पुकुम लोक ताल दोन्या तो नोटिस्ट एंड रीजन ग लेगा ब लिग्री गोला लिप नाने इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में नाम हम तोवांग लो रिकतनाम लेगा ब सो योग योग हम रिकर्मिंग कर तला आप सादे हिकन लिक लोक अगम आ हम मोर्ग से आलो अरुणाचल प्रदेश स्टेट ग टूरिज्म मिनिस्टर अंदर पी दी सोना ये भारत सरकार ग टूरिज्म मिनिस्ट्री लोक निगद नेला स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट लोक ऑफिसर्स ओक तोवांग ला वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट लोक ऑफिसर्स गुड ने अगम आहम तका कापांग मिसपुकन बखम मेम पा दो ओक्सोक इंटरनेशनल टूरिज्म इवेंट सिम अलव रिपग मेम पग गदब रिगो मेंगो मुलहम अलव रिपुमरी दम ला रिबम पबम साग लुक लोक अगम आ मुलहम सोक तो कुमलो अलव जबदर जापा मेसि न्याप कुमहम मेम पा था दो भारत के होमेनिम क्रिकेट टीम ब्लॉक कैप्टन हर मन प्रत कोर ये कैप्टन हम सेगो माद कुब मुसगी कबा ओक ग्वाती लो बीसीसीआई ग रिव्यू मीटिंग में नाम कबा हम दो कुनाम ग कुक लो सो अनि चुम वला नि क कन कोन दने कोर ये कैप्टन लो सेग मार कुन हम ना आगो हम जब किन पुकुन म हम तो ओक मनि ग वन डे वर्ल्ड कप टाइटल लो हर मन प्रीत ये कैप्टन लो किग ग ग्रीक ला एशियन गेम से लो गोल्ड मेडल आमेन हम पाद कुब रे कुम हम मेन पा था दो ओक्सोक तायो लो भारत ग निगा क्रिकेट टीम गद ह सिलो वेस्ट इन देश ने 2020 इंटरनेशनल सीरीज हम कित की कब लखनऊ भारत
रतना श्री अतुल बिहारी भजफाए इखाना क्रिकेट स्टेडियम लो कि का मिस्ताक दुकान में खेल मेम्पा।

0: तो अक्षोक मैची हम सिज्जाग कने बाजे लोक क्रिप गर कुने ओक 2026 एशियन गेम्स लो गोल्ड मेडल आमेन हम पान भारत है वेस्ट इंडीज ने के पाक में से याब दबे रिर कुने हम मैं पा था तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट का वेस्ट कामिंग ला पापुमपार तीराप ओक लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट ते ने येलो अलर्ट पे ईटानगर का मेट्रोलॉजिकल सेंटर है जबक जे ग्रे क्लास ओक डिस्ट्रिक्ट तेलो दुगुम दोरा के आजर बे निदो ह दक तालब हुलक जिर कुने खमला जपा ताप कुम खम तो कसरुंग छिपुय हबो
1: ची तागप से आगम गो मुले आकाशपानी ईटानगर Yurkum loke so puisam malinjidan. Muluni mulu tulugab habne. Nyam nyagako anyom ekshir gabe. HIV la AIDS ke pago samning chendo HIV AIDS alman bo echehel. Ebsutel so echin bo sam echinam samnule bosluvrima panme. So echiam yokam chida pahel so ninga nyivab sitan hel do madene. Nule sam aljab chen doduripa. Sam chen dodurinam siam yokam nule chen dobolo so ech pago samnule. Ayab kal chen bal dobolo kam nule so ech wong ninga doja kam so ech chamnul anyab sugdu gitaina si koi go sugdu gitan. Oge HIV la AIDS si oka jidin heblo kam si nyem nyaga dobom kolo. Oge so ui nako sul dojkam. Oge so so biji pinanam. Piko sul ni ech woga pikam hoso ech si dodin. Oge. So echi nule echi usi madan nuluk ala chiri kolo chetin misil doklo lekin go devan da amla doy kam nule chi echi umadan o gab nule echi dodne do madan ham mod modam ka da nul medikelo ala nul engam ka katam do lipane o pen kolo mulu nying HIV la AIDS we gutu gura lo yin dod lo kam ho ni tulu ham kam nula anya bya dod lo yin sam nula timpa do limadan sam ya nula sekada lipne एम अवधी सी सकाम अब अन्याम अब तिंपा बन्यो कम सोनी सी एच एफ ए दो तादना ओगे साम नुले चेन दो तकल बाहरा नुले चिन्ह दलो कम नुले 1097 होस नंबर सो कॉल मग दो साम अन्याब तका तका ओगे साम चेम दो साम आयाब जिग मग दो साम नुले एच एफ ममा दो काल दो बोंग अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ओगे डी एच एस नहर लोगन लोग जिलिन पानम कसे तकप से पुये हतकु पाया लिंचो

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित निशी डायलेक्ट न्यूज। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। बताना चाहेंगे श्रोता आपको कि अब से बस कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष श्रृंखला, जो समर्पित है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा पर।

0: के सबसे शक्तिशाली देश भी हमारा लोहा मान रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय समर स्मारक और स्मृति वन से अपनी साहसिक, सांस्कृतिक और संवेदना की जड़ों को सींचा गया है, तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट और कैंपागोड़ा T2 तक बिछते नए रनवे कह रहे हैं, ये नया भारत है जो अब किसी की ओर देखता नहीं, दुनिया को राह दिखाता है। और यही वो एहसास जगाता है जो नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम चर्चा करेंगे नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर। और इस विकास गाथा के पन्नों को एक एक कर खोलने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर KG सुरेश, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और शिक्षाविद, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: धन्यवाद
0: सुरेश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। जब भी हम भारत की सार्वजनिक पहचान की बात करते हैं तो बीते एक दशक के दो बड़े स्तंभ यशोभूमि और भारत मंडपम, चाहे G20 का आयोजन हो, ब्रिक्स का आयोजन हो, AI समिट का आयोजन हो, G20 में हमने देखा यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर बना है, एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, कई तरह के एक्सपो एग्जीबिशन वहां लगे होते हैं। आपसे मैं जो समझना चाह रहा हूं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी है, जो नई तरह की संस्कृति डेवलप हो रही है, उससे भारत को वैश्विक पहचान बनाने में कैसे मदद मिल रही है?
1: बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की एक पहचान जो रही है वो एक औपनिवेशिकतावादी एक पहचान रही है। कोई भी अगर पर्यटक भी आता है तो वो इंडिया गेट जाएगा, राष्ट्रपति भवन जाएगा या लाल किला, जो आप देखेंगे कि मुगल कालीन है। भारत कहाँ है, भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ है, अक्सर कई लोग पूछते हैं कि इसमें भारतीय कहाँ है। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो गया था कि हमारी अपनी पहचान, आज हम एक उभरते हुए विश्व शक्ति है, एक विकासशील देश है जिसके बारे में 2047 तक हम लोग विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हैं। आज वैश्विक मंच पर हमारा नेतृत्व है, चाहे वो G20 का रहा हो जिसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम का ध्येय दिया था, या ब्रिक्स का नेतृत्व रहा। ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधिमंडल, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, राज्याध्यक्ष जब वे आएंगे तो उनको आधुनिक भारत की छवि, जिसमें आधुनिक भारत तो है ही लेकिन साथ में एक प्राचीन सभ्यता की झलक भी मिले, ऐसे क्या सभागार हो सकते हैं क्या, ऐसा क्या जगह हम बना सकते हैं क्या। देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि काफी वर्षों तक नैम समिट मुझे याद है, छोगम मुझे याद है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये सब हुआ था विज्ञान भवन में। लेकिन विज्ञान भवन का एक समय आज के जो आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, जबकि उसको अपग्रेड भी किया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो है उसमें कई कमियां दिख रही थी। तो ऐसे में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में, आज भारत मंडपम हो या यशोभूमि हो, आप देखेंगे कि आज पूरे विश्व में लोग एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं कि भारत के पास भी एक ऐसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। और मैंने कई विदेशियों का ब्लॉग देखा है जिसमें, या वीडियो ब्लॉग्स देखते हैं उनमें, जिसमें ये दिखाते हैं कि क्या आप ये देख रहे हैं, ये क्या भारत में हो सकता है क्या। मैं पड़ोसी मुल्क में लोग जो है, जो यूट्यूबर्स हैं, वो फोटो दिखाते हैं वहां के नागरिकों को, वो पूछते हैं ये किधर का होगा, तो कोई सिंगापुर कहता है, कोई हांगकांग कहता है, फिर वो यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं ये भारत में है। तो यानी कि इससे भारत की जो छवि उभर कर आई है, पूरे विश्व में स्थापित हुई है। और साथ साथ मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके का अर्थव्यवस्था में, आज हमारा GDP विश्व में सबसे अग्रिम पंक्ति में हम खड़े हुए हैं, जिस तरीके से आज विदेशी निवेश भारत में हो रहा है, जिस तरीके से जो है वहां के पूंजी निवेश यहाँ कर रहे हैं, निवेशक यहाँ आ रहे हैं, उनको भी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ प्रदर्शनियां करें, बैठकें करें, सम्मेलन करें, संगोष्ठियां करें। तो मैं समझता हूं कि ये दो जिनका आपने जिक्र किया है, ये हमें बहुत गौरवान्वित करती है। और साथ ही साथ जो नवीनतम जो प्रौद्योगिकी है उसका उसमें जो है हमने समाहित किया है, जिससे आज विश्व स्तर में जब बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर्स की जिक्र होती है तो उसमें जो है इन दोनों का नाम भी शुमार।
0: मदन जी, अगर इतिहास के पन्ने को थोड़ा पीछे पलटे, चूंकि हम प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की चर्चा कर रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत गुजरात से हुई, वहां महात्मा मंदिर का निर्माण हो, स्वर्णिम संकुल हो, या फिर कच्छ के भूकंप के बाद जो स्मृति वन बना और फिर 182 मीटर

0: ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की नर्मदा के तट पर, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया। तो जब शुरुआत गुजरात के इन बड़े और भव्य इमारतों के साथ हुई तो सोच बदलने लगी थी। उस सोच को बदलने की कहानी आपसे समझेंगे, क्योंकि 2001 से के अगले 10 वर्षों में ये सब कुछ होने लगा था, घटित होने लगा था। कैसे देखते हैं उस फेज को, क्योंकि नए भारत की नींव उस समय बननी शुरू हो गई थी।
1: देखिए, आपने गुजरात का जिक्र किया, उससे पहले मैं एक रोचक इंसिडेंट बताऊंगा। ये करीब 2018-19 की बात होगी। मैं कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, स्पेन गया था, तो वहां पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पर मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल देखा तो मुझे मेरे दिमाग में पहली बात यह आई कि ऐसे हॉल, ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे देश में क्यों नहीं। ये बात तब तक है, तब तक मैं गुजरात नहीं गया था। स्पेशली मैं जो गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर बनाया वो मैंने नहीं देखा था। उसके 6 महीने बाद ही मुझे वहां पर जाने का मौका मिला और तो मैं देख के दंग रह गया कि हमारे देश में ऐसा हॉल पहले से मौजूद है। जब मैंने महात्मा मंदिर देखा और उसका जो स्टाइल देखा, जिस प्रकार से वहां पर सारे सिस्टमेटिक है, वही चीजें भारत मंडपम में और यशोभूमि में भी है। विज्ञान भवन में वो चीजें नहीं है। विज्ञान भवन बहुत पहले का बना था और एक सीमित कैपेसिटी का हॉल था और हमारे पास तब ले देखे दिल्ली में विज्ञान भवन ही हुआ करता था और सारी कॉन्फ्रेंस उसी में सीमित होती थी। और अगर मुझे ये भी याद है कि एक 2006-07 के आसपास कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूसा में हुई थी और वहां पर क्योंकि बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और हमारे पास कोई हॉल नहीं था और विज्ञान भवन से काम नहीं चल रहा था या वहां पर कोई बिजी था, तो बाहर टेंट लगाया गया था। एक बहुत बड़ा टेंट जैसे पब्लिक रैलियों में लगाया जाता है, पॉलिटिकल रैलियों में लगाया, उस तरह का एक टेंट लगाया गया था। तो जब 2019 या 20 में मैं दोबारा महात्मा मंदिर में गया और मैंने वहां देखा कि मैंने कहा इतना शानदार हॉल गुजरात में बन सकता है और उससे 4-5 साल पहले वो बन चुका था, तो फिर ऐसे हॉल दिल्ली में क्यों नहीं। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें चलते रही, दिल्ली में बनी, यशोभूमि तैयार हुआ और G20 का हमने सफल आयोजन देखा, 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसमें शामिल हुए। तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ पहल है और एक ये सोच जो थी कि भारत एक विकासशील देश है या एक गरीब देश है, एक सोच बनी रहती। जब भी कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता वो लगता था कि भारत भाई एक विकासशील देश है या गरीब देश। भारत एक विकासशील देश जरूर है लेकिन वो एक विकसित देशों की ओर बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और उसकी जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार की बात अभी सर ने बोली, तो जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लक्ष्य हमने रखा है 2047 का, वो हम पारित, वो वहां तक हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो उसी की दिशा में, उस दिशा में ये जो चाहे वो महात्मा मंदिर हो, चाहे वो यशोभूमि हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो जिसका अभी निर्माण हाल ही में हुआ है और सेंट्रल विस्टा का जिस तरह से तेजी से विस्तार हो रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने जो एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, उसको काम करने के लिए जब तक हम बेहतर सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे और उसको हम एक वर्ल्ड क्लास का नहीं बनाएंगे और उसको मॉडर्न जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं करेंगे, चाहे वो सिक्योरिटी जरूरतें हों, चाहे वो फायर सेफ्टी की जरूरतें हों, चाहे वो एक ह्यूज कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत हो, जब तक हम उस हिसाब से नहीं बनाएंगे तब तक हम जो अपने लक्ष्य हैं, जो अपने बड़े लक्ष्य हैं, तो उसमें भी शामिल कैसे होंगे। अगर सपोर्ट कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बहुत अच्छी तरक्की करे तो मुझे उसे बेसिक संसाधन, बेसिक सुविधाएं उसे देनी पड़ेंगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे उसे कपड़े देने होंगे, अच्छे जूता पहनाना होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हम सिर्फ ये नहीं समझे कि सड़क और एयरपोर्ट, ऑफिस भी अच्छा होना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी होना चाहिए, अच्छी पार्लियामेंट भी होना चाहिए, एक सरकारी दफ्तर है तो वहां पर हमारा फास्ट इंटरनेट भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हो रही हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये हम लगातार देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और कई चीजें बेहतर होंगी।
0: जी सुरेश जी, हमने यशोभूमि का जिक्र किया, हमने गुजरात के कुछ संस्थानों का जिक्र किया, 3 और ऐसे पृष्ठभूमियां हैं, कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन। इसमें जो खास रहा, राज से कर्तव्य की ओर बढ़ना और सत्ता से सेवा की भाषा को बदलना। कैसे देखते हैं आम जनमानस के नजरिए से और इसे प्रशासनिक सुधारों के भी नजरिए से, जो राज था वो कर्तव्य बन गया, जो सत्ता था वो सेवा की भाषा बन।
2: बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जब पहले पदभार संभाला 2014 में, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक। वहीं से यह यात्रा शुरू होती है। तो अपने आप को सत्ता का अहंकार के जगह सत्ता में जो विनम्रता होनी चाहिए कि सत्ता जो है वो लक्ष्य नहीं है, वह एक माध्यम है, सेवा का माध्यम, वह जो है एक साधना है जिसके माध्यम से हम दीनदयाल जी का जो अंत्योदय की जो बात कही थी या गांधी जी ने दरिद्र नारायण की जो बात कही थी, उनको वहां से उठाकर उनको जो है एक विकसित भारत में, जहां विकसित भारत सिर्फ अधोसंरचना नहीं है, वहां हर व्यक्ति को अपना जो है जो हक है उसका अधिकार है वह प्राप्त होगा और सही मायने में हम स्वतंत्र होंगे। याद रखिए, हम स्वाधीन जरूर बने 1947 में, लेकिन स्वतंत्र हमारे

0: हमारा अपना, हमारे सड़कों का नाम विदेशियों के नाम पर होता था, हमारे भवन जो है विदेशियों का बनाया हुआ था, हमारा अपना क्या, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की जो यात्रा है, और खासकर अमृतकाल में जो हमने 1947 से लेकर 2022 तक जो हमने जो 75 वर्ष और अमृत महोत्सव बनाया, और वहां से शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है, वहां तक पहुंचने की जो यात्रा है, उसमें यह बहुत आवश्यक है कि हमारा जो है न सिर्फ हमारे अधिकारों की बात हो, साथ साथ हमारे दायित्व बोध भी हो। ये बहुत आवश्यक है, एक नागरिक को दायित्व बोध, और नागरिक कोई नहीं, सत्ता में जो बैठा है उसको भी। इसलिए राजपथ जो है कर्तव्य पथ बना, कि कर्तव्य पर जोर है, हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करते रहे हैं हमेशा, तो राइट सेंट्रिक जो एक आख्यान रहा है उससे हटकर हम जो है दायित्व बोध पर केंद्रित, हर नागरिक अपना योगदान दे और उस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री जी सेवा तीर्थ, अपने कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ रखते हैं, क्योंकि ये सेवा का जो है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सारा नीति निर्धारण होता है, तो अगर वही सेवा तीर्थ हो गया तो आप समझिए कि क्या संदेश नीचे तक पूरे प्रशासन कि हम यहाँ सत्ता भोगने नहीं है, सत्ता को सेवा का एक माध्यम बनाकर हम आए। तो इसलिए हम सेवा तीर्थ में भी वही संकल्प को हम देखते हैं, परिलक्षित होते हुए देखते हैं, हम उसी संकल्प को हम देखते हैं जब आप कर्तव्य भवन जो देखें। अब आप कर्तव्य भवन को देखिए, उनका निर्माण देखिए, आधुनिक सारी सुविधाएं, लेकिन भारतीय विरासत और विकास दोनों का प्रतिनिधित्व उसमें दिखता है, जगह का कितना सदुपयोग हुआ है और उनमें इतनी ऊर्जा है, वो इकोनॉमिकली ही नहीं, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के दृष्टि से भी उसमें कई, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर हो, उसमें कई व्यवस्थाएं की गई है ताकि वो विश्व के आधुनिक भवनों में से उनकी गिनती होती है, जिसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से आधुनिक इंटरनेट और नेटवर्क और सभी सुविधाओं से सुसज्जित है, लेकिन साथ ही साथ जो है उसमें आप देखेंगे, मुझे कहते हुए ये है कि अफसरों के कमरे जो बड़े बड़े होते थे, आज उतना ही समय जो फंक्शनल जिसको कहते हैं कि आपको कमरे की आवश्यकता है, कमरा है जहां से आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उतना ही पब्लिक को बैठने की जगह, जहां लोग मिलने जाते हैं उनको बैठने की जगह, बाकी जो जन सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध किया गया है, बहुत सोच समझ कर, एक जनता को केंद्र में रखकर इन भवनों का निर्माण किया गया है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इन सब के मध्य में जो है वह अंत्योदय में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वह लोक दरिद्र नारायण है, जिसके सेवा के संकल्प को प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का प्रयास किया है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरा होने पर विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में ये विशेष एपिसोड। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए भारत की नई सार्वजनिक पहचान पर, और हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान हैं, प्रोफेसर केजी सुरेश और मदन जीड़ा जी। मदन जी, ये सब कहानियां भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में की जा रही हैं, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रीय संपर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। एविएशन सेक्टर और क्षेत्रीय संपर्क की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु का केम्पागोड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल 2, गुवाहाटी का नया टर्मिनल और आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी लोकप्रिय है, ये तीन अलग अलग रणनीतियों को दर्शा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो 6 रनवे के साथ एशिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स और पैसेंजर हब के रूप में उभरेगा। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट पूर्वोत्तर को एशियन देशों के साथ अष्टलक्ष्मी एक्सप्रेस वे के रूप में जोड़ रहा है। आपसे समझना चाहते हैं कि सार्वजनिक अवसंरचना का ये क्षेत्रीय संतुलन भारत के आर्थिक नक्शे को किस तरह रीडिजाइन कर रहा है।
2: देखिए, दो तीन चीजें हैं हमें ये देखना होगा पिछले कुछ सालों से। एक तो हमारा जो एयर पैसेंजर है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है और बहुत तेजी से एयर पैसेंजर बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि जो कार्गो है, एयर कार्गो है, वो उसकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट का भारत की तरफ रुझान है, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा हो, चाहे वो धार्मिक पर्यटन की वजह से आ रहा हो, चाहे वो गोवा या एक उत्तराखंड में जो हिल एरिया का टूरिस्ट है उसकी वजह से आ रहा हो, तो कई कारणों से टूरिस्ट भारत आता है, इलाज से लेकर पर्यटन तक और धार्मिक कारणों से, उसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुझे डाटा अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप डाटा देखेंगे तो लगातार तीनों सेक्टर में टूरिस्ट बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट हों और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हैं उनको बेहतर बनाया जाए और उनको एक नई पहचान दी जाए। अगर आप बेंगलुरु का टर्मिनल 2 अगर देखें तो बेंगलुरु एक आईटी का बहुत बड़ा हब है और इसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि वहां पर एक किस प्रकार से सारी दुनिया की जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे अमेरिका में हमारा कितना ही स्टेक है आईटी का, तो

0: का जो ड्राइवर है, की ड्राइवर एरिया है वो बेंगलोर है, तो वहां पर एक जो लगातार एक पैसेंजर का ट्रैफिक है वो बढ़ा है, लगातार बढ़ा है, तो उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उसी के पीछे यही रणनीति है कि वहां पर वो व्यवस्था आसान हो और दुनिया के जो बड़े आईटी हब हैं और जो औद्योगिक हब हैं या जो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं उन शहरों को बेंगलुरु से डायरेक्ट जोड़ा जाए, और जोड़ा भी गया है और बेहतर जोड़ा गया पहले से। तो इसलिए बेंगलुरु एयरपोर्ट का अगर उसका हम लोकल पहचान में देखें तो वहां पर उस एयरपोर्ट की खूबी है कि वहां पर पेड़ बहुत लगाए गए हैं, तो उसकी जो थीम है वो एक गार्डन बेस्ड थीम बनाई गई है, तो एक भारत के एक अलग पहचान दी गई है, को भारत एक वनों का देश है, भारत में वनस्पतियां बहुत सारी हैं। इसी प्रकार जो गुवाहाटी का एयरपोर्ट है तो उसको भी ये इसी तरह की पहचान दी गई है, वहां पर करीब 100 से ज्यादा जो प्रजातियां हैं उनके 1,00,000 से ज्यादा पेड़ वहां पर लगाए गए हैं, वो उसको एक सुंदरता के लिए, उसकी क्षेत्रीय पहचान देने के लिए। नॉर्थ ईस्ट हमारा काफी एक रिच कल्चरल और हैबिटेशन का रिच एरिया है, तो उसकी वजह से वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी ये चीज नजर आएंगी। जहां तक गुवाहाटी एयरपोर्ट की बात है तो गुवाहाटी एयरपोर्ट वैसे तो आज नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें सिविल एयरपोर्ट भी है और जो डिफेंस पर्पज के एयरपोर्ट है उनकी संख्या भी बढ़ी है। जो पुरानी एयर पट्टियां थी उनको लगातार डेवलप किया गया है और वहां पर जो बड़े प्लेन है, चाहे वो डिफेंस के हो चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो, वो कनेक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन गुवाहाटी चूंकि एक मेन एरिया है और वहां पर कहें कि नॉर्थ ईस्ट का वो द्वार है और वहां पर हमें ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत थी और वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसलिए उस एयरपोर्ट को डेवलप करने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को बेहतर करना, क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट जा रही है अगर वो गुवाहाटी उतरती है तो गुवाहाटी से फिर वो हेलीकॉप्टर और छोटे प्लेन से आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो इसलिए गुवाहाटी एयरपोर्ट भी रणनीतिक तौर पर उसका टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उससे कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है और ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उससे दिल्ली से बेहतर हुई है। अगर हम जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही बिजी एयरपोर्ट में एक है और लंबे समय से बात चल रही थी और मुझे तो आश्चर्य है कि 2001 में पहली बार ये बात शुरू हुई थी कि हमें जेवर में एक एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन वो लटकते रहा आखिरकार 2018-19। तो ये भी एक सवाल है कि आखिर इतना डिले क्यों हुआ, जो पहले बन जाना चाहिए था, जब 2000 से बात चल रही थी तो पहले इससे क्यों फैसला नहीं लिया। तो जहां पर इस एयरपोर्ट से एक लॉजिस्टिक हब NCR में कनेक्ट हो रहा है और जो ये प्लान है फ्यूचर में कि जो लॉजिस्टिक प्लेन है उनको जेवर में उतारा जाए ताकि जो दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहां पर पैसेंजर प्लेनों को ज्यादा उतारा जाएगा, तो इससे एक बैलेंस बन जाएगा यहाँ पर। और कई बार हम सुनते हैं, मीडिया में भी रिपोर्ट आती है कि लैंडिंग के लिए इतना टाइम पालम पर लग रहा था कि 1 घंटे हवाई जहाज हवा में चक्कर काटते रहा क्योंकि लैंडिंग के लिए उसे रनवे खाली नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि ये समस्या दूर होगी और जो जेवर एयरपोर्ट की वजह से वहां पर एक लॉजिस्टिक हब धीरे धीरे बन रहा है और आने वाले समय में सारे अगर कार्गो प्लेन वहां पर लैंड होते हैं तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का तो विकास होगा ही, बाकी जो दिल्ली के एयरपोर्ट हैं उनका जो लोड है वो काफी कम होगा। और अभी रिसेंटली अगर हम एक एग्जांपल दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए थे, तो जब किसी बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनकी पर्सनल कार, सामान, तमाम कमांडो उनके पहले आ जाते हैं, दोनों पहले, तो दो बड़े बड़े प्लेन उनके जब आए तो वो जेवर एयरपोर्ट पर उतरे, क्योंकि जब दो बड़े प्लेन अगर वो पालम पर उतरते तो वहां पर वो 2 दिन खड़े रहते तो वहां पर उतने पार्किंग का स्पेस की प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। तो अगर ब्रिक्स में रिसेंटली जो ब्रिक्स हुई तो उनके प्लेन 2 दिन वहां पर खड़े रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फायदा है कि इस तरह की कभी स्थिति आती है तो उससे भी फायदा मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं इनके।
1: सुरेश जी कहते हैं कि एक राष्ट्र केवल भवनों से नहीं बनता, अपनी स्मृतियों और शहीदों के सम्मान से भी बनता है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण करवाया गया हो, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर अनगिनत शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, और जब एक देश का युवा जाकर उन शहीदों के नाम को स्पर्श करता है तो एक अलग अनुभूति होती है। साथ ही साथ नेशनल पुलिस मेमोरियल भी बनाया गया है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये स्थल देश के आम नागरिक में कैसे देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं और विकसित भारत बनाने की दिशा में इनकी क्या भूमिका है।
2: निश्चित ही इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, हम सब इंडिया गेट में जाते रहे हैं, अमर जवान ज्योति है, वहां जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी में जो है राष्ट्रपति स्वयं जाके वहां श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन याद रखें कि वो अंग्रेजों ने बनाई थी और उसमें विश्व युद्ध में जो भारतीय या भारतीय सेना में उस वक्त जो अंग्रेजों के अंतर्गत था उन लोगों के नाम जो है वहां जोड़े गए हैं। भारतीय थे, इसमें कहीं कोई भी फौजी का जब शहीद होता है तो वो सम्मान के पात्र है, लेकिन भारत का अपना, भारत ने इतने युद्ध लड़े 47-48 में, 62-65 में, करगिल में, उनको भी तो सम्मान देना जरूरी है। तो वो लोग जिन्होंने नए भारत के लिए अपना प्राण निछावर किए, जो शहीद हुए, जिनके वजह से हम लोग हैं आज चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्या उनको एक श्रद्धांजलि, एक ऐसा एक उपयुक्त स्थल आवश्यक नहीं था क्या नवीन भारत में? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो वार मेमोरियल बना है उस दिशा में हमारे अंदर न सिर्फ एक स्वाभिमान का भाव जगाता है अपितु हमारे फौजियों के प्रति, हमारे सिपाहियों के प्रति, जवानों के प्रति हमें एक सम्मान पैदा होता है और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं देश के लिए, कि मैं भी इतिहास में अपना एक जगह पाऊं, कि मैं इन वीरों ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उस कारण जो है आज हम आजादी का जो है चैन की सांस ले पा रहे हैं। उस महत्व को समझने की आवश्यकता है। जलियांवाला बाग, मैं अभी भी अमृतसर गया था, जलियांवाला बाग में जो है मैं समझता हूं कि हमारे सबसे खूनी अगर अध्याय हमारे इतिहास में रहा तो वो वहां रहा। बेकसूरों को मार दिया गया गोली मारकर, और क्या उनके लिए एक ऐसा स्मृति स्थल आवश्यक नहीं था क्या? बिल्कुल, वो उपयुक्त तो हो। पहले भी मैं गया हूं वहां तो बड़ा मायूस होकर मैं लौटा कि एक ऐसी जगह जहां कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं, उन जनसाधारण का, जिनको मात्र इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि वे भारतीय हैं, इसलिए उनको भून दिया गया, क्या उनके बलिदान को क्या हम कम आंके? तो मैं समझता हूं उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, हमारे पुलिस कर्मी दिन रात 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, क्या उन पुलिस कर्मियों के लिए, और याद रखें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, अर्धसैनिक बल भी पुलिस में ही शामिल होती है, और उन्होंने चाहे वो BSF हो या ITBP हो, इन लोगों ने भी बहुत शहादत दी है हमारे सरहदों, तो उनके लिए क्या जरूरी नहीं है? वो एक उत्तर पूर्व में एक आलेख है जो उनके वहां लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए दिया, दे गेव देयर टुडे फॉर आवर टुमारो, क्या उनको हम लोग सम्मान करें, उनके स्मृतियों को सम्मान करें, उनके परिवारों को एक जगह मिले जहां जाके वो अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं? क्या ये कोई भी देश, एक कृतज्ञता ज्ञापन होता है कि उन लोगों के लिए, ये नहीं कि वो जो है उन्होंने अपना कर्तव्य किया, क्या हर आदमी ऐसा कर्तव्य कर सकता है क्या? तो उस पराक्रम को पहचानना, उसको सम्मान देना, और वहां जब हमारे राष्ट्रीय नेता जाते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम उन पुलिस कर्मियों को बता भी रहे हैं जो वर्तमान में भी है, कि पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है। ये संदेश बहुत आवश्यक है और ये नए भारत की पहचान है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, उनका वो भारतीय दृष्टिकोण है कि उन्होंने जो है इन चीजों को भी उतना ही महत्व दिया जितना कोई एक अंतर्राष्ट्रीय सभागार निर्माण करने के लिए दिया हो, उतना जितना उन्होंने नए भवनों के लिए और नए संसद के लिए दिया हो, वही महत्व जो है उन्होंने इस बिल्कुल संजीदगी की जहां जरूरत है, संवेदनशील जो आवश्यकताएं हैं, उसको भी उन्होंने उतना ही दिया।
1: इसी चर्चा को मदन जी अगर थोड़ा आगे लेकर चलें तो स्मृति वन जो लगभग 470 एकड़ में है, और हमारे श्रोता जानते हैं कि जब कच्छ में भूकंप आया था उसके बाद इसका निर्माण वहां पर करवाया गया, उसमें मेमोरियल के साथ साथ अर्थक्विक म्यूजियम और डिजास्टर अवेयरनेस कंपोनेंट्स भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये भारत में मेमोरियल को लिविंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की नई प्रवृत्ति का एक शानदार उदाहरण है?
0: निश्चित रूप से है, क्योंकि इसलिए है, भुज में जो भूकंप आया था तो उसकी त्रासदी, उसमें बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और काफी लोग उसमें मारे गए थे, तो मुझे लगता है कि ये देश में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप था। तो एक जब कोई भूकंप आता है तो जाहिर सी बात है कुछ समय तक राहत कार्य चलते हैं, फिर उसके बाद कुछ और फैसले होते हैं, लेकिन उसके बाद वो घटना भूल जाते हैं लोग, फिर उसके बाद फिर कोई भूकंप आता है तो फिर वही चीजें होती। लेकिन गुजरात में इस भूकंप को आया तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, ये स्मृति वन भी बनाया गया, और उसमें जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किया गया है, और मैं समझता हूं कि हल्के भुज में जो उसके बाद भुज में जो भी मकान बन रहे हैं वो अर्थक्विक रेजिडेंस बन रहे हैं, ये भी एक बात है, लेकिन ये जो स्मृति वन वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है, क्योंकि एक भूकंप एक ऐसी चीज है जिसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता आज तक। साइंस इतना आगे बढ़ गया लेकिन भूकंप का प्रिडिक्शन अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन भूकंप से 100% बचाव संभव है। भूकंप रोधी इमारतें बनाई जा सकती हैं, और जो इमारतें पहले से भूकंप रोधी नहीं है उनको भी आप थोड़ा बहुत काम करके भूकंप रोधी बना सकते हैं। यही चीज शायद स्मृति वन में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आप भूकंप से बच सकते हैं, कैसे लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए, और इसके अलावा बाकी जो उन लोगों की स्मृति बनाया गया, जो लोग उसमें मारे गए उन लोगों को श्रद्धांजलि तो है ही, तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को देश के दूसरे हिस्सों में प्रचारित किया जाने की जरूरत है और

0: भूकंप को लेके, भूकंप के खतरों को लेके और इसके बचाव के तरीकों को लेके लोगों को बड़े पैमाने पर अवेयर किया जाने की जरूरत है, क्योंकि जो साइंटिफिक रिपोर्टें हैं वो अभी भी हमारे लिए चेतावनी वाली हैं और जो ये बताती हैं कि भारत के बहुत सारे हिस्से भूकंप के जोन 4 या जोन 5 में हैं। तो जोन 4 और जोन 5 सबसे खतरनाक माना जाता है। तो इस जोन में बहुत सारे इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ के इलाके हैं, दिल्ली के कई इलाके जोन 4 में है। तो मुझे लगता है कि अगर हम जो स्मृति वन का कॉन्सेप्ट है इसे प्रचारित कर सकें तो एक लोगों को जागरूक करने में काफी अच्छी मदद मिलेगी और लोग अपने घरों को भूकंप से बचाव के अनुरूप बनाने में सफल भी होंगे।
1: सुरेश जी, अब उस जगह चलते हैं जहां से पूरे देश की नीतियां बनती हैं। दशकों तक भारत उस संसद में बैठता रहा जिसे अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासन के लिए बनाया था। ल्यूटियंस दिल्ली की उन चौड़ी सड़कों और इमारतों में एक किस्म की अहंकार और दूरी की गूंज थी। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बना। एक शिक्षाविद के नाते आपसे ये समझना चाहेंगे कि केवल ईंट और पत्थर का बदलाव है या फिर ये बदलाव उस सोच का है जो भारत की सांस्कृतिक पहचान भी वहां दर्शाई गई है। भविष्य में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी उसके लिए भी वहां पर सुविधाएं की गई हैं। कह सकते हैं कि वो ईंट और पत्थर के बदलाव से कहीं ज्यादा भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक साथ ही साथ विकास की नई रफ्तार को गति देने वाला वो इमारत है।
2: निश्चित ही, देखिए जो नया संसद भवन है वो नए भारत की पहचान है। जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन में सेंगोल जो प्रतीक है, वो प्रतीक है कि क्या संसद का अधिकार क्या है, उसका प्रतीक है, वो जनता का प्रतीक है सेंगोल, वहां स्थापित किया। और याद रखिए सर्वधर्म प्रार्थनाएं वहां हुई थी, उसके साथ वो शुरू किया गया था। भारत के जो जिसे कहते हैं कि सर्व पंथ समाभाव के भावना को प्रतिनिधित्व किया गया वहां, प्रतिबिंबित किया गया वहां। और जब ये उद्घाटन हुआ तो आप उस उन भवनों को देखेंगे, उस नए भवन को देखेंगे तो उसमें नए भारत की, वो कहीं विदेश से कोई किसी चीज को आयातित किया नहीं है। हालांकि यह भी बताया जाता है कि जो पुराना संसद भवन है वो भी जो है आप सांची में जो एक बना हुआ था स्तूप, उसी से प्रेरित होकर बनाया था। लेकिन यहाँ प्राचीन हमारे सभ्यता के प्रतिबिंब होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से, और जैसे आपने कहा भविष्य की, अगर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे और प्रतिनिधित्व की जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी आजादी के समय जो आबादी थी उससे 10 गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। आज उस आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं, जहां लाखों लोगों का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहां संख्या बढ़ना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में, और हम आज बात कर रहे हैं कि 1/3 प्रतिनिधित्व हमारे माता और बहनों के लिए हम सोच रहे हैं, उसका विधेयक प्रस्तुत हो चुका है, और जब ये संख्या बढ़ेगी तो उनको कहां बिठाएंगे। कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन होता था तो सेंट्रल हॉल में जाना पड़ जाता था, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर उनको कहां बिठाया जाएगा। बाकी व्यवस्थाएं की गई है, उससे आपको स्पष्ट होता है कि वहां उस विरासत और विकास दोनों को प्रतिबिंबित करते हुए उसको जो है तैयार किया गया है, और आधुनिक भारत का एक प्रतीक बनकर वो उभरा है। तो मैं समझता हूं कि हम सबके लिए गर्व की बात है। निश्चित ही जो पुराना संसद भवन है वह भी हमारा है, उसमें हमारे भारतीय जो मजदूर है उनके मेहनत से वो बना है, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उस संसद भवन में निर्णय लेते हैं जो हमने बनाया है, वो किसी विदेशी का बनाया हुआ नहीं है, वो नए भारत का जो है बुलंद आवाज है।
1: मदन जी, जब कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि 25 वर्षों की इस यात्रा में बनी इन सार्वजनिक संरचनाओं में से आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या होने वाली है, उनका आकार, उनका स्थापत्य कला या फिर उनका उपयोग, या वो कहानियां जिन्हें वे आने वाली पीढ़ियों को सुनाने वाले।
0: देखिये, तीनों बातें सही है। ये एक हमारे विरासत को भी प्रदर्शित करती है, दूसरा हमारी जरूरत भी है। जैसे मैंने कहा कि सर ने भी बताया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग क्यों बनानी पड़ी, जरूरत भी थी उसकी सिर्फ, और बाकी जो भारतीयता की पहचान है, एक नई पहचान देने की कोशिश की गई है वो भी है। तीनों बातें हैं। इसी प्रकार अगर हम सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा हमारी विरासत की पहचान भी है, हमारी आज की जरूरत भी है, और जो एक नई पहचान देने की बात कही है, कर्तव्य भवन उसका नाम रखा गया, तो एक कर्तव्य पथ का जिसे नाम दिया गया, राजपथ नाम चल रहा था, कब से चल रहा था, क्यों चल रहा था कोई नहीं जानता इस बारे में, और अब तक क्यों नहीं बदला गया कोई नहीं जानता। तो मैं कहूंगा कि जो नए भवन है, चाहे नए एयरपोर्ट है या नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, तो ये सबसे पहले हमारी जरूरत है, उसकी जरूरत थी। सेंट्रल विस्टा की अगर बात करें तो वहां पर जैसे हम 60-70 साल पुराने वो बिल्डिंगें थी, उस समय की जरूरत तब दूसरी रही होगी।

0: उस समय जो सरकारी स्टाफ रहा होगा कम रहा होगा, अब बढ़ गया। तो स्थिति ये थी कि एक ही ऑफिस चार अलग अलग बिल्डिंगों में चल रहा था, तो उसको एक साथ आने की कोशिश की गई, तो उससे जो एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर हुआ। इसके अलावा जब वो बिल्डिंगें बनी उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हम शास्त्री भवन से लेकर उद्योग भवन में देखते थे कि जिस कमरे में निकलो वहां पर तारों के इतने मोटे वहां पर गुच्छे लटके रहते थे। तो वो सिस्टम नए भवन में इस तरह से बनाया गया है कि आपका वो सीधे सर्वर से निकलेंगे और सर्वर तक ही पहुंचेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेके इन तमाम सेंट्रल सेक्रेटरियट के बिल्डिंग में बहुत बड़ा इशू था। फायर सेफ्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी, तो इनको फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, भूकंप की हम बात कर रहे थे अभी, तो भूकंप रोधी भी बनाया गया, तो ये भी एक चुनौती थी। इसके अलावा जिस जमाने में बिल्डिंगें बनी होंगी उस समय सिक्योरिटी का उतना जरूरत नहीं रही होगी या उतना खतरा नहीं रहा होगा। आज सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस सिक्योरिटी को भी इनमें ध्यान में रखा गया। एंट्री एग्जिट पॉइंट पे कहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा रहेगा, कहाँ पर उसके दूसरे जो उनके नेटवर्क होते हैं सिक्योरिटी के, उसकी भी सारी व्यवस्था की गई। पार्किंग बहुत बड़ा इशू था। अब आप जो पुरानी जो बिल्डिंगें थी सेंट्रल विस्टा की, जो सेंट्रल सेक्रेटरी जिसे हम कहेंगे, तो उसकी बिल्डिंगों में पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। और आज जो नए हमारे कर्तव्य भवन बने हैं, तो वहां पर इस तरह से मैनेज्ड पार्किंग है कि अगले कई सालों तक उसमें दिक्कत नहीं आने वाली। और अब तो उसे मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक
1: जी
0: विरासत भी है और हमारी जरूरत भी है, और एक नई पहचान भी इसके जरिए दी गई है।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, इन सार्वजनिक पहचानों के माध्यम से भारत दुनिया को क्या संदेश दे रहा है?
2: एक आत्मनिर्भर भारत जो अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करता है, और साथ ही साथ वो आधुनिक सुविधाएं जिसकी आवश्यकता है हमारे अपने लोगों के लिए, और उनके अंदर एक धैर्य और उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाता है। जब नए भवनों को देखते हैं हमें गर्व ही नहीं आत्मविश्वास भी होता है, तभी जाकर हम जो है सही मायने में विकसित भारत की दिशा में जो है बहुत सकारात्मक और मजबूत कदम उठा पाए।
1: इमारतें बनती हैं लेकिन पहचान बनने में समय लगता है। पिछले 25 वर्षों की सार्वजनिक नेतृत्व यात्रा को देखें तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक तस्वीर लगातार विकसित होती दिखाई देती है। विकास की नई संरचनाएं, प्रशासन की नई जगहें, इतिहास की नई स्मृतियां और भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के नए मंच। लेकिन इन सब की अंतिम कसौटी एक ही है, क्या वे स्थान आने वाले वर्षों में नागरिकों के जीवन, भारत की स्मृति और दुनिया में भारत की पहचान को और बेहतर कर रहे हैं? और इन सब के साथ ही आज का ये विशेष अंक समाप्त होता है। सुरेश जी आपका, मदन जी आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 20वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नए भारत की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और वरिष्ठ पत्रकार मदन जैरा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: श्रोता, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अरुण एफएम प्रसारण सभा में। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष संस्करण। चलिए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश की ओर।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश।
2: हेलो जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते,
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: जी बहुत बहुत बढ़िया है, हम भी यहाँ।
2: जी हमारे यहाँ पे मौसम काफी अच्छा है, सोयाबीन की कटाई हो गई है और अब थ्रेसर चल रहे हैं सभी के यहाँ पर।
0: जी यहाँ का मौसम भी काफी खुशनुमा है, गर्मी से थोड़ी राहत है, अब बादल छाए हुए हैं। और बताइए आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
2: आप सुनवा दीजिएगा फिल्म करा में मुझसे शादी करोगी।
0: जी
2: और हाँ, गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से।
0: जी जी जी, और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
2: बताना चाहेंगे क्योंकि काफी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है।
0: जी
2: और सभी अपने अपने

0: करे और ये गाना जब बजेगा ना
1: जी
0: तो
1: जी
0: बहुत ही अच्छा लगेगा।
1: जी और आप इस गाने को किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: हाँ जी, हमारा ग्रुप है हलो फरमाइश एकता ग्रुप, उसके सभी श्रोताओं को, और उसमें प्रमुख दोस्त है हमारे गौतम राय बोले सर, लोकेंद्र वर्मा, आशुतोष अविना संगीता जी, लोकेंद्र वर्मा और भगवान सिंह वर्मा, सुनील झा, रमेश टेलर, और आपके लिए डेडिकेट रहेगा।
1: जी जी थैंक यू प्रेम जी,
0: जी
1: हमें इसी तरह से कॉल करते रहेगा, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ते रहेगा, इसके लिए थैंक यू
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपसे।

0: हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश.
0: हेलो फरमाइश.
1: हाँ जी बोलिए.
0: मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ.
1: जी अनूप जी, कैसे हैं आप?
0: गा रहे मसाला बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो. और क्योंकि आज तो शुभ सोमवार है ना?
1: जी जी जी शुभ सोमवार है.
0: हमारे शिव जी का तो पूजा अर्चना तो चलता है ना?
1: जी जी
0: तो बाकी पूजा अर्चना के बीच में मैं ट्राई कर रहा. पूजा अर्चना मतलब खत्म हो गया और भक्त समागम हो रहा है और इस अवसर पर मैं फोन लगाया और फोन भी लग गया.
1: जी बताइए, आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
0: जी जी जी बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने मेरा फोन उठा लिया. पहला 11 बजे एक तक मेरा रिंग हुआ, नहीं उठाया तो मैंने सोचा कोई प्रोग्राम नहीं जा रहा है.
1: नहीं, प्रोग्राम तो जा रही है पर कोई बात नहीं, आपका नंबर बाद में लगा. जी
0: जी तो एक बात कहूँ मैम.
1: जी बोलिए.
0: बात ऐसे है, किसी ने मुझसे पूछा क्या है तेरी खुशी का खजाना, मुझे अचानक याद आ गया तेरा हल्के से वो मुस्कुराना. मेरी सांसों की डोर बस दो ही ख्वाहिश पर टिकी है, सांस चले तो तुम साथ हो, सांस रुके तो तुम पास हो, है ना?
1: जी काफी अच्छी साइड कर लेते हैं.
0: जी जी जी बहुत अच्छा लगता है जब फोन मिलता है. दो तीन रोज में कोशिश किया लेकिन मेरा अवेलेबल नहीं हुआ.
1: जी जी जी कोई बात नहीं, अगले श्रोता जो है वो उनका शायद लग गया होगा, आपका नहीं
0: जी,
1: लगा इसलिए बिजी रह गया.
0: जी तो चलिए आज एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ.
1: जरूर बोलिए.
0: फिल्म का नाम है बागी.
1: जी बागी फिल्म का कौन सा गाना?
0: का बोले एक चंचल छोक हसीना मेरे सपन में आए, मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए.
1: जी अनुप जी, आप इस गाने को किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: जी जी डेडिकेट मैं करूंगा. पहले है हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त थे जिनका नाम है दिलीप पाहुचा, मेरे बड़े भाई, राजस्थान से बिलोंग करते हैं. और है हमारे लोकेंद्र वर्मा

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते
1: जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, अच्छे।
0: जी जी जी, तो मौसम बताइए आज वहाँ छत्तीसगढ़ का, किस तरह का मौसम है आज? गर्मी है या
1: अभी
0: बारिश?
1: तो गर्मी है बहुत।
0: जी,
1: बारिश तो पूरी तरह से हट गए हैं।
0: अच्छा, तो आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हिमालय की गोद से सुना देंगे, चांद से महबूबा हूँ मेरी तो।
0: जी जी, और किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: रानू जी हैं, हरिपाल गोयल जी हैं, लोकेन जी हैं, दिलीप आहूजा जी हैं, धीरज जी हैं, तुकाराम जी हैं, जगदीश जी हैं, तेज चंद जी हैं, उदय लाल जी हैं और तमाम साथी हैं। किसी का छूट गया हो तो प्रेम सिंह जी और केसरी सिंह जी।
0: जी जी योगी जी, जरूर हम आपके रिक्वेस्ट का ये गाना प्ले करेंगे। इसी तरह से हमें सुनते रहेगा, हमारे साथ जुड़िएगा इस प्रोग्राम में। जी
1: जी, धन्यवाद
0: जी।

0: हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम.
0: जी नमस्ते.
1: जी मैम, हम धेमाजी असम जुनाई मिसा की शपुरी से विमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम.
0: जी विमल जी, क्या कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है मैम, आपका कैसा है मैम?
0: जी हम भी ठीक है.
1: हम लोग का सर नहीं, भूखे बगरा सर नहीं यार.
0: जी भूखे बगरा सर तो है, पर आज इस प्रोग्राम में मैं जुड़ी हूँ आपसे.
1: ठीक है मैम, अच्छा लगा आपसे भी बात करके, बहुत अच्छा लगता है. मौसम कैसा है मैम उधर?
0: मौसम थोड़ा बादल छाया हुआ है, लगता है बारिश होगी फिर धूप होगी, इस तरह से है मौसम.
1: जी मैम, हम लोग का इधर भी सुबह बारिश आया था, अभी ठीक ठाक है.
0: जी जी जी,
1: अभी इतना गर्म नहीं है, बारिश हो रहा है इसीलिए.
0: हाँ गर्मी थोड़ा कम हो गया अभी तो.
1: जी मैम,
0: तो बताइए आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, हमको आज सुना जीप मूवी का तुझे डरती थी जहाबी जहाबी रह जाए, ये गाना सुनना चाहता हूँ मैम.
0: जी जी जी, जरूर सुनाएंगे.
1: और
0: किसी
1: ये गाना हम दोस्तों के लिए दिले कर सकता हूँ.
0: जी
1: सबसे आगे भूखे बगरा सर और आपको दिले के रहेगा, और हम लोग का है अमोल भूसलरी, फाइकन मुंडा, रमेश पत्र, सुनीता बसुमतारी, अंजलि बसुमतारी, और है संध्या रानी गोगोई, अजित कुमार शर्मा, विनोद गोगोई, पुनाराम लालू, सोलोकांड टाइप, और हेलो फरमाइश ग्रुप का स्टाफ है हम लोग का, रमेश प्रजापति, राकेश गोल्डी, पूरन वर्मा, राकेश, और जितना भगवान सिंह परमार, जितना सुन रहा है सबको दिल के रहेगा, और गागे राबा के लिए दिल के रहेगा मैम.
0: जी जी जी, जरूर हम आपको जीत फिल्म का ये गाना जरूर सुनाएंगे, साथ ही आपके सभी साथियों को ये गाना डेडिकेट रहेगा हमारी ओर से. आपको आप इसी तरह से कॉल करते रहेगा, हमारे प्रोग्राम से जुड़ते रहेगा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू.
1: मैम कॉल लगा के बहुत अच्छा लग रहा है, हम जो रोज सुनते रहते हैं बहुत अच्छा लगता है, रोन एफएम हम लोग का पूरा बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा लगता है सुन के.
0: जी जी जी, आप लोगों के इन्हीं शब्दों से हमारे भी हौसला अफजाई होती है. जी थैंक यू. जी थैंक यू.

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार
0: जी। नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला हिमाचल प्रदेश से।
0: जी राकेश जी, कैसे हैं
1: जी? बहुत बढ़िया है। और आपके साथ पहली बार बात हो रही है, आपका नाम जानता। आप नूरी मैम बोल रही है क्या?
0: जी मैं कविता बोल रही हूँ।
1: ओके ओके ओके, क्योंकि पहली बार आपसे मेरी बात हो रही है
0: जी,
1: और
0: जी।
1: मैं आकाशवाणी ईटानगर में सुनता रहता हूँ और आपके प्रोग्राम का मैं नियमित से होता हूँ।
0: जी, शिमला का मौसम किस तरह का है?
1: शिमला का मौसम जो है बिल्कुल साफ है
0: जी
1: और
0: जी
1: ठंडी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी ठंड भी जो है बढ़ चुकी है।
0: जी तो इस खूबसूरत मौसम में आप आज कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मुझे गाना सुनना है, मूवी का नाम है सलामी।
0: जी सलामी फिल्म का कौन सा गाना?
1: गाने के बोले जब हाले दिल तुमसे मिलने को कहने आती।
0: जी जी
1: और कुछ दोस्तों को याद कर सकते हैं?
0: जरूर जरूर
1: सबसे पहले तो आप मुझे गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी, शुक्रिया।
1: पूरन वर्मा है, तनुश्री है और भगवान से परमार हैं और राम नरेश कंजर हैं, रमेश प्रजापति हैं और अविनाश हैं और शिवा लोहत हैं और तमाम सुनने वाले श्रोता है और जिनका भी नाम छूट गया उनके लिए भी गाना दे दीजिए। कैसे कहा? और अमर सिंह साहू है और परशोत्तम साहू है और तमाम सुनने वाले श्रोता है जिनका भी नाम छूट गया उनके लिए भी डेडिकेट रहेगा ये गाना।
0: जी जरूर राकेश जी, हम आपको सुनाएंगे आपके पसंद का ये गाना। कॉल करने के लिए हमें थैंक यू जी।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार मैम
0: जी। नमस्ते।
1: जिला गुना एमपी तहसील मधुसूदनगढ़ ग्राम कीटकड़ी से अमर सिंह साहू बोल रहा हूँ मैम।
0: जी अमर सिंह साहू जी।
1: हाँ जी मैम
0: जी। तो बताइए कैसे हो
1: आप? कैसे हो मैम?
0: मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो?
1: हम भी अच्छे मैम। अरुणाचल का मौसम कैसा है मैम अभी?
0: मौसम तो काफी अच्छा है, ना ज्यादा गर्मी है अब ना और सर्दी आने ही वाली है, इस तरह मौसम है अभी यहाँ पे।
1: कविता मैम बोल रही है आप? कौन बोल रही है?
0: हाँ जी जी कविता बोल रही हूँ।
1: वो के बागरा ही नहीं आया आज
0: जी, आज वो प्रोग्राम में नहीं आए पर है जरूर स्टेशन में।
1: जी मैम। जी मैम। जी मैम।
0: जी तो बोलिए, आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते?
1: मूवी का नाम है निकला छुपा रुस्तम।
0: जी निकला छुपा रुस्तम।
1: हाँ उसमें गाना है अरे ओ शेरी बाबू।
0: जी
1: और आपकी ज्यादा वो तो कुछ दोस्तों के याद कर लीजिए।
0: जरूर जरूर कर लीजिए।
1: तेरे तो बे अपने भाई बेटे तेरे वो के बागरा जी।
0: जी जी जी।
1: और कविता मैम है
0: जी। शुक्रिया।
1: और अनु कुमार भट्टाचार्य, मणिलाल चंदेल जी है, अनु कुमार भट्टाचार्य जी है
0: जी,
1: और नरेश प्रजापति है और रमेश प्रजापति है। हाँ जितने भी सब दोस्तों सुन रहे हो सभी को जो गाने डेडिकेट रहेगा मैम।
0: जी जी जरूर, हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे और सुनाएंगे आपको आपके पसंद का।
1: पूरन वर्मा जी धन्यवाद मैम। नमस्कार अभिनाथ।

0: हेलो फरमाए।
1: हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी हेलो फरमाए से बोल रहे हैं
2: जी, मैं पांडे बात कर रही हूँ गोंडा यूपी से।
0: जी जी बोलिए।
2: हेलो
0: हेलो जी। हाँ सुन रहे हैं हम आपको, आप हमें सुन रही हैं?
2: जी मैम आपकी आवाज आ रही है।
0: जी जी जी तो बोलिए, आप आज कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
2: आज मैं मुझको गाना सुनना है तो धड़कन मूवी से गाना।
0: धड़कन मूवी का कौन सा गाना?
2: जाने दो।
0: अच्छा अच्छा, जरूर जरूर जरूर। किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप इस गाने को?
2: जी मैम, अब नाज भैया हो गए, पूनम दीदी हो गए, श्री हो गए, अंशु पवार हो गए, राजेश हो गए, लक्ष्मीराम गुप्तनाथ और विजय पांडे।
0: जी जी जरूर, हम आपको धड़कन फिल्म का ये गाना सुनाएंगे। हमें कॉल करने के लिए बहुत

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता जी।
0: जी जी जय माता जी।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतनर गुगला।
0: जी जी
1: कैसे हो आप?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ?
0: जी मैं कविता बोल रही हूँ।
1: थैंक यू मैडम, काफी दिनों के बाद में आई हो आप।
0: हाँ जी काफी दिनों के बाद आई हूँ।
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ। आपका कार्यक्रम में कॉल भी मिला रहा था। मैं कौन सा नंबर पे आ गया हूँ मैडम? मैं
0: आप

0: आप 8वें नंबर पे हैं आज।
1: थैंक यू मैडम, क्योंकि मैं हर आकाशवाणी केंद्र पे तभी मेरा फोन लगता है ना मैडम
0: जी जी,
1: तो मैं ये पूछता हूँ मैडम, जैसे आकाशवाणी गांगटोक पे हमारी एक पूनम मैडम आती है
0: जी,
1: वहाँ भी मैं पूछता रहता हूँ कि मैडम मैं कौन सा नंबर पे आता हूँ, तो वो बताते हैं आप इतने नंबर पे आ गए, इसलिए हमको अच्छा लगता
0: है। अच्छा, आप नंबर का ये जो हिसाब रखते हैं इससे आपको क्या क्या अच्छा लगता है कि आप मतलब कितने जल्दी आपका कॉल लग गया, आप ये जानना चाहते हैं या फिर क्या?
1: जी मैडम, मैं ये भी जानना चाहता हूँ और ये दूसरा नंबर ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लो अपन श्रोता का जैसे गिन गिन के अपन पता लगाते हैं कि भाई कौन सा नंबर पे आ गया कॉलर, जैसे जो भी कॉलर आते हैं ना
0: जी जी जी
1: तो मैं पता लगाता रहता हूँ भाई ये तीसरा नंबर पे आया अभी, तो चौथा नंबर पे आया, तो मेरा अब 8वां नंबर पे आया।
0: जी जी जी आज 8वें नंबर पे हैं आप, तो बोलिए आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है शान।
0: शान फिल्म का कौन सा गाना?
1: उसमें गाने के बोले बस आ यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा है खूबसूरत बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहां तुम आए।
0: जी, और इस गाने को आप डेडिकेट करना चाहते हैं किसी?
1: जी ससुरल तो आप है
0: जी,
1: और नूरा मैडम को भी सुनाना चाहता हूँ, आजकल उनकी आवाज सुनाई हमको देरी नहीं, तो वो भी मैं चाहता हूँ कि कभी उनसे भी बात हो।
0: जी जरूर, नूरी मैम तक आपका ये मैसेज जरूर पहुंचा दूंगी।
1: और वो के बावरा है, राकेश है, भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, वालवाद है, और रमेश पात्रे, अमल बिमल गोल्डी भाई है, और देवपाली तो आती है उनको।
0: जी जी, ओके, थैंक यू।
2: जय हो सूरज सदा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार बहन जी। नमस्कार
0: जी। नमस्ते
1: बहन जी। मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: जी जगदीश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत मजे में हैं बहन जी, बहुत आनंद में हैं, बिल्कुल मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं।
0: जी तो बताइए, आज आप कौन से फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: बहन जी आज मैं सुनूंगा गीत फिल्म दिल ही तो है
0: जी,
1: जो पहले बनी थी, तो उसका गीत जो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में है जी।
0: जी
1: तो उसके बोल मैं तरन्नम में बताना चाहूंगा जी।
0: जरूर जरूर।

0: जी, मौसम का ये मिजाज और ये मुकेश जी का ये प्यारा गाना काफी अच्छा मेल खा रहा है जी। बताइए, आप आज इस किसे डेडिकेट करना चाहते हैं इस गाने को?
1: बहन जी, मेरे मित्र हैं गौतम राय बोले जी, लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन मध्य प्रदेश से, और भगवान सिंह परमार जी हैं, जोगेश जांगड़े जी, धीरज बीरवारी जी, रामपाल यादव जी, और गंगा सिंह रावत जी नैनीताल उत्तराखंड से, सतीश मिगलानी जी मलोट पंजाब से।
0: जी जरूर जगदीश जी, हम आपको दिल ही तो है फिल्म का ये गाना जरूर सुनाएंगे। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।
1: धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश से बोल रहे हैं।
1: जी मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ, रंगा पारा सोनीपुर से। मैम
0: जी, अमल जी कैसे हो आप?
1: जी बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बोलिए, आज आप कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: तुझे मेरी कसम फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए मैम।
0: जी जी जी, और किसे डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: डेडिकेट रहेगा सबसे पहले भाईकुन मुंडा, संजय मुंडा, बिमल बसुमतारी, गागर अभा द्वारा, नीरज कोल द्वारा
0: जी,
1: और हमारे दोस्त है रमेश पत्रो, लक्की रोनू पत्रो, देवाशीष हजरिका और जगेंद्र रोंगी और अविनाश कैली, आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ, भगवान सिंह परमार और रमेश प्रजापति और दानुश्री है और केसरी सिंह राजपूत और मंगलराज चंदेल है और शिवा लोहार गौरव शर्मा और पुष्करना शर्मा, अंजनम शर्मा, इन सबको डेडिकेट रहेगा और कांचन हाजम है और अंजलि उष्मिटारी, इन सबको हमारे प्रसाद और अल राम ब्रह्मा, इन सबों को सुनाना चाहूंगा और आपको भी।
0: जी जरूर अमल जी, आपको हम जरूर सुनाएंगे आपके पसंद का ये गाना। इसी तरह से हमसे जुड़िएगा, हमें

0: हेलो फरमाइश।
1: श्रोता मित्रों, आप हमसे प्रोग्राम हेलो फरमाइश में जुड़ सकते हैं। डायल कीजिए हमारा फोन नंबर 03602292239। फोन नंबर फिर से सुन लीजिए 03602292239। हर सोमवार सुबह 11 बजे और हर गुरुवार सुबह 11 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर पर डायल करके। नंबर फिर से सुन लीजिए 03602292239। इस कार्यक्रम के निर्माता है बोके बागरा और मुझे आपकी रेडियो दोस्त कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: हेलो फरमाइश।
1: श्रोता, अभी आप आनंद ले रहे थे आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। आइए इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ पाश्चात्य संगीतों की ओर। आइए आनंद देते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

अभी आप आनंद ले रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM प्रसारण है। चलिए इस बार आनंद लेते हैं कुछ पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का। आइए लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत की ओर।

नमस्कार ईटानगर, सेवा के 25 वर्षों के इस विशेष उत्सव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। 7 अक्टूबर 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समर्पित जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। यह यात्रा 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई थी और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आज भी निरंतर जारी है। विकसित भारत संकल्प सेवा इस कार्यक्रम में शामिल हो और श्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव टेलीकास्ट का आनंद ले। स्थान क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर, समय कल सुबह 9 बजे से। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन जी, मंत्रीगण एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे। तो ईटानगर आइए और इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनिए। 7 अक्टूबर सुबह 9 बजे क्लॉक टावर गंगा मार्केट ईटानगर। जय हिंद।

तो बताना चाहेंगे आपको कि इस यानी कि भूले बिछड़े गीत के इस सफर में इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का किशोर कुमार की आवाज में हाथी मेरे साथी फिल्म से।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान साझेदारी और सतत विकास की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: स्कंद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: स्कंद जी। भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और दबाव मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना साझा दृष्टिकोण रखते हैं, और दो ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनके पास संसाधन संपन्नता, तकनीकी क्षमताएं और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता है, और दो ऐसे देश हैं ये जिनके पास मैत्री और पारस्परिक सद्भावना की एक लंबी परंपरा रही है। ऐसे में हम जब तमाम बातों का जिक्र करते हैं, तब एक ऐसी अभिलाषा जो पेरिस समझौते से शुरू हुई थी, जिस तंत्र की हम बात कर रहे हैं, ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म की, जो हमारे सामने आज आई है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कहां से इसकी जरूरत महसूस हुई, इसके बारे में बताएं।
2: इसकी पृष्ठभूमि अपने श्रोताओं के लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा। पेरिस एग्रीमेंट, देखिए, वैश्विक तापन की जिस तरह हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये पिछले 2-3 दशक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जनता के सामने, विश्व के सामने और सब संस्थाओं के सामने है। और 12 दिसंबर 2015 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पेरिस में साइन हुआ। 195 देशों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। और जो सबसे खास बात है उस एग्रीमेंट की, कि कुछ लीगली बाइंडिंग रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस या कमिटमेंट्स सब सिग्नेटरीज से लिए गए कि आप कार्बन एमिशन को कम करने के लिए अपने देश में क्या प्रयत्न करेंगे। इसमें जो बातें हुई उसमें ये है कि दुनिया का विकास हो, टिकाऊ विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पर एक लो कार्बन, जो भी नई तकनीक आ रही है वो लो कार्बन की हो, जिससे कि विश्व में जो ऊष्मा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो तापमान जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जब औद्योगीकरण 17वीं शताब्दी कह लीजिए, 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ, उसपे 2% से ऊपर आ जाए। इस सब परिप्रेक्ष्य में अब हर देश को एक अपने विकास के किस अवस्था में है उसके हिसाब से सबने कमिटमेंट्स किए। भारत ने भी किए, हर देश ने किए, जापान ने किए। और एक जो नया इसमें एक रास्ता था आर्टिकल 6.2 पेरिस एग्रीमेंट का, उसमें देश या कंपनियां

0: एक दूसरे के साथ कार्बन क्रेडिट्स का व्यापार कर सकते थे। तो ये इस तरह है कि मान लीजिए जैसे भारत है, भारत का बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और भारत एक नेट सेलर है कार्बन क्रेडिट्स का। जिस तरह से हमने अपना डेवलपमेंट किया है, बहुत सोलर एनर्जी और इस तरह का सब है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो भारत इस स्थिति में है कि कार्बन क्रेडिट्स दूसरे देशों को बेच सके और उसका ये रूप
1: जी
0: आज भारत जापान के बीच में किस तरह ये ट्रेड होगी उसका समझौता हुआ है।
1: अस्कन जी, ये जो एक रणतंत्र हमारे सामने रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य कहा गया है कि उन्नत तरीके से निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहिए। आपने भी इसी बात का जिक्र किया कि भारत सक्षम है ऐसा करने में। तो जलवायु वित्त जुटाने की जहां तक बात है, तो भारत इन तकनीकों को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। आज हमारे पास जो तकनीक है, परियोजनाएं जो लगातार सरकार आगे लेकर के आ रही है, उनसे क्या लगता है कि इस तंत्र को कितना बढ़ावा मिलेगा, कितनी मजबूती आएगी उसमें?
0: बहुत बढ़ावा मिलेगा। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे एल्यूमिनियम है, स्टील है और पेपर बनाने का है, उसमें भारत की जो मशीनें हैं वो पुरानी है
1: जी
0: भारत के उद्योग में, और उनके नवीनीकरण की, आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। तो जिस तरह जो ये एग्रीमेंट जापान के साथ हुआ है, तो जापान नई तकनीक जो उनके पास है उसको बहुत सस्ता भारत को देगा, जिससे भारत कार्बन एमिशन भारत की इंडस्ट्रीज के कम होंगे और भारत उस दिशा में आगे बढ़ेगा बिना बहुत पैसा खर्च किए। ये एक बहुत बड़ा लाभ इस जो आज एग्रीमेंट हुआ है ऑपरेशनलाइज, उससे भारत को होगा।
1: थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो 7 अगस्त 2025 को सहयोग ज्ञापन, 8 जून 2026 को नियमों को अपनाना और अब 30 सितंबर को परिचालन नियमावली जारी हुई। तो ये प्रक्रिया संस्थागत तैयारी के कार्यान्वयन को बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत इस दिशा में सबसे तेजी से प्रयास कर रहा है और जो भी तरीके हैं वो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने और भरोसेमंद बनाने के लिए भी है। तो ऐसे में JCM का कितना महत्व हमारे सभी के लिए हो जाता है?
0: जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कार्बन क्रेडिट की स्कीम का पूरा एक स्थापना की गई। होता क्या है कार्बन क्रेडिट, उसकी यूनिट्स मानी जाती हैं और एक यूनिट इक्वल टू करीब करीब 1 मैट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है।
1: जी
0: और फिर एक ये प्रक्रिया भी स्थापित की गई कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे या कंपनी स्तर पर कैसे खरीदा बेचा जाएगा। उसके बाद भारत ने बहुत जल्दी इस पर काम किया और 2022 में एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया और एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नीचे कैसे इंडिया की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम काम करेगी, कौन कैसे बेचेगा, क्या करेगा, ये पूरा एक तंत्र उसके लिए बनाया गया। और जापान ने भी इसी तरह बनाया। उसके बाद जैसा आपने कहा, 7 अगस्त 2025 को सबसे पहले एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन भारत और जापान के बीच में हस्ताक्षर हुए। 8 जून 2026 को रूल्स उसके बने, रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, के कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और अभी जो कुछ दिन पहले भारत और जापान ने साइन किया वो है ऑपरेशनल मैनुअल
1: जी
0: फॉर ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, की कैसे इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। कि मान लीजिए वो भारत की कोई संस्था कुछ कार्बन क्रेडिट जापान को बेचना चाहती है, तो जापान उसको कैसे खरीदेगा, कैसे अकाउंटिंग होगी उसकी, कहाँ उसका रजिस्टर रखा जाएगा और कैसे वो पैसा ट्रांसफर होगा। तो अब बहुत तेजी से इसकी जमीन पर ये स्कीम जो है वो उतर आएगी।
1: स्कंद जी, JCM का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारत में उच्च स्तरीय उत्सर्जन कटौती और उत्सर्जन निष्कासन को बढ़ावा देना। तो इसका भारत के जो पर्यावरणीय लक्ष्य हैं, कम कार्बन विकास की दिशा में हमें काम करने की बात की जाती है, तो इसका व्यवहारिक असर आपको किस तरह से दिखाई देता है? कितना सक्सेसफुल होने के चांसेस आपको लगते हैं कि हाँ, इस दिशा में आगे बढ़ने से हम जिन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं उनको प्राप्त करने में सक्षम होंगे?
0: अपना हमारा जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने के बहुत सारे स्रोत हैं। एक जगह जहां भारत सोलर या गैस, उससे ऊर्जा का उत्पादन अधिक करना चाहते हैं, एक रास्ता ये हो गया। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण में जो कैपिटल इक्विपमेंट आता है उसमें अब नई तकनीक की आवश्यकता है जो कि ज्यादा कार्बन एमिशन उसमें ना हो। जैसे स्टील का मैंने जिक्र किया,
1: जी
0: उसमें
1: बिल्कुल
0: कोक इस्तेमाल होता है, बहुत आता है, हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, इंडोनेशिया से मंगाते हैं, उसमें से कितना धुआं निकलता है, कितना कार्बन निकलता है, कितना जला देते हैं। ये जो नई नई तकनीकें हैं ये बहुत महंगी हैं। और जापान के साथ जो आज हमारा अभी कुछ दिन पहले एग्रीमेंट हुआ, उसमें हमारा EU और UK के साथ तो पहले से ही इस तरह का एक एग्रीमेंट है, यूरोपियन यूनियन।

0: पर अगर इस तरह का जो यूरोपियन यूनियन कोशिश कर प्रयत्न कर रहा है वो अगर और देश भी करे तो इसलिए एक ये बहुत ही पेचीदा मामला है। पर जो जापान के साथ जिस तरह का हमारा एग्रीमेंट हुआ है और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, भारत के निर्यात पर उस पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा।
1: स्कंद जी, जिस तरह आप भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अगर एक चीज मैं ये जोड़ना चाहूं कि भारत और जापान विशेष रूप से रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे में पारदर्शिता होना, भरोसा होना बहुत ही लाजमी है। तो अपने जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं उनके साथ में भी हम किस तरह के लाभ उठा सकते हैं, खासतौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की आप बात कर रहे थे और भी तमाम क्षेत्र जिन पर असर पड़ता है, क्या क्या लाभ मिलने की संभावना नजर आती है?
0: देखिए, जापान के साथ जैसा आपने कहा और आरंभ में भी कहा था, जिस तरह की हमारी मित्रता है और जिस तरह का एक कोऑपरेशन है, जापान ने भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है हमेशा। अगर आप देखें तो मेट्रो दिल्ली में और जो सब शुरू हुई वो जापान
1: जी
0: के ओडीए से शुरू हुई, अभी बॉम्बे टू अहमदाबाद देखिए बहुत ट्रेन जो बन रही है,
1: बुलेट ट्रेन,
0: बुलेट ट्रेन, वो जापान की तकनीक भी वहां पे आ रही है, वहां से धन कुछ असिस्टेंस भी आ रही है, लोन क्रेडिट आ रहे हैं। ये पूरा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है, तो बहुत तरह से मैं समझता हूँ कि भारत और जापान के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हैं और सामरिक तो है ही, वो इकोनॉमी में आर्थिक, केवल ये व्यापार वाला रिश्ता नहीं है, ये एक रिश्ता है जिसमें जापान बहुत भारत की औद्योगिक विकास में, मॉडर्नाइजेशन में, नवीनीकरण में और आधुनिकीकरण में बहुत योगदान कर रहा है। और जिस तरह का एग्रीमेंट अभी ये साइन हुआ उससे एक और रास्ता खुल जाएगा कि कार्बन क्रेडिट्स के मैकेनिज्म के द्वारा ये जो आधुनिकीकरण है उसकी फाइनेंसिंग हो जाएगी। देखिए, दुनिया के बाजार में हर चीज मिलती है
1: जी
0: पर हर चीज के लिए आपको धन चाहिए, भारत को भी अपना प्रायोरिटाइजेशन करना होता है, तो उसमें कुछ नई तकनीकें अगर एक और रास्ते से आ जाए जो ना आउटराइट परचेज का है ना एक ओडीए का है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का, मैं समझता हूँ भारत के विकास के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है।
1: जी एक अंतिम प्रश्न आपसे और पूछना चाहूंगा। अगर आगे की राह को हम देखें तो परिचालन नियमावली के बाद अब इस तंत्र की सफलता के मानक क्या होंगे हमारे लिए, और आने वाले समय में उत्सर्जन की कमी या तकनीकी हस्तांतरण जिस पर हम बात कर चुके हैं, और जलवायु वित्त के क्षेत्र में भारत जापान के किस तरह के परिणामों की उम्मीद की जा सकती है साझेदारी में?
0: मैं समझता हूँ कि अगले 6-8 महीने में और साल भर में कुछ न कुछ आंकड़े जरूर आएंगे कि जो ऑपरेशनलाइजेशन का जो समझौता कल परसों साइन हुआ है उसके अंतर्गत कितने कार्बन क्रेडिट, जैसा मैंने कहा कि 278 मिलियन कार्बन क्रेडिट भारत आज तक दूसरे देशों को दे चुका है पिछले 10 वर्ष में, तो जापान को अब और कितने देता है, और ये देखिए एक ये खाका सा बन जाता है। तो दूसरे देशों के, मान लिया ऑस्ट्रेलिया है या कोई और देश यूरोप के, आप और भी कोई चाहें कि भारत से कार्बन क्रेडिट्स को खरीदना चाहें और टेक्नोलॉजी तकनीक हमको देना चाहें,
1: जी
0: तो इस एग्रीमेंट के बेसिस पर और उसी टेम्पलेट पर दूसरे एग्रीमेंट भी बन जाते हैं, तो दूसरे एग्रीमेंट्स को करना बड़ा आसान हो जाता है। किसी और देश के, कैनेडा करना चाहे, अमेरिका तो खैर अब इस समय है नहीं, इस पेरिस एग्रीमेंट से बाहर ही निकल गए हैं, सबसे ज्यादा
1: जी
0: एमिशन वैसे उनका होता है,
1: जी जी
0: पर भविष्य बताएगा कि अमेरिका किस दिशा में जाना चाहता है जहां तक जलवायु परिवर्तन का सवाल है या वैश्विक तापन का सवाल है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है उन दोनों की नीतियों में और उनके जो भी वो
1: जी
0: विश्वास करते हैं, तो वो तो भविष्य बताएगा। पर मैं समझता हूँ कि विश्व के और जो देश हैं अमेरिका को छोड़कर, वो जलवायु परिवर्तन की गंभीरता से पूरी तरह चौकस है और उसको नकारते नहीं है, और अपनी तरफ से सब मिलजुल कर बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि
1: जी
0: पेरिस एग्रीमेंट का वो अनुकरण करें और जहां तक हो सके उसमें जो भी कमिटमेंट्स जिस देश ने भी किए हैं कि वो अपना कार्बन उत्सर्जन कितना कम करेंगे। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री बार बार टारगेट्स वगैरह लगाते हैं
1: जी
0: कि हम 2037 तक इतना कर देंगे, फिर 50 तक इतना कर देंगे, ये सब, क्योंकि ये तो देखिए विश्व के लिए है, विश्व की अच्छाई के लिए है कि प्रकृति का बिल्कुल ही नाश ना हो जाए, एनवायरमेंट का नाश ना हो जाए। और दूसरी चीज जो हम लोग दिल्ली में देखिए हमेशा एक पोल्यूशन की बात होती है, तो कैसे वो पोल्यूशन कम हो जो लोगों का हेल्थ भी अच्छी रहे, तो
1: जी
0: बहुत सारी इसमें बातें हैं जो इससे कवर होती है। और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है कि भारत और जापान मिलजुल कर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं,
1: जी
0: और ये एक टेम्पलेट बन सकती है और देशों को भी।

0: एक दूसरे को साथ देने के लिए तकनीकी सबका आधुनिकीकरण हो, जिससे पूरे विश्व को लाभ होगा, पूरे मानव समाज को लाभ होगा। मैं तो कहता हूं कि पूरी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम,
1: जी
0: हमारे पूरे प्लैनेट को लाभ होगा।
1: जी स्कंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान साझेदारी और सतत विकास की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेशी निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया था। आयोग ने कहा कि यह अनुरोध असामान्य था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। आयोग के अनुसार तय प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसी बैठकें निर्वाचन आयोग के परिसर में ही होती हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया है। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया

प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मदुरांतकम में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की तट्टन चावड़ी सीट पर 80.81% तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर में 80.07% और नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country. Mr. Vaishnav said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises. Prime Minister Narendra Modi in a social media post said this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi stated this while interacting with Global System for Mobile Communications Association board members at Seva Teeth today ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress is scheduled to be held from 7th to 10th October this month in New Delhi. The Union Cabinet today passed a resolution congratulating Prime Minister Narendra Modi for completing 25 years as the head of government. Mr. Modi first became the Chief Minister of Gujarat on 7th of October 2001. He went on to become the Prime Minister in 2014, and tomorrow he will complete 25 years at the helm of government. Addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said Prime Minister Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. Senior BJP leader and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has criticized Congress Party and Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi for repeatedly targeting Election Commission of India and other constitutional bodies. Talking to media in New Delhi today, Mr. Rijiju said political parties should serve the people and accept the electoral mandate.
1: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं
2: एवरी डे द ड्रामा दैट राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी कीप क्रिएटिंग ओवर द इलेक्शन कमीशन एंड द रिपीटेड अटैक्स दे मेक ऑन द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू स्टॉप नाउ इन अ डेमोक्रेसी इफ यू सर्व द पीपल यू विल रिसीव द मैंडेट इफ यू फेल टू गेट द पीपल्स मैंडेट एंड देन अब्यूज द इलेक्शन कमीशन दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड
1: और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे.
0: Earlier in the day, opposition parties held a protest march from Parliament House to Nirvachan Sadan, the headquarters of Election Commission of India in the national capital, over alleged irregularities in the special intensive revision process and demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. With regard to the today's opposition protest, the Election Commission has clarified that no political party had sought an appointment till 4 p.m. to meet the Commission through its representatives. In a press statement, the Commission said that, however, at around 4 p.m., it received information from the Delhi police that a delegation of members of Parliament, led by the Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, want to meet the Commission and submit a memorandum. The Election Commission considered this request unusual, which could not be accepted. The Ministry of Defence has signed a contract worth over 660 crore rupees with BrahMos Aerospace Private Limited for procurement of BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. The contract, under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category, was inked in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, today conducted a successful flight trial of the indigenously developed high-altitude platform. Voting concluded peacefully for by-elections to five assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with the Kam and Tharapuram seats in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar. Sabha seat in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले जीएसएमए बोर्ड से मुलाकात की। समावेशी और सतत विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी का आह्वान किया। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। फ्लाई दुबई आतंकी हमले को नाकाम करने वाले भारतीय पायलट को सम्मानित करने के लिए अमरीकी सांसदों ने द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा हूती ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद यमन में लड़ाई तेज। और बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले आज सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस 10 से 7 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को पीछे न छूटने देने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्प विकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी बल दिया। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमसानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. पीटर वोरहोफर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने आतंकवाद विरोधी गतिविधियों सहित सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में भारत ऑस्ट्रिया सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक शामिल हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का इलाज हो रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और शांति तथा स्थिरता के लिए ऐसे हमले तुरंत रोकने की अपील की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज घाना की राजधानी व्यापक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी और सार्थक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% का था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार

0: निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी और अनुकूल वित्तीय तथा नीतिगत परिस्थितियों से भी अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में भारतीय पायलट स्मित मच्छार और फ्लाई दुबई की उड़ान संख्या 1073 के चालक दल तथा यात्रियों के साहसिक कदमों की सराहना करते हुए द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया गया है। ये प्रस्ताव डेमोक्रेटिक सांसद जोश गॉटहाइमर और रिपब्लिकन सांसद माइकल मैकॉल तथा जॉन बेकन ने पेश किया। इस प्रस्ताव में कैप्टन स्मित मच्छार के साहस की सराहना की गई है और 30 सितम्बर की घटना को आतंकवादी हमला बताया गया है। दुबई से तेल अवीव जा रही इस उड़ान में 174 लोग सवार थे। इस बीच अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कैप्टन मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। दूतावास ने कैप्टन स्मित के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कैप्टन के लिए प्रार्थना कर रहे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हूती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद लड़ाई तेज हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: सऊदी गठबंधन ने कहा कि उसकी नौसेना ने होदेदा में अभियान चलाकर हथियारों के भंडार, विस्फोटकों से लदी नौकाओं और नौसैनिक बारूदी सुरंगों को रखने वाली सुविधाओं को नष्ट कर दिया। गठबंधन के अनुसार दक्षिणी लाल सागर के जलमार्गों पर प्रस्तावित हमलों को भी नाकाम कर लिया गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हूती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने दुबाव में बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डोन ऑफ यमन के बाद भी हुआ। इस अभियान को सऊदी हवाई समर्थन हासिल है और इसका उद्देश्य हूती कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना है। इस बीच बहरीन के विदेश मंत्रालय ने यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को समर्थन देने, सरकारी संस्थानों को बहाल करने और व्यापक राजनीतिक समाधान की दिशा में सऊदी अरब के प्रयासों का समर्थन किया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। न्यूट्रिनो बेहद छोटे और लगभग भारहीन होते हैं जो तारों और अंतरिक्ष में होने वाली अन्य घटनाओं से पैदा होते हैं। रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने कल रात कई क्षेत्रों में यूक्रेन के लगभग 900 ड्रोन को नष्ट किया है। इनमें कब्जे वाला क्रीमिया प्रायद्वीप और आजोव सागर का इलाका शामिल है।
2: मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर में 650 ड्रोन ने मॉस्को इलाके को निशाना बनाया। इनमें से 105 ड्रोन को राजधानी के पास रोका गया। उन्होंने बताया कि दिन में 68 और ड्रोन गिराए गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी ओडेसा इलाके में भी ठिकानों पर हमला किया जिसमें गोला बारूद का डिपो और बंदरगाह बुनियादी ढांचा शामिल है। यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों और ईंधन डिपो पर हमला करने के लिए देश में बने लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया है। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिए हैं। ज़ापोरिज़्या में रात में हुए एक हमले में एक रिहायशी इमारत में 5 लोग घायल हो गए जबकि एक अन्य हमले में एक पुल को नुकसान पहुंचा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आज हुए आतंकवादी हमले में 4 सीमा शुल्क अधिकारी मारे गए। ये अधिकारी दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगे डेरा इस्माइल खान जिले में ड्यूटी पर थे जब आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई। गोलीबारी के बाद हमलावर फरार हो गए। सुरक्षा एजेंसियां घटनाओं की जांच कर रही हैं और हमलावरों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के

साथ मिलकर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है। इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। वेस्टइंडीज के 172 रन के लक्ष्य को भारत ने 32 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले GSMA बोर्ड से मुलाकात की। समावेशी और सतत विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी का आह्वान किया। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। फ्लाई दुबई आतंकी हमले को नाकाम करने वाले भारतीय पायलट को सम्मानित करने के लिए अमरीकी सांसदों ने द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया। और बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।